आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। नई नई सुबह, नया नया सवेरा, सूर्य की किरणें और मंद पवन का बसेरा, खुले आसमान में सूर्य की पहली आभा, नई सुबह नए हौसले के साथ आ चुकी है और नव ऊर्जा को समेटने का संदेश दे रही है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। श्रोताओं, हम भी आ चुके हैं स्टूडियो लेकर आपके लिए मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग।

अपने डेली रूटीन के साथ ही आप रेडियो सेट को भी ऑन कर चुके हैं और इंतजार है देश दुनिया में हो रही गतिविधियों को जानने का। तो श्रोताओं, चलते हैं दिल्ली स्टूडियो। प्रातः के 6 बजने ही वाले हैं। सुन लेते हैं समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार संसद में नीट से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कुब्जे में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार वास्तविक क्षमता से बहुत कम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तर मैसेडोनिया की पहली यात्रा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की दो दिन की फिलीपींस यात्रा आज से शुरू हो रही है। वे मनीला में आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत ईस्ट एशिया सम्मेलन और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। उनके द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है। भारत ने अफगानिस्तान के नूरिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। खाद्य सामग्री और टेंट सहित अन्य राहत सामग्री अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी गई है। विदेश

मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत इस कठिन समय में अफगानिस्तान के संकटग्रस्त लोगों के साथ है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु का दौरा करेंगे। श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में जीएनकेएनएम नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति तिरुप्पुर में अविनाशी लिंगेश्वर शिव मंदिर भी जाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री श्री मोदी को विजयनगरम जिले के भोगपुरम में अलूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करेंगे। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन 1 अगस्त को प्रस्तावित है। श्री चंद्रबाबू नायडू केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह, पीयूष गोयल, मनोहर लाल खट्टर और सीआर पाटिल के साथ राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर कर सकते हैं। युवा कार्यक्रम विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस प्रश्नोत्तरी में बहुविकल्पीय 20 प्रश्न हैं। 10 मिनट के अंदर इनके उत्तर देने होंगे। हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत का पहला मैच 15 अगस्त को वेल्स के साथ होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। 747 किलोहर्ट्ज़ पर आपने रेडियो सेट पर ट्यून इन किया है आकाशवाणी लखनऊ, और प्रोग्राम शुरू हो चुका है नमस्ते लखनऊ। और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं वैशाली, आप सभी के साथ। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन एआईआर ऐप और डीटीएच पर भी। समय है कृषि चर्चा का। आज की कृषि चर्चा में हमारे किसान भाई सुनेंगे खरीफ सब्जियों में सामयिक प्रबंधन विषय पर डॉक्टर नंदलाल मणि त्रिपाठी से की गई भेंट वार्ता। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खरीफ में जहां सब्जी उत्पादन आप कर रहे हैं वहां इस समय सामयिक प्रबंधन क्या कुछ करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर एनएलएम त्रिपाठी साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जहां सब्जियों का उत्पादन खरीफ में कर रहे हैं किसान भाई बहन, तो क्या सलाह है आपकी?
2: देखें, इस समय जो खरीफ की सब्जियां हैं उसके अच्छे उत्पादन प्राप्त करने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि किसान भाई अधिक पैदावार देने वाली प्रजातियों का चयन करके खेत की अच्छी तरह जुताई कर संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरकों का प्रयोग करें। प्रमुख जो कीट और बीमारियां हैं उनका बेहतर प्रबंधन किया जाए जिससे कि वे गुणवत्ता युक्त सब्जियों का उत्पादन प्राप्त कर सकें।
1: बहुत सारी सब्जियां हैं जिनकी नर्सरी पड़ी है, तो नर्सरी प्रबंधन भी एक महत्वपूर्ण काम है।
2: जी, जैसे खरीफ सब्जियों में टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च है, फूल गोभी आदि प्रमुख हैं जिनके बीज अन्य सब्जी बीजों से काफ़ी छोटे होते हैं और उनकी अगर सीधी बुआई करने में देखभाल अधिक करनी पड़ती है, तो ऐसे में पौध तैयार करके सब्जी उत्पादन में लगभग एक माह का समय बचाया जा सकता है और बीज की मात्रा कम लगती है। विपरीत वातावरण में भी सुरक्षित स्थान पर पौधे तैयार करके सब्जी उत्पादन अच्छे ढंग से किया जा सकता है जिससे श्रम तथा साधन दोनों की बचत होती है।
1: यानी आप लो टनल में या पाली हाउस में पौध तैयार हो जाए या पोर्ट्रे में?
2: जी, अगर पोर्ट्रे में कर लें, लो टनल पाली हाउस में कर लें, सेडनेट में कर लें, तो अच्छे तरीके से हम अपने पौधों को तैयार कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, पौध तैयार करते समय कुछ सावधानियां भी होंगी?
2: जरूर, हमको यह ध्यान रखना चाहिए कि जो भी पौधशाला के लिए हम स्थान चयनित कर रहे हैं वो ऊंचा हो जहाँ से जल का निकास आसानी से हो सके, मिट्टी का पीएच मान भी उदासीन हो, सूर्य का प्रकाश उपलब्ध हो,

0: चयनित जो बीज है वह विश्वसनीय संस्था से लिया गया हो, उसी स्थान पर या एक ही स्थान पर बार बार पौध उत्पादन का कार्य या नर्सरी उत्पादन का कार्य नहीं करना चाहिए और यथासंभव स्थान बदल देने से भूमिजनित जो बीमारियां हैं उनसे पौधे संक्रमित नहीं होते हैं।
1: अगर खुले में पौधशाला बना रहे हैं तो लो टनल भी लगा सकते हैं,
0: उसमें लो टनल भी लगा सकते हैं और ऊपर जब लो टनल लगाएंगे तो तमाम तरह
1: मच्छरदानी?
0: हाँ मच्छरदानी की तरह तमाम तरह के कीड़े और उनके प्रकोप से हम बचा सकते हैं। इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो पौधशाला बना रहे हैं वो लगभग 3 मीटर लंबा हो और 1 मीटर चौड़ाई का लिया जाए और 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी तैयार की जाए और क्यारी की भी मिट्टी को भुरभुरी बना लें। और यह बहुत जरूरी है कि मिट्टी और बीज दोनों का शोधन जरूर किया जाए
1: हाँ,
0: और कैप्टान या थीरम 5 ग्राम प्रति वर्ग मीटर क्यारी के हिसाब से या 3 से 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधन कर लेने से हमारे पौधे अच्छे पैदा होते हैं।
1: आजकल जैविक फफूंदी नाशक भी आ गए हैं, तो क्या इनसे भी बीज शोधन और भूमि शोधन फायदेमंद
0: जी,
1: होगा?
0: बहुत बहुत अच्छा सुझाव आपका कि ट्राइकोडर्मा जैसे है या स्यूडोमोनास जैव फफूंद नाशक है, इनका प्रयोग क्यारी उपचार के लिए 25 ग्राम प्रति वर्ग मीटर तथा बीज उपचार के लिए हम 10 से 25 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से इनसे भी बीज को और उस स्थान को हम उपचारित कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि बीज की बुआई कतार में एक एक करके किया जाए, जिससे जिसमें बीज से बीज की दूरी लगभग 2 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बीज बुआई के बाद हम थोड़ा सा कंपोस्ट मिट्टी और रेत 2:1:1 के मिश्रण बना लें और उसकी पतली तह से ढक दें और क्यारी का पलवार पुआल या सूखी घास फूस से कर दिया जाए तो अच्छे उसमें जमाव आता है।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे खरीफ सब्जियों में सामयिक प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: जी 9415158255 यानी 9415158255 94-15-15-82-55।
1: डॉक्टर NLM त्रिपाठी साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और खरीफ सब्जियों में सामयिक प्रबंधन क्या कुछ करें इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: विचारों, भावनाओं और संस्कृति की अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है हमारी मातृभाषा, जो केवल एक भाषा ही नहीं बल्कि हमारे संस्कारों की जननी और पहचान का आधार भी है। आइए सुनते हैं आज का सुविचार।
3: प्रथम पाठशाला घर में माँ पाठ

पर मुझे पढ़ाया करती थी आसे आम कबूतर का से नित्य रटाया करती थी। कलम हाथ में पकड़ा कर अक्षर लिखवाया करती थी। लाड़ प्यार से खेल खेल में बहुत सिखाया करती थी, बहुत सिखाया करती थी। वास्तव में माँ ही वह शक्ति है जो बच्चे को बोलना सिखाती है। बोलना न केवल अपने मन के भावों को व्यक्त करने का साधन है, अपितु मानव मानव के बीच संबंधों की संस्कृति पैदा करने का माध्यम भी है। भाषा शब्द का व्याकरणिक अर्थ ही होता है बोलना। जब हम अपने भावों और विचारों को किसी के समक्ष प्रकट करते हैं तो हम हमारे विचारों के प्रकट करने का माध्यम भाषा ही होती है। समाज में रहने वाला प्रत्येक प्राणी जन्म लेने के बाद जिस भाषा में अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है वह मातृभाषा कहलाती है।

0: इससे हमारी संवेदना व्यापक होती है, हमारे ज्ञान का विस्तार होता है, हमारी मानवीय दृष्टि में व्यापकता आती है और विचारों में उदारता का समावेश होता है। जैसा कि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी ने कहा था, विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से ले करहु भाषा माही प्रचार। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विदेशी भाषा का ज्ञान सहायक सिद्ध हो सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि विदेशी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के मोह में हम अपनी ही भाषा की उपेक्षा कर दें। भाषा किसी जाति की सभ्यता और संस्कृति की संवाहक होती है। यदि हमारे पास अपनी भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो हम अपनी पहचान खो देंगे। अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, बिनु निज भाषा ज्ञान के रहत हीन के हीन। अपनी भाषा या मातृभाषा में हमारा हृदय बोलता है, हमारे राष्ट्र का हृदय उसमें धड़कता है। इसलिए विदेशी भाषा की अपेक्षा मातृभाषा का अधिक महत्व होता है। मातृभाषा चिंतन और मनन की भाषा होती है। अपनी माँ अपनी ही है, अमित प्यार जो है करती। मातृभाषा का प्रयोग किसी भी देश के नागरिक स्वयं के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए करते हैं, जबकि राष्ट्रभाषा का प्रयोग देश में होने वाली अनेक गतिविधियों के लिए किया जाता है और राजभाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए होता है। मातृभाषा हर देश की, हर व्यक्ति की, हर समाज की अपनी होती है। यह मातृभाषा ही है जो प्रत्येक उस व्यक्ति को अपने में बांध लेती है जिसके द्वारा उसकी भाषा का प्रयोग किया जाता है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं अकोशूल, मिटत नहीं अकोशूल।
1: मातृभाषा का महत्व, अभी आप सुन रहे थे आज का सुविचार। वाचन स्वर डॉक्टर धनी राम अवस्थी का था। अपने रेडियो सेट पर इस वक्त आपने ट्यून इन किया है 747 किलो हर्ट्स और सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ से हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ वैशाली के साथ। और अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

बुद्धि के दाता, रिद्धि सिद्धि के विधाता, जीवन में आने वाले हर अंधकार को ज्ञान के प्रकाश में मिटा दीजिए। आइए करते हैं गणपति वंदना।

जब भक्त की हर एक सांस ईश्वर स्मरण में समर्पित हो जाए तो जीवन में कोई भी दुख और संकट उसे विचलित नहीं कर सकता।

शिव ही सत्य हैं, शिव ही अनंत हैं, शिव अनादि, शिव भगवंत हैं, शिव ओंकार, शिव ब्रह्मा हैं, शिव शक्ति, शिव ही भक्ति है।

मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ, आपने ट्यून इन किया है 747 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज सुनेंगे भाग 239 में अयोध्या लौटकर भरत द्वारा प्रभु श्री राम की चरण पादुका को सिंहासन में स्थापित करने और धर्म की धुरी धारण करने का प्रसंग।

भरत के साथ अयोध्या का समस्त समाज अवधपुरी के मार्ग पर उदास लौट रहा है। सभी श्री राम के विरह में विह्वल हैं। ऐसी मनोदशा में स्नान भोजन की सुधि किसे होगी? यमुना, गंगा तथा गोमती को पार कर चौथे दिन लोग अयोध्या पहुंचे। मंत्री गुरुवर वशिष्ठ की देखरेख में भरत को राज्य सौंप सहेज कर मिथिलापति चार दिनों बाद तिरहुत लौट गए। भरत ने श्री राम की चरण पादुका को सिंहासन पर स्थापित करके गुरुजन तथा माताओं की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर धर्म की धुरी धारण की। नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर वहां निवास करने लगे।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थे ए हरिहरन। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। अपने रेडियो सेट पर इस वक्त आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र और सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ वैशाली के साथ। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी। प्रत्येक बुधवार सायं 6:30 पर कार्यक्रम हेलो किसान, प्रायोजक इफको। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। प्रशासनेन उक्तं यत् नीट प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणे तदनुबद्ध विषयेषु च संसदि चर्चायै प्रशासनं सज्जमस्ति। ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् केन्द्रीय मन्त्री जितेन्द्र सिंहः लोकसभायां विपक्ष नेतारं राहुल गांधिनम् आरोपितवान् यत् प्रशासनस्य आश्वासनस्य अनन्तरमपि सः नीट विषयक चर्चायाः स्वपूर्वामाग्रहात् निवृत्तः।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: पूर्वाहणे कांग्रेस दलस्य अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा अन्ये दल सदस्याः नीट विषयक चर्चामाधृत्य प्रदर्शनम् अकुर्वन्। केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंहः तथा केन्द्रीय गृह सचिवः गोविंद मोहनः लोक कल्याण मार्गस्थते प्रदर्शनस्थले कांग्रेस नेतृभिः सह मेलनं कृतवन्तौ। तत्रैव संसदि विपक्ष सदस्यैः पुनः पुनः कृतैः व्यवधानैः लोकसभा राज्यसभा च नीट प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणं समेत्य विविध विषयेषु ह्यः आदिवसं यावत् स्थगिते अभवताम्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सद्यः एव जाते नीट परीक्षायाः प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणे संलग्न जनान् विरुध्य दृढ़ निग्रहं कर्तुं अथ राष्ट्रस्य यूनां हितस्य संरक्षणं च पुनः उद्घाटितवान्। असौ अवदत् यत् भविष्ये एतादृशानां घटनानां निवारणाय प्रशासनेन बहवः उपायाः क्रियमाणाः सन्ति। प्रधानमंत्री एतत् संसद भवन परिसरे राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुतेः मंगल मिलन इति नामना अपि प्रख्याते संसदीय दलीयोपवेशने उक्तवान्। वार्ताहरान् संसूचयन् संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजुः अवदत् यत् उपवेशने प्रधानमंत्री देशव्यापिनां भावि परीक्षाणां प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन निवारणाय सर्वेषां संबंधित पक्षाणां समन्वित प्रयत्नानां आवश्यकतां विशेषतया प्रतिपादितवान्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः इत्येषा भारत उत्तर मैसेडोनिया देशयोः

0: आर्थिक सम्बन्धान् विस्तारयितुम् उक्तवती। उभयदेशीय उद्योगिनः व्यापारात् परं निवेश प्राविधिकी नवोन्मेषाधारित दीर्घकालिक सहकार्यं प्रवर्धयितुम् आग्रहम् अकरोत्। स्कोप्जे इत्यत्र भारत उत्तर मेसिडोनिया व्यापार मञ्चं सम्बोधयन्ती राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अवदत् यत् भारतीय राष्ट्रपतेः उत्तर मेसिडोनिया देशस्य एषा प्रथमा यात्रा अस्ति या उभयदेशयोः सम्बन्ध सुदृढीकरणे भारतस्य दृढ प्रतिबद्धताम् द्योतयति। सा अवोचत् यत् वर्तमान व्यापारस्य परिमाणं तस्याः सम्भावनायाः अंशमात्रमेव प्रतिनिधित्वं करोति। अस्य दशकस्य अन्तपर्यन्तं द्वैपाक्षिक व्यापारं द्विगुणं भवितुं शक्यते इति विश्वासः अस्ति। भाजपेति दलं ह्यः लोकसभायाः विपक्षनेतुः राहुलगान्धिनः लोककल्याण मार्गे विरोध प्रदर्शनस्य निन्दामकरोत्। तेन प्रदर्शिताचरणं पूर्णतया अशोभनीयं निन्दनीयं चेति वर्णितवान्। नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् भाजपेति दलस्य अध्यक्षः नितिननवीनः उक्तवान् यत् एषा घटना दुर्भाग्यपूर्णा अस्ति, भारतस्य राजनैतिक इतिहासे कृष्ण दिवसेति वर्णितवान्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अद्यारभ्य द्विदिवसीय फिलिपीन्स देशस्य यात्रायै मनीला इत्यत्र गमिष्यति। तत्र असौ आसियान इत्येतस्य अन्तर्गतम् आयोजितेषु विदेशमन्त्रीस्तरीयोपवेशनेषु भागं ग्रहीष्यति इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में। सुबह का समय हुआ है 7 बजे का और ये समय होता है स्वास्थ्य चर्चा सेगमेंट का। आज की स्वास्थ्य चर्चा में तंत्रिका संबंधी विकारों और मस्तिष्क स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता है जरूरी विषय पर जानकारी दे रही हैं नीना सोनकर। आइए सुनते हैं आज का कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी अपनी प्रस्तुतकर्ता नीना सोनकर और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम स्वास्थ्य चर्चा। आज हम बात करेंगे हमारे शरीर के सबसे अद्भुत, सबसे जटिल और सबसे महत्वपूर्ण अंग की, यानी हमारे मस्तिष्क की। और आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज हम मना रहे हैं विश्व मस्तिष्क दिवस यानी वर्ल्ड ब्रेन डे। ये दिन हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन इसकी चर्चा हमारे दैनिक जीवन में बेहद कम होती है। हम अपने शरीर के दूसरे अंगों की सेहत को लेकर तो कई बार सजग रहते हैं, लेकिन मस्तिष्क जो हमारे हर विचार, हर भावना और हर क्रिया का केंद्र है, उसकी देखभाल की बात अक्सर पीछे छूट जाती है। श्रोताओं, हमारे शरीर का हर अंग तभी काम करता है जब मस्तिष्क उसे संकेत देता है। हम चलते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, याद करते हैं, कल्पना करते हैं, ये सब मस्तिष्क की अद्भुत क्षमताओं की देन है। लेकिन जब यही मस्तिष्क असंतुलित होता है या किसी रोग से प्रभावित होता है तो शरीर की संपूर्ण कार्य प्रणाली बाधित हो जाती है। और दुख की बात तो ये है कि आज दुनिया भर में लाखों लोग न्यूरोलॉजिकल यानी मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिनमें स्ट्रोक, डिमेंशिया, मिर्गी, पार्किंसन, माइग्रेन और यहाँ तक कि डिप्रेशन और मानसिक अवसाद जैसी स्थितियाँ भी शामिल हैं। विश्व मस्तिष्क दिवस का उद्देश्य केवल श्रोताओं मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियों के बारे में बताना नहीं है, बल्कि ये दिन हमें मस्तिष्क की संपूर्ण देखभाल की ओर ध्यान दिलाने के लिए मनाया जाता है। ये हमें ये याद दिलाता है कि मस्तिष्क केवल एक जैविक अंग नहीं है, ये हमारी पहचान है, हमारी यादें हैं, हमारा पूरा व्यक्तित्व है और इसलिए इसकी देखभाल भी उतनी ही जरूरी है जितनी दिल, लंग्स यानी कि फेफड़े या फिर किडनी की। मस्तिष्क से जुड़ी समस्याएं कई बार बहुत धीमी शुरुआत के साथ आती हैं, जैसे कि भूलने की आदत पड़ना, बार बार सिरदर्द का होना, हाथ पैरों में झंझनाहट, बोलने या संतुलन बनाए रखने में दिक्कत, ये सब शुरुआती संकेत हो सकते हैं। लेकिन अक्सर हम इन्हें सामान्य थकावट या उम्र का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि अगर सही समय पर पहचाना जाए तो मस्तिष्क से जुड़ी कई गंभीर बीमारियां रोकी या नियंत्रित भी की जा सकती हैं। जैसे हम आपको बताएं कि स्ट्रोक यानी लकवे की स्थिति ये तब होती है

0: जब मस्तिष्क की रक्तवाहिनी अचानक ब्लॉक हो जाती है या फट जाती है। ये एक आपात स्थिति है और अगर 3 घंटे के भीतर इलाज न मिले तो व्यक्ति की बोलने, चलने या सोचने की क्षमता स्थायी रूप से प्रभावित हो सकती है। इसी तरह डिमेंशिया या अल्जाइमर, जिसमें व्यक्ति की याददाश्त और पहचान धीरे धीरे कमजोर होती जाती है, समय पर ध्यान देने पर इसकी गति को धीमा किया जा सकता है। आज के बदलते समय में तनाव, नींद की कमी, अनियमित और लगातार स्क्रीन पर बिताया गया समय भी हमारे मस्तिष्क पर असर डाल रहा है। युवा वर्ग में माइग्रेन, नींद न आना और एकाग्रता की कमी जैसे लक्षण आम होते जा रहे हैं। वहीं बुजुर्गों में भूलने की समस्या, चिड़चिड़ापन और मानसिक अवसाद जैसे लक्षण बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में बेहद जरूरी है कि हम मस्तिष्क के लिए भी उसी तरह नियमित ध्यान, पोषण और विश्राम का प्रबंध करें जैसे हम शरीर के लिए करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम अपने मस्तिष्क की देखभाल करें कैसे। इसका उत्तर बहुत ही सरल है, वो है संतुलन। संतुलित भोजन जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, हरी पत्तेदार सब्जियां, मेवे और पर्याप्त पानी शामिल हो, मस्तिष्क के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके साथ साथ अच्छी नींद, नियमित व्यायाम और सबसे जरूरी मानसिक व्यायाम यानी नई चीजें सीखना, किताबें पढ़ना, बातें याद रखना, संगीत सुनना या किसी खेल में ध्यान लगाना, ये सब मस्तिष्क को सक्रिय और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। साथ ही तनाव को नियंत्रित करना भी उतना ही जरूरी है। जब हम लगातार चिंता में रहते हैं तो हमारा मस्तिष्क तनाव हार्मोन रिलीज करता है जो उसकी कार्य क्षमता को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। इसके लिए ध्यान, योग और खुलकर बातचीत करने की आदत बेहद उपयोगी हो सकती है। और हाँ, कभी कभी चुप रहना और मस्तिष्क को विश्राम देना भी बेहद जरूरी होता है, क्योंकि शांत मस्तिष्क ही रचनात्मक और संतुलित निर्णय ले सकता है। श्रोताओं, विश्व मस्तिष्क दिवस हमें ये भी सिखाता है कि मानसिक स्वास्थ्य और मस्तिष्क स्वास्थ्य एक दूसरे से अलग नहीं है। जब हम डिप्रेशन, एंग्जाइटी, नींद की कमी या चिड़चिड़ेपन की बात करते हैं तो ये केवल भावनात्मक स्थिति नहीं होती है, ये मस्तिष्क की रासायनिक संरचना में होने वाले बदलावों का परिणाम होता है। और यही कारण है कि मानसिक बीमारी को लेकर समाज में फैली शर्म और चुप्पी को तोड़ना बेहद जरूरी है। अगर किसी को सिर में दर्द हो तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन अगर किसी को चिंता या उदासी महसूस हो तो हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। यही रवैया बदलने की सबसे बड़ी आज जरूरत है। तो आज इस विश्व मस्तिष्क दिवस पर हम ये प्रण लें कि हम अपने और अपनों के मस्तिष्क के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे। मस्तिष्क को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वही हमारी दृष्टि, दिशा और निर्णयों की असली धुरी है। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: तंत्रिका संबंधी विकारों और मस्तिष्क स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता है जरूरी। इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे आज की स्वास्थ्य चर्चा। जानकारी दे रही थी नीना सोनकर। और अब आइए आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आज रात 10 बजे सुनिएगा संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग के संपादित अंश। चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। संसद समीक्षा का प्रसारण समय होगा रात 8 बजे। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। जिले की हलचल का प्रसारण समय होगा सुबह 9:15। आज के जिले हैं वाराणसी और मऊ। सुबह 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम के तहत समाअत फरमाइएगा डॉक्टर दरख्शां ताजवर का मकाला, जिसका उनवान होगा सन 1857 की जंगे आजादी में उर्दू प्रेस की खिदमात। इसके अलावा कलामे शायर में आज की शायरा होंगी मोहतरमा नुसरत जहां। पेशकश आकाशवाणी के गोरखपुर मरकज की होगी। कानून की बात, इस कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा शाम 7:31। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर आप सुनेंगे विदुषी एन राजम का राग देसी में वायलिन वादन। प्रेम प्रकाश विश्वकर्मा और साथी के गाए आल्हा का आनंद लीजिएगा लोकरंग कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर और लोक माधुरी में दिन में 2:45 पर। दिन में 1:15 पर

आंगनबाड़ी कार्यक्रम में हमारी बहनें सुनेंगी स्ट्रोक और डिमेंशिया कारण लक्षण और उपचार विषय पर डॉक्टर वी के पालीवाल प्रोफेसर न्यूरोलॉजी विभाग एसजीपीजीआई लखनऊ से की गई भेंटवार्ता। भेंट करता होंगी नीना सोनकर। गन्ने में फसल सुरक्षा प्रबंधन डॉक्टर सुजीत प्रताप सिंह से की गई ये भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी विज्ञान और किसान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर। भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। शिव कुमार शास्त्री की वार्ता सर्वोपरि है अभिभावकों के प्रति कर्म की महत्ता, सुनना ना भूलें युवा तरंग कार्यक्रम में आज शाम 5:10 पर। शाम 5:45 पर नई उड़ान कार्यक्रम में सुनिएगा फिट इंडिया क्रम में फिटनेस से फ्यूचर गाथा स्वस्थ भारत की विषय पर डॉक्टर ए के त्रिपाठी सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष हेमेटोलॉजी विभाग KGMU लखनऊ से की गई भेंटवार्ता। भेंट करता होंगी नीना सोनकर। हेलो किसान, ये कार्यक्रम किसान भाई सुनेंगे शाम 6:30 पर। आज इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर भानु प्रकाश राम, निदेशक उद्यान विभाग उत्तर प्रदेश। आज इस कार्यक्रम में विषय होगा नए फलदार पौध लगाने की उन्नत तकनीक, सटीक सब्जियों खरीफ सब्जियों की उन्नत कृषि तकनीक, फूल उत्पादन, मशरूम उत्पादन, मौन पालन, उद्यान विभाग से देय सुविधाएं। प्रस्तुति एवं संचालन डॉक्टर सुशील कुमार राय का होगा। गुलशन भारती की गाई गजलों का लुत्फ उठाइएगा सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज रात 8:15 पर। इसके अलावा समय समय पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये थे आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम जिन्हें आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ, आप सुन रहे हैं वैशाली के साथ। हाजिर होते हैं कुछ ही पलों में कार्यक्रम विविधा लेकर।

नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक नदी बिना किनारों के कैसी होगी? बस पानी का फैलाव, न दिशा, न गति, न मंजिल। लेकिन जैसे ही किनारे मिलते हैं, वही पानी नदी बन जाता है, बहता है, आगे बढ़ता है और अंततः समुद्र तक पहुंच जाता है। दोस्तों, हमारा जीवन भी बिल्कुल वैसा ही है और वो किनारे हैं अनुशासन। तो आज की विविधा में बात अनुशासन से साधे जीवन की। अक्सर हम सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब सख्ती, पाबंदी या किसी के दबाव में जीना है, पर सच तो ये है दोस्तों कि अनुशासन कोई जंजीर नहीं, बल्कि वो पंख है जो हमें उड़ने की ताकत देता है। कभी सोचा है, सूरज हर सुबह समय पर निकलता है, तारे अपने तय रास्ते पर चलते हैं, ऋतुएं अपने क्रम में आती जाती हैं, पूरी प्रकृति एक अनुशासन में बंधी है और इसी अनुशासन से सृष्टि चलती है। अब जब प्रकृति भी अनुशासन मानती है, तो हम इंसान इससे अछूते कैसे रह सकते हैं? अनुशासन का पालन करते हुए अपने जीवन को आसानी से साधा जा सकता है। अपने जीवन के उद्देश्य को याद रखते हुए सही समय पर सही काम करना, भले ही उस समय वो काम करने का हमारा मन ना हो। जब हम मन के पीछे चलते हैं, तो मन हमें आराम की तरफ ले जाता है, लेकिन जब हम अनुशासन के साथ चलते हैं, तो वही अनुशासन हमें सफलता की ओर आगे बढ़ाता है। एक छोटी सी कहानी है। एक गांव में दो लकड़हारे रहते थे। दोनों को जंगल से लकड़ी काट कर लानी थी। जानते हैं, पहला लकड़हारा बिना रुके, बिना योजना के दिन रात कुल्हाड़ी चलाता रहा। उसे लगा मेहनत ही सब कुछ है। वहीं दूसरा लकड़हारा हर दिन तय समय पर काम शुरू करता, बीच में आराम करता और हर दो घंटे बाद

अपनी कुल्हाड़ी को धार देता। शाम होते होते दूसरे लकड़हारे ने कहीं ज्यादा लकड़ियां काट ली थीं। पहला लकड़हारा हैरान होकर पूछता है, तुमने आराम भी किया फिर भी मुझसे आगे कैसे निकल गए? दूसरे लकड़हारे ने मुस्कुराकर जवाब दिया और कहा, मैंने सिर्फ मेहनत नहीं की, मैंने अनुशासन का पालन

ने अनुशासन का पालन करते हुए मेहनत की। दोस्तों, यही फर्क है बेतरतीब मेहनत और अनुशासित मेहनत में। अब जरा अपने जीवन की तरफ देखिए। एक विद्यार्थी जो रोज तय समय पर पढ़ाई करता है, वो परीक्षा के आखिरी दिन घबराता नहीं। एक खिलाड़ी जो रोज अभ्यास करता है, वो मैदान में खेलने से डरता नहीं। एक कर्मचारी जो समय का पाबंद है, वो अपने काम से भरोसा जीतता है। और एक इंसान जो सुबह जल्दी उठता है, सही समय पर भोजन करता है, समय पर सोता है, वो शरीर और मन दोनों से स्वस्थ बना रहता है, मजबूत बना रहता है। इसके विपरीत एक ऐसा व्यक्ति जो योजनाएं तो बड़ी बनाए पर उस पर टिका ना रहे। ऐसे लोग सपने तो बहुत देखते हैं पर उन सपनों तक पहुंचने का रास्ता यानी अनुशासन उनके पास नहीं होता। नतीजा, सपने सपने ही रह जाते हैं। ना भूलें, प्रतिभा हमें शुरुआत देती है पर अनुशासन हमें मंजिल तक पहुंचाता है। जब हमारे काम समय पर पूरे होते हैं तो हमारा मन हल्का रहता है। जब हमारी दिनचर्या व्यवस्थित होती है तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। जब हमें पता होता है कि किस समय क्या करना है तो समय और ऊर्जा दोनों की बचत होती है। अनुशासन का अर्थ ये नहीं दोस्तों कि जीवन में मनोरंजन समाप्त कर दिया जाए। सच्चा अनुशासन तो जीवन में संतुलन बनाना सिखाता है। पढ़ाई का समय अलग, खेल का समय अलग, काम का समय अलग, परिवार का समय अलग, मोबाइल का समय सीमित और नींद का समय निश्चित। समस्या मनोरंजन में नहीं है। समस्या तब होती है दोस्तों जब मनोरंजन हमारे लक्ष्य से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब सवाल ये कि हम अपने जीवन में अनुशासन कैसे लाएं? सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ कीजिए। बड़ा नहीं, एक छोटा सा लक्ष्य, छोटा सा उद्देश्य तय करें, उसे रोज दोहराएं, चाहे मन हो या ना हो। समय की कदर करें क्योंकि समय ही सबसे कीमती पूंजी है। सफलता प्राप्त ना होने या हार जाने पर रुके नहीं, फिर से खड़े हों और आगे बढ़ें, क्योंकि अनुशासन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बार बार कोशिश करते रहना है। अनुशासन कोई एक दिन का फैसला नहीं है दोस्तों, ये रोज दोहराई जाने वाली आदत है। छोटी छोटी अच्छी आदतें जब रोज दोहराई जाती है ना, तो वही बड़ी सफलता की नींव बन जाती हैं। तो याद रखिए, नदी को समुद्र बनने के लिए किनारों की जरूरत होती है, पौधे को पेड़ बनने के लिए जड़ों की जरूरत होती है, और इंसान को सफल इंसान बनने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। सपने तो हर कोई देखता है पर उन्हें सच वही कर पाता है जो अपनी आदतों को अनुशासन में ढालना सीख जाता है। और जब जीवन अनुशासन से साधा जाता है तो हर सपना मुमकिन बन जाता है। तो आज की विविधा में बस इतना ही। दीजिए अनुमति हमें। नमस्कार।

0: नाथ ठाकुर, अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्र

0: नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकेत अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। 26,315 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा 333 किलोमीटर लंबा विंध्य एक्सप्रेसवे। 50,000 मेधावी स्नातक छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती में 396 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 83 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। नौ शिलान्यास। बहराइच को दी 352 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार है केंद्र सरकार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई अन्य जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। लगातार हो रही बारिश से राज्य में कई नदियों का जल स्तर बढ़ा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। एक रिपोर्ट।
1: कैबिनेट बैठक में महिला सशक्तिकरण और उच्च शिक्षा में छात्राओं को प्रोत्साहन देने के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंजूरी प्रदान की गई। इसके तहत लगभग 50,000 छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। इसके अंतर्गत राज्य निजी और संबद्ध विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों की शैक्षणिक सत्र 2025-26 में उत्तीर्ण छात्राओं में से टॉप 5% छात्राओं को लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने वाराणसी में 500 क्षमता वाले महिला छात्रावास के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि राज्य विधानमंडल का मानसून सत्र 3 अगस्त से प्रारंभ होगा और 6 अगस्त तक चलेगा। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: कैबिनेट की बैठक के बाद फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि विंध्य एक्सप्रेस वे को लेकर भी कैबिनेट की स्वीकृति मिली है। ये 333 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि प्रयागराज से शुरू होकर भदोही से मिर्जापुर होते हुए सोनभद्र तक जाएगा। इस पर 26,315 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वहीं रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत मेधावी स्नातक छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दिए जाने के बारे में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि इस योजना का लाभ उन्हें मिलेगा जिनके परिवार की आय सीमा 12 लाख रुपए वार्षिक से कम होगी।
2: इसको एक पैकेज बनाया गया है जिसमें पंजीकरण शुल्क सरकार वहन करेगी, व्यापक वाहन बीमा योजना वो सरकार वहन करेगी, एक हेलमेट ISI मार्का ये उनको दिया जाएगा बच्चियों को।
0: उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि योजना की लाभार्थी छात्राओं को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस बेड़े में 250 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद से जुड़े प्रस्ताव, अग्निशमन और आपात सेवा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए 25 करोड़

0: 78 लाख रुपए के प्रस्ताव और यूपी आउटसोर्स सेवा निगम को 20 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त ऋण जैसे प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल श्रावस्ती में 396 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 83 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि आकांक्षी जिलों में शामिल श्रावस्ती ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है।
1: प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 100 ऐसे जनपदों की सूची निकाली जो सबसे पिछड़े हैं पूरे देश के अंदर, उसमें से श्रावस्ती भी एक था। पिछले 9 वर्ष में श्रावस्ती ने एक नई ऊंचाई अर्जित की।
0: मुख्यमंत्री ने कल ही बहराइच में महसी और नानपारा विधानसभा क्षेत्रों के लिए 352 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 70 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के आने से विकास कार्यों और प्रगति के जरिए पिछले 9 सालों में प्रदेश को नई पहचान मिली है।
2: जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई, यूपी में डबल इंजन की सरकार आई, आज बहनों और भाइयों आप देखते होंगे परिवर्तन, हर क्षेत्र में परिवर्तन। अब उपद्रव नहीं होता है, अब तो उत्सव प्रदेश के रूप में यूपी ने एक नई पहचान बनाई।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं।
3: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद कल दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। कल संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
4: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
0: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज अहम बैठक होगी। एक रिपोर्ट।
5: भगवान श्री रामलला मंदिर के चढ़ावा विवाद के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक के दौरान ट्रस्ट महासचिव के पद और न्यासियों के 3 खाली पदों पर विचार विमर्श करेगा और राम मंदिर के पहले CEO के चयन की प्रक्रिया को भी अंतिम रूप दिया जा सकता है। बैठक के मद्देनजर SPCT चक्रपाणी त्रिपाठी और ADM City योगानंद पांडे ने बैठक स्थल के सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी।
6: डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन की मंजूरी देने का उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। यह भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में नियामक स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन

0: स्पेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देश शामिल हैं। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
1: राजधानी लखनऊ सहित कई प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। लगातार हो रही बारिश से राज्य में कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। लखीमपुर खीरी के पलियाकला में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बाराबंकी में घाघरा खतरे के निशान के करीब है। उत्तराखंड में पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के कारण पीलीभीत में भी शारदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। वहीं वाराणसी में गंगा के किनारे घाटों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है और प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। 26,315 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा 333 किलोमीटर लंबा विंध्य एक्सप्रेसवे। 50,000 मेधावी स्नातक छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती में 396 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 83 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। और शिलान्यास, बहराइच को दी 352 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार है केंद्र सरकार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई अन्य जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। लगातार हो रही बारिश से राज्य में कई नदियों का जलस्तर बढ़ा। इसके साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।

स्वागत है आप सभी श्रोताओं का मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ से 747 किलो हर्ट्ज पर। और अब आइए शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनते हैं विदुषी एन राजम का वायलिन पर बजाया राग देसी, तबले पर संगत की है ईश्वर लाल शर्मा ने।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विदुषी एन राजम का वायलिन पर बजाया राग देसी। तबले पर संगत की थी ईश्वर लाल शर्मा ने। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ, आकाशवाणी लखनऊ से, जिसे वाइंड अप करने का वक्त हो चला है। तो दीजिए अनुमति हमें आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। बने रहिए 747 किलो हर्ट्स पर और सुनते रहिए आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित हमारे अन्य कार्यक्रम। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवार में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का सामना उन्नति हुटा से होगा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा।
5: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत का औषधि उद्योग नॉर्थ मैसेडोनिया में दवाओं और चिकित्सक उपकरणों के संयुक्त उत्पादन में निवेश कर सकता है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड चेन, नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और स्टार्टअप क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने नॉर्थ मैसेडोनिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहल से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अगले वर्ष भारत में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट

0: समिट वेल्स में भाग लेने को भी आमंत्रित किया। नॉर्थ मैसेडोनिया से शुभाश्री की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पूजा।
1: भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। 3 दिन की इस बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी से निपटने की तैयारी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच पर विचार विमर्श होगा।
2: यह बैठक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख वैश्विक प्राथमिकताओं पर सामूहिक कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंत्री स्तरीय बैठक में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा, स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक आरोग्य तथा सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक से होगी। इसके बाद कल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय नौसेना आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवण को बेड़े में शामिल करेगी। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि होंगे।
3: कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित आईएनएस मलवान आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार किया गया है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इसमें आरबीओ 6000 रॉकेट और डीआरडीओ द्वारा विकसित टॉर्पेडोस की शक्ति है। जर्मनी और भारत द्वारा तैयार किए गए सोनार का उपयोग भी किया गया है। माहे श्रेणी के इस युद्धपोत तटीय और उथले समुद्र क्षेत्र में प्रभावी परिचालन के लिए बनाया गया है। इससे नौसेना की समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमता और मजबूत होगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का फैसला किया है। उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाने और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लागू करने के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई।
2: योजना के तहत सरकार न केवल स्कूटर बल्कि उसका बीमा, पंजीकरण, हेलमेट, आवश्यक सहायक उपकरण और 4 लीटर पेट्रोल भी मुहैया कराएगी। दिव्यांग छात्राओं, शहीदों की बेटियों और गरीब परिवारों की बेटियों के लिए आय सीमा की शर्त में छूट भी दी जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि ये योजना उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ाएगी और खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की छात्राओं के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक पहुँचना आसान बनाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदन में विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ।
3: UCC के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा। तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे

0: अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि सरकार सदन में नीट सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।
2: और मैं कहूंगा कांग्रेस और विपक्ष के साथियों से, हम संसद के पटल पर हर प्रकार के संवाद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपकी जो मर्यादाएं तोड़ने की परंपरा बनती जा रही है, जो अराजकतावादी सोच आपके अंदर विकसित हो रहा है, निश्चित रूप से इससे देश कहीं ना कहीं दुखी है और देश अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है।
1: भारत ने विश्व व्यापार में अपनी बढ़ती भूमिका पर बल देते हुए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित, पारदर्शी और भेदभाव रहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में भारत की भूमिका तथा व्यापार संधि, उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विकासशील देशों के बीच सहयोग से व्यापारिक संबंध मजबूत करने के प्रयासों पर बल दिया। वाणिज्य विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत समावेशी वैश्विक विकास में भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष सिंगल्स के ही शुरुआती दौर में आज आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में MR अर्जुन और हरिहरन अमस्करुणन, मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे तथा तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला भी चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा भी की है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की जयंती पर उनका स्मरण किया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि समाज के प्रति उनकी सेवा और महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक विधेयक पारित कर दिया है। संसद के दोनों सदनों में सांसदों ने इस विधेयक के समर्थन में वोट दिया। इसके तहत स्कूल में विद्यार्थियों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस फैसले से फ्रांस सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2028 से जेनेरिक दवाओं के आयात पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अमेरिका में इन दवाओं का उत्पादन बढ़ाना है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि 1 अगस्त से अमेरिका में आयात होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर 2 साल तक कोई शुल्क नहीं लगेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2-3 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नास।
4: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष के धरने, छात्रों के विरोध प्रदर्शन और पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान संबंधी समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। नवभारत टाइम्स का शीर्ष समाचार है, जंतर मंतर पर लौटी भीड़, पीएम के घर के बाहर से विपक्ष के नेता हटाए। पत्र ने प्रधानमंत्री मोदी के कथन को भी सुर्खियों में जगह दी है, पेपर लीक के दोषियों को नहीं बख्शा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री मोदी ने नीट पेपर लीक को बताया घोर पाप। राजस्थान पत्रिका, लोकसत्य, दैनिक ट्रिब्यून और अमर उजाला ने धरना दे रहे विपक्षी नेताओं की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी है। जनसत्ता और दैनिक भास्कर ने सिक्किम में एक निर्माणाधीन सुरंग ढहने से हुई मजदूरों की मौत के समाचार को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। पत्रों ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मजदूरों के आश्रितों को अनुग्रह राशि की घोषणा का उल्लेख करते हुए सुरंग के प्रवेश द्वार और राहत अभियान का चित्र प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने पॉजिटिव न्यूज स्तंभ के अंतर्गत राजस्थान के आंधी गांव का उल्लेख किया है, जिसे बायोटेक वैज्ञानिक डॉक्टर सुदीप्ति अरोड़ा ने 100% कचरा रहित और आत्मनिर्भर बना दिया है। पंजाब केसरी ने

0: कमर्शियल जहाज पर हुए रूसी हमले में चार भारतीय नागरिकों की मौत के बाद रूसी राजनयिक को तलब किए जाने का समाचार सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर पर आधारित संपादकीय को शीर्षक दिया है, सुरक्षा की फिक्र। पत्र का कहना है कि भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए विदेश जाते हैं और वहां से विदेशी मुद्रा यहां भेजते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिलती है। मगर सवाल ये है कि विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है।
1: और लीजिए अंत में सुनिए मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स

0: मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवर में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का मुकाबला होगा उन्नति हुड्डा से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी, हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं, सऊदी शिमला 4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के ठीक 8:15 और 15 सेकंड हुए हैं और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम यंग बरेली। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम यंग बरेली में हमारे सभी सुनने वालों का बहुत बहुत वेलकम है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ साथ हमारे प्रोग्रामों को भी इंजॉय कर रहे होंगे ऑल ऑन 100.4 FM पर। साथियों, आप जानते हैं कि एवरी वेडनेसडे हम आपके लिए लेकर के आते हैं एक ऐसा अचीवर जिसने अपने क्षेत्र में पारंगता हासिल की हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर खेलकूद का। साथियों, आज हम बातचीत करेंगे बॉक्सिंग प्लेयर जिन्होंने कई सारे स्वर्ण पदक हासिल किए हैं अपने इस गेम में। तो ज्यादा देर न करते हुए आपको सीधे जोड़ते हैं मोहम्मद ताजीम से।
2: बरेली में आपका बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम किसी न किसी अचीवर्स को या प्रतिभाओं को अपने इस प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं, तो आज बॉक्सिंग के क्षेत्र में एक ऐसे ही उभरते हुए खिलाड़ी हैं, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। जी हेलो।
3: हेलो,
2: आपका नाम?
3: सर मेरा नाम मोहम्मद ताजीम।
2: मोहम्मद ताजीम जी, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप किस गेम को खेलते हैं हमारे श्रोताओं को बताएं।
3: सर मैं बॉक्सिंग करता हूं, एमेच्योर बॉक्सिंग।
2: अच्छा, एमेच्योर बॉक्सिंग। तो हमें ये बताएंगे कि आप ये बॉक्सिंग की जो प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते हैं या बॉक्सिंग खेलते हैं, तो ये शौक आपको बचपन से ही था या आपके माता पिता ने आपको प्रेरित किया?
3: हाँ सर, बस कुछ इस तरह का माहौल रहा है, आसपास लोग पहलवानी वगैरह करते हैं तो उसको देख करके बस थोड़ा इंटरेस्ट आ गया। और बॉक्सिंग तो एक अलग ही गेम है, मेरी कॉम वगैरह इन सबको देख करके थोड़ा बस।
2: अच्छा, आपको प्रेरणा मिली। तो ताजीम भाई, ये बताइए कि आपने जो ये बॉक्सिंग की शुरुआत की, तो इसके आपके कोच भी रहे होंगे?
3: जी बिल्कुल।
2: तो आपने कहाँ इसकी प्रैक्टिस की?
3: ये बरेली स्टेडियम, डोरीलाल स्पोर्ट्स स्टेडियम में।
2: अच्छा, आपने यहाँ से प्रैक्टिस शुरू की।
3: जी जी।
2: तो हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि अब तक आप बॉक्सिंग के क्षेत्र में कौन कौन से पदक आपको मिल चुके हैं, आपने जिला लेवल पर या स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर अब तक कहाँ कहाँ आपने प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट किया है और आपको कौन कौन से पदक मिले हैं, हमारे श्रोताओं को आप बताएं।
3: जी बिल्कुल। सर 2020 में मेरा गोल्ड मेडल था लखनऊ में स्टेट लेवल पे।
2: अच्छा
3: जी। उसके बाद 2022 में सिल्वर मेडल रहा।
2: अच्छा,
3: वो भी लखनऊ में हुआ था जी। उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल मेरठ में।
2: अच्छा।
3: फिर उसके बाद लास्ट ईयर बरेली में ही एक स्टेट कंपटीशन हुआ था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की वर्षगांठ वगैरह पर।
2: अच्छा।
3: तो उसमें भी मेरा ब्रॉन्ज मेडल रहा था।
2: अच्छा अच्छा।
3: और बाकी जी डिस्ट्रिक्ट में तो सारे ही गोल्ड मेडल है।
2: अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। आपने बताया कि आपको स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बहुत सारे आपको पदक मिल चुके हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे क्या इसी फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहेंगे आगे?
3: जी बिल्कुल, मैं सोचा तो यही सोचा है और इसमें ही कुछ करना है आगे। इतना टाइम दिया है तो कुछ और करने का ऑप्शन मुझे लगता नहीं है कि बचा है पास।
2: तो कहाँ तक आपने एजुकेशन ली है अब तक?
3: मैंने 12th किया है, अभी थोड़ा ड्रॉप लिया है।
2: अच्छा
3: जी, दोबारा से फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा।
2: तो बॉक्सिंग के क्षेत्र में ही आप अपना करियर बनाना चाहेंगे, तो चलते चलते हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, और अगर वो इजीली इस गेम में आना चाहें तो वो कहाँ से शुरुआत करें, ये भी हमारे श्रोताओं को बताएं आप।
3: मैं सिंपल सी बात है, सिर्फ बॉक्सिंग नहीं, मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप कुछ भी करें, कोई भी स्पोर्ट्स में जाएं, जरूरी नहीं है कि आप

0: बॉक्सिंग करें मतलब फिट रहने के लिए कुछ ना कुछ करना जरूरी है, और अगर बॉक्सिंग करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सिर्फ एक गेम ही नहीं है, ये हमें डिसिप्लिन सिखाता है, हमें फिट मतलब फिट रहते हैं, हमें से और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आप इसको इजीली स्टार्ट कर सकते हैं अपने आसपास किसी जिम या किसी एकेडमी वगैरह में जहाँ कोई बॉक्सिंग कोच हो।
1: अच्छा
0: बहुत सिंपल सा बेसिक है, स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द मतलब सीख भी जाएंगे, और ज्यादा
1: अच्छा
0: इतना जी और ज्यादा कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह भी नहीं लगते, बस आपको एक अपने ग्लव्स खरीदने हैं।
1: अच्छा अच्छा तो अच्छा लगता है आपको ये गेम खेलते हुए।
0: जी बिल्कुल,
1: मोहम्मद ताजीम जी, आपसे हमारी बातचीत हुई प्रोग्राम यंग बरेली में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच।

जी हाँ दोस्तों, 100.4 FM पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यंग बरेली। जी हाँ दोस्तों, आज 22 जुलाई है और भारत में इस दिन राष्ट्रीय झंडा दिवस नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डे मनाया जाता है। साथियों, ये दिवस 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से अपनाने की ऐतिहासिक घटना की याद में मनाया जाता है। जी हाँ श्रोताओं, हमारे देश के आजाद होने के बाद संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 22 जुलाई 1947 में वर्तमान तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया, जिसमें तीन रंग थे, ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग। सफेद रंग की पट्टी में नीले रंग से बना था अशोक चक्र, जिसमें 24 तीलियां थीं जो धर्म और कानून का प्रतिनिधित्व करती थी। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का वही स्वरूप आज भी मौजूद है। और सबसे पहले देश के राष्ट्रीय ध्वज की पेशकश 1921 में महात्मा गांधी जी ने की थी, जिसमें बापू ने दो रंग के झंडे को राष्ट्रीय ध्वज बनाने की बात कही थी। इस झंडे को मछलीपट्टनम के पिंगली वेंकैया ने बनाया था। दो रंगों में लाल रंग हिंदू और हरा रंग मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करता था। बीच में गांधी जी का चरखा था, जो इस बात का प्रमाण था कि भारत का झंडा अपने देश में बने कपड़े से बना। और इसके बाद स्वतंत्रता के आंदोलन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन में तीन रंगों के स्वराज झंडे का प्रयोग किया गया। खिलाफत आंदोलन में मोतीलाल नेहरू जी ने इस झंडे को थामा और बाद में कांग्रेस ने 1931 में स्वराज झंडे को ही राष्ट्रीय ध्वज की स्वीकृति दी। स्वराज झंडे पर आधारित तिरंगे झंडे के नियम कानून फ्लैग कोड ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए, जिसमें निर्धारित था कि झंडे का प्रयोग केवल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर ही किया जाएगा, जिसमें ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग था, साथ ही बीच में नीले रंग से चरखा बना हुआ था।

जी हाँ दोस्तों, आपने ट्यून किया 100.4 FM पर आकाशवाणी का बरेली केंद्र, और आप एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम यंग बरेली। सदियों आज विश्व मस्तिष्क दिवस वर्ल्ड ब्रेन डे, जो हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी WFN द्वारा 2014 में की गई थी। और इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को मस्तिष्क के जुड़ी बीमारियों जैसे कि स्ट्रोक है, अल्जाइमर और मिर्गी के प्रति जागरूक करना है और दिमागी स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। साथियों, कहते हैं ना कि मस्तिष्क हमारे शरीर के सबसे जटिल अंगों में से एक है, जो हमारी सोचने, समझने, याद रखने और शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। मस्तिष्क को सेहतमंद रखने के लिए आप कुछ टिप्स अपना सकते हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी आप इसको अपना कर अपने दिमाग को संतुलित रख सकते हैं, उसको स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे कि पर्याप्त नींद लें, हर रात 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद दिमाग को तरोताजा करती है। हाइड्रेटेड रहें। जी हाँ साथियों, मस्तिष्क का लगभग 75% हिस्सा पानी से बना है, इसलिए भरपूर मात्रा में पानी पिएं, मानसिक व्यायाम करें जैसे नई नई चीज़ों को सीखें, किताबें पढ़ें, संतुलित आहार बहुत ज़रूरी है जैसे कि हरी सब्जियां, फल और ओमेगा 3 फैटी एसिड, अखरोट, मछली से भरपूर भोजन करें। साथियों, इन बातों को अपना कर आप अपने दिमाग को तरोताज़ा रख सकते हैं, उसको फिट रख सकते हैं, उसको स्वस्थ रख सकते हैं। यही हमारा आपके लिए बेहतर संदेश है।

जी हाँ साथियों, 100.4 FM पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यंग बरेली। और अब एक नजर बरेली की खबरों पर। साथियों, जाट रेजिमेंट सेंटर में 6 से 13 अगस्त तक की जाएगी कोटा अग्निवीर भर्ती। साथियों, उमस भरी गर्मी से राहत, बरसात की वजह से मौसम हुआ सुहावना। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे की लिए किया सर्वेक्षण शुरू। उर्स के दौरान विशेष ट्रेनें चलाने की मांग उठाई। और साथियों, पशुओं का आज से किया जाएगा टीकाकरण। नगर निगम कर्मियों ने सुरक्षित व यंत्रीकृत सफाई का दिया संदेश। डीएम ने मानसिक मंदित आश्रय गृह का किया निरीक्षण, संवासियों से की बातचीत।

जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र की ओर से विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए आवेदकों के साक्षात्कार शुरू। रोहिलखंड विश्वविद्यालय में 24 जुलाई को होगी एमएड प्रवेश काउंसलिंग। हनुमान चालीसा के बाद संकीर्तन का आयोजन। आज भर सकेंगे स्नातक और परा स्नातक के चुनौती मूल्यांकन फॉर्म। फुटबॉल प्रतियोगिता के रोमांचक मुकाबले फाइनल में बरेली व मेरठ। सीबीएसई नेशनल एथलेटिक्स मीट में जॉनसन चयनित। 4 खिलाड़ियों ने स्वर्ण व 3 ने जीते रजत पदक। समूहों की बनाई बेडशीट का अस्पतालों में होगा उपयोग। और साथियों, 23 व 27 जुलाई को महिला खेल प्रतियोगिता के ट्रायल। क्षेत्रीय खेल कार्यालय ने महिला खिलाड़ियों के लिए विभिन्न खेलों की जिला एवं मंडल स्तरीय चयन ट्रायल्स की तिथियां घोषित कर दी हैं। बास्केटबॉल और हैंडबॉल के ट्रायल 23 जुलाई को और मंडल स्तरीय चयन 24 जुलाई को स्पोर्ट स्टेडियम में होगा। वहीं जिम्नास्टिक और कबड्डी के ट्रायल 27 जुलाई व मंडल स्तरीय चयन 28 जुलाई को आयोजित किए जाएंगे। चयनित खिलाड़ी प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी ने खिलाड़ियों से समय पर आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होने की अपील की है। तो जो भी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे, ट्रायल देंगे, जो भी चयनित होंगे, उन सभी के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम यंग बरेली। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। और श्रोताओं, आइए अब आनंद लेते हैं लोकगीतों का। ये पहला लोकगीत अंशुना सक्सेना के स्वर में।

0: अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम आकाशवाणी का जो बरेली केंद्र है 104.4 FM पर। श्रोताओं, सुबह के 9 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
1: आपने ट्यून किया है विविध भारती और सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं बागी फिल्म का गीत, मोनाली ठाकुर और मीत ब्रोज की आवाजों में, कुमार की रचना, मीत ब्रोज का संगीत।

अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा और प्रीतम का संगीतबद्ध किया ये गीत सुनिए अख्तर चन्नाल की आवाज में। फिल्म का नाम फैंटम।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और भी कर दे।

0: डर लग गया तेरे पीछे क्या?
1: अरे ललन मियां आप हैं? काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
2: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों की। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
3: सुनिए।
4: हेट स्टोरी 3। इस फिल्म का गीत अरमान मलिक और नीति मोहन की आवाजों में, रश्मि विराग ने इसे लिखा है, अमाल मालिक का संगीत।

आपने ट्यून किया है विविध भारती और सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म का गीत। अश किंग की आवाज साथ दिया है शशा तिरुपति ने। इस गीत को लिखा है अराफात महमूद और तनिष्क बागची ने, संगीत तनिष्क बागची का।

ए आर रहमान और श्रीनिधि वेंकटेश की आवाजों में अभी आपने सुना ओके जानू फिल्म का ये गीत, गुलजार के बोल थे और संगीत था ए आर रहमान का। इस गीत के साथ ही आज के इस चित्रलोक कार्यक्रम से नेहा आगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आन मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको एक दिलचस्प घटना बताते हैं। एक लड़का था जिसकी बहन की शादी हो रही थी और अभिनेता मोतीलाल चूंकि उसके रिश्तेदार थे इसलिए वो इस शादी में शामिल होने के लिए आए थे। चूंकि माहौल शादी के जश्न का था तो उस लड़के से कहा गया कि तुम गाना गाओ क्योंकि परिवार में सब जानते थे कि इसे गाने का शौक है। उस लड़के ने गाना गाया और सब लोग मुग्ध होकर सुनते रहे। मोतीलाल जी को लगा कि इस लड़के में प्रतिभा है। उन्होंने उसे मुंबई बुला लिया और बस यहां से फिल्म संगीत का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया क्योंकि ये नौजवान था मुकेश चंद्र मात्र।

हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास को खंगालें तो जो सबसे रोशन सितारे हमें नजर आते हैं पुरुष गायकों में, वो हैं मोहम्मद रफी, मुकेश और किशोर कुमार। जाहिर है कि इन तीन मुख्य सितारों को अलग कर दें तो फिल्म संगीत के न जाने कितने अनमोल गाने फिल्म संगीत के इतिहास से हट जाएंगे। मुकेश चंद्र माथुर के अपने फैन रहे हैं और दुनिया के कोने कोने में रहे हैं। सबसे बढ़िया बात तो यह है कि मुकेश की गायकी में ऐसी सादगी, ऐसी सरलता है कि यूं लगता है जैसे वो हमारे लिए गा रहे हैं और हम उनके साथ गा रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि आपके परिवार में अंत्याक्षरी हो रही हो, कोई पिकनिक हो, कोई अन्य उत्सव हो, गाने का माहौल हो, तो कोई ना कोई मुकेश का फैन आपको जरूर मिल जाएगा। यूं लगेगा जैसे मुकेश उसकी आवाज में गा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।

0: अपने।
1: मुकेश चंद्र माथुर का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। पिता लाला जोरावर चंद इंजीनियर थे और माँ थी चांद रानी। दरअसल पुरानी दिल्ली में पैदा हुए इस लड़के के जहन में संगीत की महक बहुत पहले से थी। बहुत बचपन से इस लड़के ने गुनगुनाना शुरू कर दिया था। ये वो दौर था जब सबसे बड़े गायक थे कुंदन लाल सहगल और सभी उनके दीवाने हुआ करते थे। जाहिर है कि यंग मुकेश भी कुंदन लाल सहगल के फैन थे। दसवीं पास की उस जमाने में इतनी पढ़ाई बहुत मानी जाती थी। इसके बाद लोक निर्माण विभाग में काम करना शुरू कर दिया। तकरीबन यही दिन थे जब उनकी बहन की शादी हुई और वही घटना हुई जो हमने आपको इस कार्यक्रम की शुरुआत में सुनवाई थी, और इस तरह से मुकेश का मुंबई जाने का रास्ता खुल गया। हुआ यूं कि रंजीत मूवी टोन की ओर से एक विज्ञापन जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि एक नए गायक की तलाश जारी है। और फिर क्या हुआ कि चंदूलाल शाह के जारी किए गए इस विज्ञापन को देखकर मुकेश मोतीलाल जी के पास मुंबई आ गए। यहां आने के बाद उन्होंने पंडित जगन्नाथ प्रसाद से संगीत की तालीम लेनी भी शुरू कर दी और उन्होंने बड़ी शिद्दत से ये सपना देखा कि वो गायक अभिनेता बनेंगे। और ऐसा हुआ भी। सन 1941 आया, मुकेश ने अपनी पहली फिल्म साइन की निर्दोष। इस फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया और गाया भी। यानी ये वो पहला गाना है जो मुकेश जी ने गाया, पर इस गाने में मुकेश जी ने प्लेबैक नहीं किया, यानी किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए गाया। ये गाना था दिल ही बुझा हुआ है तो फसले बहार क्या।

मुकेश जी का पहला प्लेबैक गाना कौन सा था ये भी आपको बता देते हैं। सन 1945 में फिल्म पहली नजर बन रही थी। संगीतकार अनिल बिस्वास से मोतीलाल ने ये कहा कि आप मेरे लिए एक युवा गायक से प्लेबैक करवाएं। मुकेश की आवाज जब अनिल बिस्वास ने सुनी तो उन्हें ये आवाज जम गई और फिर मुकेश ने गाया अपना पहला प्लेबैक सॉन्ग पहली नजर फिल्म में।

लाल सहगल तक इस गाने की ख्याति पहुंची और उन्होंने इस गाने का रिकॉर्ड सुना तो वो चकित रह गए। उन्होंने तपाक से ये सवाल पूछा, ये गाना मैंने कब गाया? इसके बाद उन्होंने मुकेश को अपने घर बुलवाया और कहा कि तुम गाने गाते जाओ। मुकेश एक के बाद एक कई गाने गाते चले गए और कुंदन लाल सहगल उस जमाने के सुपरस्टार, उस जमाने के लाजवाब गायक और अभिनेता मुकेश को मुग्ध भाव से सुनते चले गए। उन्हें लगा कि यही है मेरा उत्तराधिकारी और उन्होंने अपना रियाज वाला हारमोनियम मुकेश को भेंट कर दिया। ये कुंदन लाल सहगल का मुकेश के लिए आशीर्वाद था। सन 1941 में निर्दोष में अभिनय करने के बाद सन 1943 में मुकेश ने एक और फिल्म में अभिनय किया जिसका नाम था आदाब अर्ज। सन 1953 में उन्होंने फिल्म माशूका में अभिनय किया जहां उनकी हीरोइन थी सुरैया और सन 1951 में मल्हार फिल्म में अभिनय किया। संगीतकार रोशन की ये पहली फिल्म

ये वो दौर था जब मुकेश कुंदन लाल सहगल की छाया में थे, उनके प्रभाव में थे और उनके जैसा गाया करते थे। सन 1948 में नौशाद ने दिलीप कुमार की फिल्म मेला के लिए मुकेश को गाने का मौका दिया और नौशाद के जरिए कुंदन लाल सहगल की छाया से बाहर आया उस जमाने का युवा पार्श्व गायक मुकेश। और फिर बस मुकेश की अपनी शैली तैयार हो गई। सन 1949 तक मुकेश का स्वर कुछ ऐसा हो चुका था।

सन 1948-49 का दौर भारत में फिल्म संगीत के बदल जाने का दौर था। कैसे, आपको बताते हैं। लगातार नई प्रतिभाएं आती चली जा रही थीं और इन नई प्रतिभाओं में शामिल थे युवा संगीतकार शंकर जयकिशन। शंकर सिंह रघुवंशी और जयकिशन पांचाल किस तरह से मिले, ये तो एक इतिहास है। राज कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म बरसात में संगीत देने का मौका दिया और इस युवा संगीतकार जोड़ी ने कई युवा कलाकारों से गाने गवाए, जिनमें से एक मुकेश भी थे। फिल्म बरसात में मुकेश ने दो गाने गाए थे। एक गाना था ये।

और इसके बाद राज कपूर, शंकर जयकिशन और मुकेश की इस तरह से टोली बनी कि एक के बाद एक इनकी फिल्में आती चली गईं और इन तमाम फिल्मों में मुकेश के गाने आते चले गए, यहां तक कि मुकेश का आखिरी गीत भी राज कपूर

कपूर की ही फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया गया था। ये कहानी बाद में, पहले आपको एक दिलचस्प आंकड़ा बताते हैं। जरा सोचिए कि मुकेश ने किस संगीतकार के लिए सबसे ज्यादा गाया होगा। आपने सही सोचा है, शंकर जयकिशन के लिए मुकेश ने कुल 133 फिल्मों में पार्श्व गायन किया, जबकि कल्याण जी आनंद जी के लिए 99 फिल्मों में। जाहिर है कि कल्याण जी आनंद जी भी मुकेश के कम फैन नहीं थे।

चलिए फिर से पीछे चलते हैं, समय के चक्र को घुमाते हैं और पहुंच जाते हैं सन 1948 में। आप सोच रहे होंगे कि यहां हम क्यों आए हैं। दरअसल यहां हम आपको ये बताने के लिए आए हैं कि बरसात वो पहली फिल्म नहीं थी जिसमें मुकेश ने राज कपूर के प्रोडक्शन के लिए गाया था। राम गांगुली के निर्देशन में आग में वो ये गाना गा चुके थे।

अब राज कपूर के साथ मुकेश ने किन किन फिल्मों के लिए गाया, एक के बाद एक लड़ी में फिल्में और गाने पिरोते हुए आज के फनकार कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आप हमारे साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए जरा अपने पैंट को थोड़ा सा ऊपर मोड़ लीजिए, सिर पर एक टोपी पहन लीजिए और सन 1951 में चलकर उछलते हुए मेरे साथ

सन 1964 में राज कपूर ने अपनी बहुत ही महत्वाकांक्षी फिल्म बनाई, जो राज कपूर की पहली कलर फिल्म थी, फिल्म संगम। इस फिल्म में मुकेश ने ये मार्मिक गाना गाया था।

सन 1966 तक हम आ पहुंचे हैं और यहां हमारे हाथों में है फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक मारे गए गुलफाम। हमें

और फिर सन 1978 मुकेश को अमेरिका की यात्रा पर जाना था और जाने से पहले जो आखिरी गीत उन्होंने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए रिकॉर्ड करवाया वो सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के लिए था।

इस गाने को रिकॉर्ड करने के बाद मुकेश ने एक लंबी उड़ान ली अमेरिका के लिए, और वहां से इससे भी लंबी उड़ान वो इस फानी दुनिया को अलविदा कह के चले गए। ये बातें हुई राज कपूर और मुकेश के साथ वाले गानों की, लेकिन ऐसा नहीं था कि राज कपूर के लिए सिर्फ उनके प्रोडक्शन में मुकेश ने गाया हो। जरा 1950 में केदार शर्मा की बनाई फिल्म बावरे नयन का ये गाना सुनिए और याद कीजिए नीली आंखों वाले राज कपूर को।

अब आप सोच रहे होंगे ये भी कोई बात हुई कि पूरे आज के फनकार कार्यक्रम में केवल राज कपूर की बातें। अरे नहीं नहीं, ये नाइंसाफी हम नहीं होने देंगे। दिलीप कुमार के लिए जो प्लेबैक मुकेश ने किया वो तो लाजवाब था। फिल्म यहूदी का ये गाना सुनिए, शैलेंद्र के बोल हैं।

लेकिन ऐसा नहीं है कि दिलीप कुमार या मनोज कुमार के लिए ही मुकेश ने प्लेबैक किया हो। याद कीजिए काका राजेश खन्ना को फिल्म मर्यादा में।

जाहिर है कि फिल्मी दुनिया के न जाने कितने नायकों ने पर्दे पर होंठ हिलाए, लेकिन आवाज तो मुकेश की थी, यानी उन्होंने मुकेश के गीत गुनगुनाए। मुकेश को भले ही एक दर्द भरी आवाज कहा जाता हो और रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड के बुक स्टॉल्स पर जो गानों की किताबें मिलती हैं उनके शीर्षक हों मुकेश के दर्द भरे नगमे, लेकिन मुकेश केवल दर्द भरे नगमों के गायक नहीं थे। जब भीगा भीगा मौसम आता है तो भला कौन सा ऐसा मनमौजी व्यक्ति हो जो ये गाना न गुनगुनाए।

0: याद।
1: यानी हम ये कहना चाहते हैं कि मुकेश ने तरह तरह के गाने गाए। वो केवल एक दर्द भरी आवाज नहीं थे, वो एक जिंदा दिल आवाज थे। मुकेश एक बेमिसाल शख्सियत जिन्होंने हर समय लोगों का भला किया। 27 अगस्त 1976, डेट्रॉइट मिशिगन, एक कॉन्सर्ट चल रहा है और मुकेश गाना गा रहे हैं। पर्दे के पीछे जाते हैं, दिल का दौरा पड़ता है और वो इस अनजान दुनिया को अलविदा कहकर चले जाते हैं। कॉन्सर्ट जारी रहता है, उनकी आवाज को आगे बढ़ाते हैं उनके बेटे नितिन मुकेश। उसके कुछ दिन बाद मुंबई के एयरपोर्ट पर एक ताबूत उतरता है। एयरपोर्ट पर बेसब्री से इंतजार में हैं अभिनेता राज कपूर और अभिनेता मनोज कुमार। इसके अलावा फिल्मी दुनिया की कई जानी मानी शख्सियतें। मुकेश के ताबूत को देखकर राज कपूर रो पड़ते हैं और कहते हैं, मेरी तो आवाज ही चली गई। मुकेश के जाने से एक खला आ गई और ये खला कभी मिट नहीं सकती। मुकेश हम सबकी आवाज हैं, हम सब थोड़े थोड़े मुकेश हैं।

0: जाना।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक मुकेश पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
2: आज के

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। सुबह के 10 बज चुके हैं और ये समय है कार्यक्रम आपकी पसंद का। तो शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद की। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम आपकी पसंद में हमारे सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज 22 जुलाई है, आज मुकेश जी की जन्म एनिवर्सरी है, यानी कि जन्मतिथि है, तो सभी सुनने वालों को उनके जन्म दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। शुरुआत करते हैं इस पहले कमेंट के साथ बागपत से संजय डिंगिया, नमन डिंगिया, अपार डिंगिया, आपने सुना चाहा है फिल्म तीसरी कसम का ये गीत मुकेश की आवाज में। गीत है हसरस जयपुरी का और संगीत शंकर जयकिशन का। ग्राम पोस्ट हररपुर मटकली जिला बरेली से शाहरुख नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी, डीजे प्रधान और इनके सभी मित्रगण, रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़, आप हैं हमारे श्रोता दीदार, रेडियो श्रोता संघ बलराम गेट कासगंज से, एम असलम सैफी जैबुल ने, शबेगम सद्दाम सैफी, सोनी सैफी, जाहिद सैफी, आबाद खान और इनके परिवार के सभी लोग, पुराना तलाव डुमराव से बलीउल्ला अंसारी, आसमा नाज अंसारी, शबनम बानो, जेल रोड बक्सर से राज एसडी अंसारी, फातिमा नाज चमन पार्क दिल्ली से सोनम और अदीबा, आप हैं जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून और इनके परिवार के सभी लोग, दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफरा नवाज और साथ में हैं बीबी चाहत और सादिया, बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान, सोफिया खान और इनके परिवार के सभी लोग, आप हैं हमारे श्रोता कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरज जंगेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंगेल, नंदनी जंगेल और दमदा ग्राम सुकरी कला से अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरोशी ओशिका, आदित्य और इनके परिवार के सभी लोग, कस्बा मीरगंज बिजली घर से आदर्श दिवाकर, लव दिवाकर, ओमेंद्रपुरी गोस्वामी भाई, कल्लू मिस्त्री, आप हैं हनुमानगढ़ राजस्थान से रजाक मोहम्मद, समीना बेगम, इमरान खान, इरफान खान, मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार और इनके परिवार के सभी लोग, चर डोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गा राम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी, माया साहू और परिवार के लोग, चंदोसी रोड चमनपुरा उत्तर प्रदेश से आप हैं नदीम भाई, मुकेश गौतम, सुनील गौतम, अमन गौतम, बुधनगर खंडवा से नदीम भाई, बहजोई से राजू भाई, अक्षय कॉलोनी गोंदूर रोड धुलिया महाराज से मनोहर मगर, यामिनी मगर, उद्यन और अर्पिता, ये कमेंट हमारे पास आया है गिरगांव महाराज से गजानन नादरे, मारुत राव पांचाल और इनके सभी साथी, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत की सुतासु, अर्णब आनंद, सत्यम आनंद, बोड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मोना भगत, गुड्डी भगत, आप हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू, और ये कमेंट हमारे पास आया है उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से भेरूलाल बख्तरिया धाकड़, भोलू बख्तरिया, पिरबिड़ बख्तरिया, रियांश बख्तरिया, प्रतीक बख्तरिया और परिवार के लोग, आप हैं दीदार रेडियो श्रोता क्लब बहलोल नगर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से भाई प्रेम सिंह बड़वाल, सुखवीर काजल बड़वाल, लखवीर रानो, कृष्णा, श्रीमती छिंदो, शीतल, प्रवीण, नवीन, रंगीला, निशान और चटकू मटकू, ये कमेंट हमारे पास आया है हमारे श्रोता हैं कस्बा बाराड़ा जिला अंबाला से रवि कुमार, राहुल

रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरु कीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल। आप हैं एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ अभई, तहसील सिल्लोड़, जिला छत्रपति सामाजी नगर महाराष्ट्र से अनिल कुमार गोडके, वैशाली अनिल, प्रजक्ता वैष्णवी गायत्री और यगेश गोडके, ज्योतिनगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, फरसाराम सोलंकी, श्यामलाल चौहान, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी, हसन सिक्का और इनके परिवार के लोग। आप हैं हमारे श्रोता राजकमल रेडियो श्रोता संघ आष्टी, जिला जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नुमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, राम भाऊ तांदले, दूसरा जोड़ा आष्टी से दशरथ सागुते, अनुष्का सागुते, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी और इनके परिवार के लोग। आप हैं नागपुर महाराष्ट्र से कमल सुहाने, हाजी अफजाल मलिक, संदीप, रामगढ़ कैंट झारखंड से निप्पी सुहाने और इनके मित्रगण, गांव फारासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। आप हैं हमारे श्रोता कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। पलारी छत्तीसगढ़ से आप हैं नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग पूनाराम देवांगन, कृष्णा देवांगन। रामपुर लिसनर क्लब नालापर बाग छोटे साहब रामपुर से नवाबुद्दीन निजामुद्दीन, मोहम्मद जमालुद्दीन, सादिया अक्सा और हम्माद। ये कमेंट हमारे पास आया है कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ाओ सिटी दीवाना का। आप हैं मोहल्ला हलवाईन शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नजरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर और परिवार के लोग। नाज रेडियो क्लब करेली से निजार अहमद अंसारी, महजबी निसार अंसारी, बेटी नुजत फातिमा, अबरार अहमद अंसारी, इसरार अहमद अंसारी, इकबाल अहमद अंसारी, तस्लीम रजा और पप्पू भाई अंसारी। सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। बहड़ी से अंजुम भाई, खालिदा बेगम और इनके परिवार के लोग। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत और मोहम्मद रेहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर और सभी परिवारीजन। आप हैं जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहनी, ऋतिक, बलवीर सिंह और परिवारीजन। गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जाहिरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासीन हाशमी, शमशुल कमर राही। आप हैं धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू और इनके परिवार के लोग। जमशेदपुर झारखंड से आप हैं चिन्मय महातो और इनके परिवारीजन। आप हैं ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, आवान और अब्बासी परिवार के सभी लोग। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से सुनना चाहा है राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा। आप हैं मिट्ठू मुडा दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास और गेंदू भाई। शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर, जन्नत और इनके परिवार के सभी लोग। सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी हिमाश। और ये कमेंट हमारे पास आया है मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब बाजार रोड मुगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नजीम, पलक लुबना और यश मंसूरी का। आप हैं हमारे श्रोता विष्णु मिस्कीन, रितिका मिस्कीन, वाणी आरब, चंद्रकला, गणेश काशीनाथ, संगीता मिस्कीन, आरोही, प्रियांशी सोनी, दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से, महेंद्र मोदी ठाकुर साहब रामगढ़ कैंट से ये कमेंट हमें किया है। आप हैं रंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और परिवार के सभी लोग। मंगल बाजार कटिहार से रफी रहमान, बेगम शमा रफी और इनके परिवारीजन। आप हैं होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल और परिवार के सभी सदस्य। और ये कमेंट हमारे पास आया है गांव टोरोवाल जिला नवा शहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, प्रियंका थांदी, प्रशांत प्रियम, बेबी वामिका वाड़ी थांदी और इनके परिवार के सभी लोग। बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता बमारकंडे, संजय और बेबी किट्टू। तो आइए सुनते हैं तीसरी कसम फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज में।

0: I'm here.
1: दीप तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना,
0: दिमाग चार्ज कर अपना।
2: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन

0: मोबाइल चार्ज करना,
1: दिमाग चार्ज कर अपना।
2: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
1: देखा
0: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
2: अब क्या करोगे?
0: फ्री वाईफाई है ना?
1: बुद्धू सुधर जा।
2: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
0: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
2: आरबीआई कहता है
3: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
4: पद्मटा किसने पनगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। आपने सुना चाह सरस्वती चंद्र का ये गीत मुकेश की आवाज में। गीत है इंदिवर का, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोडा ने, अर्चना गोडा ने, प्रणय प्रसिद्धि, हीरामन शेंडे और इनके परिवार के सभी लोग। आप हैं गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, टैनी पवार, मनीष पवार, दिनेश चौहान रामदेवरा से, बाबू राम जयपाल डांगरी से, खुदाबख्श बावड़ी से, मौलागढ़ नई बस्ती भोजीपुरा जिला बरेली से तरुण मंसारी, तरन अंसारी, भाई अजहरुद्दीन, मोहम्मद हसन अंसारी और इनके परिवार के सभी लोग। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना लदावली जिला मुरादाबाद से। आप हैं हमारे श्रोता, ये कमेंट हमारे पास आया है। कुष्टा बुजुर्ग अमरावती महाराज से प्रवीण हगोने, योगिता, मिस प्रियाली, पार्थ और इनके परिवार के सभी लोग। शनि बाजार कस्बा गुहती से प्रभाकर गुप्ता, अवधेश गुप्ता, सचिन गुप्ता, देव गुप्ता, प्रियल गुप्ता, कायरव गुप्ता और इनके परिवार के लोग। आप हैं नेहरू चौक पैठड़ से सुरेश यादव, अनिता, आरती, पूजा, प्रसाद, सोनल, बेबीसिया और जालना से सोमनाथ यादव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन यादव, एकनाथ यादव, संगीता यादव। कस्बा गुहती से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार गुप्ता, पंकज बजाज, प्रिंस कुमार, प्रशांत गुप्ता, कार्तिक गुप्ता, निर्भय गुप्ता और इनके परिवार के लोग। आप हैं हमारे श्रोता सफीदो सिटी हरियाणा से नानक खन्ना, चंचल खन्ना, लाडो, लवली खन्ना, रजत खन्ना, लव खन्ना, कुश खन्ना और समस्त खन्ना परिवार। परिमहल काजगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इलमा खान और इनके परिवार के लोग। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। आप हैं हमारे श्रोता नक्षत्रपाल यादव, आयुष यादव, मयंक यादव, शुभी यादव, अंशुभी यादव, कुरिया, सुवारपुर हरदोई उत्तर प्रदेश से। मुंडा टोला छत्तीसगढ़ से आप हैं डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामेश नेताम, माहिर नेताम। आप हैं ग्राम लसूडिया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से। गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी और गांव हीरा वाली फजलिका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा। आप हैं हमारे श्रोता नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। ये कमेंट हमारे पास आया है ग्राम बन बघेरा जिला राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि, रोशनी और बेबी ख्याति सारवा। ग्राम उरेटा लोहारा जिला बालोस से देवशंकर तामुरिया, प्रभा देवी तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली पूजा, अलकबीर तामुरिया। आप हैं चंडीगढ़ से सतीश अनिजा, बिमला अनिजा और इनके परिवार के सभी लोग। माँ बम्लेश्वरी रेडियो श्रोता संघ सांकरा, राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार, रुद्रांश प्रताप, नेहा देवी, देवेंद्र प्रताप और इनके परिवार के सभी लोग। साथ में हैं जूनबानी स्मृति नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुरीत रमेश साहू, तारा विद्या साहू, जितेंद्र किशन, सुनीता, नीलकंठ, चंद्रहंस, हिरेंद्र, संजीवन और त्रिलोक साहू। आप हैं पंचकुला सेक्टर 9 से आशुचुग, आश्वनी चुग, गोविंद, टोनी, लब्धिमान और राधे भावेक डिंगरा। 5 MD पत्रोड़ा अनूपगढ़ राजस्थान से मंगल जनागल, श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु और सुनील जनागल। ये कमेंट हमारे पास आया है कोल सिटी बरकाकाना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निपिजानी मोहम्मद, अफजाल, अफजल मलिक। ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा।

प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा, रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना हर्षित खुशी गोस्वामी, आप हैं रामचंद्र गुप्ता, शोभा गुप्ता और इनके परिवार के सभी लोग। ये कमेंट हमारे पास आया है सनावत से शेख मूसा, मोहसिन अशोक वर्मा, राजकुमार बोड़ाना, आप हैं ग्राम चांदुर विश्वा जिला बुलठाणा महाराष्ट्र से, किशोर वानखेड़े, उषा विशाल ग्राम राजूर तहसील मोताला महाराष्ट्र से, राज गवई, राजवीर गवई और इनके परिवारीजन, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरविंदर सिंह चावला, बनी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, बेबी वैदेही जोशी, बेबी हंसिका जोशी, अंकिता जोशी, लक्ष्मी तुर्ब, जगदलपुर बस्तर से पूनम नायडू, खंडवा मध्य प्रदेश से अब्दुल गफ्फार डाबर जी, छत्तीसगढ़ कोटवा साजा से राम स्वरूप गुप्ता, विवेक गुप्ता, एच डी गुप्ता और इनके परिवारीजन, ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, अल्ताफ हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई और आशिक हुसैन, आप हैं प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा मध्य प्रदेश से, आनंद जोशी, तनुजा जोशी, दुर्वी जोशी, फाल्गुनी जोशी, बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, राम निवास अग्रवाल, धनंजय, पीवी कुलथे, बाबूदीन मेरठ कैंट से आपने ये कमेंट किया है, चनोरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से बनबारी लाल कुशवाहा, मंजुलता कुशवाहा, राम और श्याम, रवि आर्यन, रंजीत कुशवाहा, रामानंद कुशवाहा और साथी। तो आइए सुनते हैं ये गीत सरस्वती चंद्र फिल्म से, आवाज है मुकेश की।

गढ़ी कोटा जिला पंचकुला हरियाणा से सराजुद्दीन अंसारी साहब, नसीबन बेगम, अगरम अंसारी, शानिया अंसारी, मोहम्मद रियाज, मुशाहिद हुसैन, अक्सा अंसारी, आयशा अंसारी, उमर अंसारी, समीना अंसारी और अंसारी परिवार के सभी लोग। आप हैं मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता कौर, गांव नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा, राहुल शर्मा और

इनके परिवारीजन। जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह, अंकिता सिंह, संकल्प, कृषभ सिंह, प्यारी गुड़िया, बेदा सिंह। आप हैं हमारे श्रोता विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी बारासा, शगुन बारासा, और इन्होंने अपना एड्रेस नहीं लिखा। आप हैं हमारे श्रोता कोटबा, नारायणपुर, बाबापट्टी, बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा जिला, गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, जय जिनेन्द्र, श्रोता संघ परभड़ी महाराज से रूपेश संघई, महेश संघई, प्रगेश संघई, प्रतीश संघई और पूरा संघई परिवार। आप हैं अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबिया और साथ में अनस और रेहान। जमनिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल। गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल। आप हैं हमारे श्रोता आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर, उमरखेड़ महाराज से अभिजीत गुहाड़कर राही, श्रीमती सरिता गुहाड़कर, प्रणेता सिद्धांत गुहाड़कर, अर्जुन गुहाड़कर, टुकटुक और इनके परिवार के सभी लोग। बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र मखीजा, काफिरवाई, श्रीमती सविता मखीजा, बेबी स्वाति मखीजा, माही पूजा, शरद कुमार, कीरत राय, वादवानी, प्रदीप कुमार, पूरा मखीजा परिवार। बांडीवाला फजलिका पंजाब से ओम बगाड़िया, क्रियांश बगाड़िया, योगेश बगाड़िया, रजत और बेबी करीमा बगाड़िया। आप हैं किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहनदास, आशा देवी और इनके सभी परिवारीजन। उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से रेडियो। आप हैं हमारे श्रोता पुरानी भिलाई 3 मधुमनगर चरोदा छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी बेगम, हमीदुन सिद्दीकी, जीशानवाज सिद्दीकी, शाहनवाज अहमद सिद्दीकी और सिद्दीकी परिवार के सभी लोग। और ये कमेंट हमारे पास आया है, खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुकू भाविक सिक्का और इनके परिवारीजन। जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमा राज, दिव्य भारती, बेताब रेडियो लिसनर क्लब बिहार से वसीम अक्रम और गुड़िया खातून। आप हैं MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर से तस्नीम कौसर, इशिता साहनी, प्रियंका मोदी, शनाया इब्राहिम, इब्राहिमी बरकाना, झारखंड से नाजनीन तबस्सुम अफजल इब्राहिम और मोहम्मद इफ्तिखार इब्राहिमी, रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। आप हैं हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक, मीका बिरक, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से। आप हैं हमारे श्रोता मुतला महाराज से विजय सुरलकर, रातन माला सुरलकर, आरती सुरलकर, कटरचंद का पुराना शहर बरेली से जमुना प्रसाद मौर्य, किरण मौर्य, दृष्टि मौर्य, मानवी मौर्य, बोरखेड़ा पीतरामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मैंक मूड़त, चेतन नहाटा और इनके परिवार के सभी लोग। सहारनपुर से राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव, अभिषेक नामदेव, हर्षित नामदेव। आप हैं दुर्राबांदा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू, युवराज साहू। और ये कमेंट हमारे पास आया है शेरवानी स्कूल का इंजन द्वारा, उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ अनवर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी, आड़ार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश, दीपेश वर्मा, गांव मऊ शर्की जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश से तेज बहादुर यादव, ममता यादव, बच्चे रोनित यादव और बेबी बानिका। आप हैं सदर बाजार कोरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा, राजपरेश मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकर, पिंकी स्वर्णकर, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकर। आप हैं मोहम्मद रफीक पवार ताज मंजिल लकड़ बाजार खंडवा से, बेनजीर कौसर, मोहम्मद शाकिब पवार, अलमास बानो पवार, मोइन छोटू पवार, शंकर लाल गगराडे, बनीता गगराडे, मोहम्मद हसनैन पवार। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, आसमा खातून अंसारी, डुमराव बिहार से डब्ल्यू अंसारी, सोनम अदीबा। आप हैं ग्राम पंचायत बाकरगंज तहसील फरीदपुर पानी की टंकी के पास से सुनील बाबू, शिवम सिंह, अभयमीत, भगवान देव, स्वाति सिंह, तानिया गौतम और इनके सभी मित्रगण। चमनपुर उदयपुर से नजीब खान, सबिया खानम, जब्बार मोहम्मद, अशरफ खान, रईसा, मंजू निम्मी। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण

साहू, चंपा साहू, आप हैं मजनू का टीला, दिल्ली से कमल बालूजा, बंधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक, भटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग, लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू और इनके परिवार के सभी लोग, आप हैं ग्राम सेवड़ी, जिला छतरपुर, बारेलाल प्रजापति, धनीराम, नरेश, कल्लू, रविंदर एवं बिंद्रावंत प्रजापति, गुरमीत सिंह मीता साउथ दिल्ली से, रश्मि झरना, भरत कुमार राजकोट गुजरात से, आप हैं हमारे श्रोता, अकोट से विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे, शिवम, विजय शुभम बेंडे, पवन जरिए, के संजीव डाबे राव और इनके परिवार के लोग। आइए सुनते हैं जानकी कसम फिल्म का ये गीत, कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में गीत है, समीर का संगीत, नदीम शर्मा का।

गांव कल मंडी खुर्द जिला झालावाड़ राजस्थान से अनूप सिंह नथावत और समस्त परिवार, आपने सुनने चाहा है फिल्म अनाड़ी का ये गीत उदित नारायण साधना सरगम की आवाज़ में, गीत समीर का, संगीत आनंद मिलित का, और इसी गीत को पसंद किया है संबलपुर काकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और इनके परिवार के सभी लोगों ने। छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से आप हैं राजेश सैन और इनके परिवारजन, आप हैं शमशुल कुमार राही, शाहीन फातिमा और अन्नू गंजुंडवारा से, महारा दरवाज़ा एटा से नवी हसन अब्बासी, नवैद हसन अब्बासी, शहबाज अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशव अब्बासी और रसीद वारसी, आप हैं हमारे श्रोता सप्तरंग श्रोता परिवार कुमार गली श्रीरामपुर से, अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहड़ी दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले, पुनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने, विशाखा सोनवने, ब्रह्मगांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश सन्नी भावसार और इनके परिवार के सभी लोग, पटेली रोड गंजुंडवारा से आमिर हुसैन, बेगम तैयबा शेख, फौजिया शेख, अहिल हुसैन, अरहान हुसैन और परिवार के लोग, आप हैं मछली गोदाम कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह और इनके परिवार के लोग, दरबार कॉलोनी सनावत से किशोर कुमार सामले, रेखा सामले, हिमांशु, अनुराग, सुलोचना, चारूबी और प्रणव सामले, आप हैं हमारे श्रोता दत्ता गोंड के आष्टी जालना महाराष्ट्र से, कोरिया से ये कमेंट हमारे पास आया है डोनट पावो का, आप हैं हमारे श्रोता कोपरगांव से सुरेश मलोदे, वाशा मलोदे, आप हैं बड़ी गवी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार मालवी दर्द, सरिता मालवी, नई बस्ती गंजुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी, मोहम्मद कलीम अंसारी, सिद्धार्थनगर दरियापुर बामली से गजानन एले, नवदीप येले, विश्वदीप और कंचन येले, तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम रविया शेख, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा और इनके परिवारजन, आप हैं छत्तीसगढ़ से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हेयांश कुमार चंदन, मुबारकपुर उचितज्ञ आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा, वकार हैदर, हसीना दिलशाद, लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से टेकराम यदु, विकास यदु, हेमलता यदु, गीतेश्वरी यदु, आप हैं गांव जाखोद से शंभुदयाल खटक, बिमला देवी, योगेश कुमार, दीपक कुमार, पूजा खटक और परिवार के लोग, राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुजफ्फरपुर बिहार से, साथ में हैं मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी, नंदनी कुमारी। तो आइए सुनते हैं अनाड़ी फिल्म का ये गीत उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ में।

श्रोता 100.4 एफएम पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं आपकी पसंद। अगली पसंद के लिए ये कमेंट हमारे पास आया है जिला नांदेड़ यातला महाराज से। शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अरड़प जायसवाल, राखी जायसवाल, तृप्ति जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल, आपने सुना चाहे फिल्म चरस का ये गीत। आवाज़ है लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी की, गीता आनंद बख्शी का संगीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का मध्य प्रदेश, छिंदवाड़ा बिरडी से नाना जी लामसे, मीना लामसे, तेजस लामसे, जय लामसे, हर्षिता लामसे और लामसे परिवार के सभी लोग, सिवहारा बिजनौरी यूपी से आसिफ चौधरी, अरफात अदीब और कादिर चौधरी, आप हैं सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से, विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी पिलोमावा, डॉक्टर ईशानी, आप हैं हमारे श्रोता। ये कमेंट हमारे पास आया फरुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा यूपी से। सुरेश चौरसिया, श्रीमती सरोज चौरसिया, सुबह चौरसिया, सलोनी संजू, लल्ला चौरसिया, पूजा चौरसिया, पिंकी चौरसिया, बाबू शिवा और शिवानी चौरसिया, आप हैं भोला कॉलोनी धरोंडा जिला करनाल हरियाणा से। विजेंद्र कुमार जयजान, कांति रानी, गुंजन साहिल बाड़ी जयजान और इनके परिवार के सभी लोग, सैयद मजरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया आफिया, इब्राहिम, सद्दाम अदीब, कुमार हेड़ा सहारनपुर से, आप हैं ग्राम तंगौरी जिला SRS नगर मोहाली पंजाब से। गुरप्रीत सिंह तंगौरी, जसवीर कौर, महिक प्रीत कौर, सहजप्रीत कौर और इनके परिवार के सभी लोग, आप हैं हमारे श्रोता। राजकोट से जयमिन कुमार जैन, हेतल जैन, कृष्णा जैन, राकेश जैन, आप हैं। वर्ली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहां, अजहर खान, अजीम खान और सरलाही सोकनाहा नेपाल से अरुण कुमार शर्मा, रेणु देवी शर्मा, राहुल कुमार शर्मा, वंदना कुमारी शर्मा, प्रियंका कुमारी शर्मा और सभी साथी। भोजपुर तका सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जावेद, राहत अली, जाकिर हुसैन और वकील अहमद, अब हैं हमारे श्रोता। बराडी देशमुख महाराज से राजेश खोबरखेड़े, शिवसागर इंदिराबाई खोबरखेड़े, दीपाली सुनैना, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो, बिलिस डिकेस्ट्रो और परिवारीजन। ग्राम पजेनिया जिला जलौन से सतेंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक और चंसौलिया परिवार के सभी लोग। तो आइए सुनते हैं चरस फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा। आपने सुना चाहे फिल्म दोस्ताना का ये गीत किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, गीतानंद बख्शी का और संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फुलई नगर बीड महाराष्ट्र से बाला प्रसाद जी करवा, गीतांजलि करवा, आकाश करवा और आकांक्षा करवा। आप हैं सर चकरभाटा कैंप से डी आर नारवानी, रवि चांदनी, खुशी नारवानी और इनके परिवार के सभी लोग। विराटनगर नेपाल से अरुण चंद्र शर्मा, रेणुका शर्मा और इनके साथी। आप हैं दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, परस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। आप हैं नई मस्जिद करेली से इंतजार भाई अंसारी, बेटी हिफ्जा नूरी, प्यारी हिना, नत्थू चाचा, जाहिर अंसारी, नन्हे ठेकेदार और इनके परिवार के सभी सदस्य। अब हैं ग्राम धरदेई सरगाम छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार पटवा, कुमारी क्रिस्टी पटवा और इनके परिवारीजन। ये कमेंट हमारे पास आया है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहापकर, निर्मला नहापकर, विशाल नहापकर, सोपान तायडे। आप हैं हमारे श्रोता जनकपुरी न्यू दिल्ली से।

प्रीतम सालूजा, संगीता सालूजा, प्रदीप सालूजा और इनके परिवारिक जन, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, बीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेगा मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु, रिदहन खुराना, मुगलपुरा बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी, मदर मस्जिद उदयपुर जिला बरेली, उत्तर प्रदेश से नाजिम अली वसीम, अकरम अहमद अली, मुनाजिर हुसैन, गुड्डू अली, मोहम्मद यूसुफ, शबनम जहां, अदीबा फातिमा, आकिब अली, हाशिम अली, बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान, उत्कृष्ट चौहान डुगू, आप हैं अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर, मयंक गौहर, तन्वी गौहर, जयपाल यादव, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश, भटूनी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से ईश्वरलाल मेहर, सुमित्रा मेहर, रेहांश मेहर, सृष्टि मेहर और मेहर परिवार के सभी लोग, आप हैं कवर कॉलोनी बड़वाहा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, श्रीमती मीना श्रीमाली, आप हैं नंदनी माइन से हरिकांत राम, सरला राम, रोशनी आयुषी, कस्बा केलोड़िया नवाबगंज जिला बरेली उत्तर प्रदेश से राजेंद्र गंगवार, प्रेमपाल गंगवार, धर्मवीर गंगवार, अनुज गंगवार, अनमोल, कमलेश, तुलाराम, अंकुश मौर्य, राजू, उल्फत शर्मा, चंद्रपाल, वेदपाल गंगवार, बबलू पवार, बबलू गंगवार, संजीव गंगवार और इनके परिवार के सभी लोग, आप हैं शुभ दुपहिया रेडियो मित्र से कैम छो, और आप हैं ओखला संगम बिहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता, सुंदरम गुप्ता, राजनगर गांधी चौक मधुबनी से अरुण गुप्ता, मौसम गुप्ता, शिवम गुप्ता, और एकता कॉलोनी रोहतक से आप हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, मंसूरी क्लब ग्राम एचोरा, तहसील मिलक जिला रामपुर से सखावत हुसैन मंसूरी, तालिब हुसैन मंसूरी, मोहम्मद फैज, मोहम्मद अर्श, तौसीफ मंसूरी, लईक मंसूरी, मोहम्मद नबी, राहुल रस्तोगी और इनके सभी परिवारजन और मित्रगण, ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदयभान पाल, राज्य हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और इनके परिवारजन, वैश्लव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद अल्तमश खत्री, मोहम्मद शादाब खत्री, आप हैं फजलिका पंजाब से खेड़ा परिवार, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, डाडी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, ट्वानसी खेड़ा और कटर चांद खां पुराना शहर बरेली, मौर्य मंदिर से रतन माला मौर्य, मुकेश मौर्य, प्रिंस मौर्य, प्रियांशी मौर्य, पुष्पा मौर्य, गौरव मौर्य, चंद्रप्रकाश मौर्य, पश्चिमपुरी दिल्ली से उत्तम सिंह जुनेजा, भूपेंद्र जुनेजा, सीमा जुनेजा, अनमोल जुनेजा, साहिल साहिबा गुप्ता, 16 नंबर वार्ड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से रेखा, पूजा रघुवंशी, बबीता नंदिनी रघुवंशी, शोभा भूमिका रघुवंशी, कुमारी वंदना मराठा, ललिता नारायण भाऊ खटसे और इनके परिवार के सभी लोग, पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से सईद भाई, सुफियान अनस, आयजा अल्फिया, सदफ सरोज चौक, कमरुल्ला भाई, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आफिया और इनके साथ में हैं मुश्तबा खान, निवासा ग्राम खुपटी से बंडू लोहार, पोपटघट चंद्रकला पोपटघट। तो आइए सुनते हैं ये गीत दोस्ताना फिल्म से।

भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान, पूजा परिहार, आपने सुनना चाहा है काला बाजार का ये गीत मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज़ में। और इसी गीत को सुनने के लिए ये कमेंट किया है हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली, सोनम, आशीष और इनके परिवार के सभी लोग। आप हैं जावेद इनायत और यूसुफ इनायत इंग्लैंड से, बड़े खेड़ा पंजाब से टिम्पू, मिंटू टॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा और इनके परिवारीजन। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मधुरकर, सदानंद कुमार, गौरव मधुरकर और परिवारीजन, मोहम्मद हफिजुर रहमान, हबीब मलिक, खलील मलिक, अली रहमान, आप हैं पंजाब से। और ये कमेंट हमारे पास आया है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, रामचंद्र गुप्ता, शोभा गुप्ता, धनबाद झारखंड से, आप हैं हमारे श्रोता। रतलाम मध्य प्रदेश से विक्रम भाई मालवीय, रचना मालवीय, कमलाबाई, बंदेवी, आकाश महेश्वरी, विनायक और समस्त मालवीय परिवार। और बुलंदशहर से उमेश कुमार गौड़, रानी गौड़, गनगोला दत्तगंज बदायूं से इसरत खान, शायरा बेगम, रऊफ खान, सावरीन बेगम, शाहबाज खान, सैफ खान, ईशान खान और परिवार के लोग। पुराना शहर बरेली कटर चंद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेदराम मौर्य, कैलाश मौर्य, सुनील मौर्य, खुशबू मौर्य, आरोही मौर्य, स्वाति मौर्य और इनके परिवार के सभी लोग। तो आइए सुनते हैं फिल्म काला बाजार का ये गीत मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज़ में।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद आकाशवाणी का। ये बरेली केंद्र है 104 FM पर। और श्रोताओं आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सबरंग। तो सबरंग में आपके लिए ये पहला गीत फाल्गुनी पाठक की आवाज़ में।

0: विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे सबरंग, आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 104.4 FM पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे FM रेनबो आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
2: मैम जी भी आज पधारी हैं और उनके साथ आप लोगों का कनेक्शन, यानी कि आप हमें मेल कर रहे हैं और किसी कारण से आज फोन लाइन कनेक्ट नहीं हो पा रही, लेकिन आप कितने ज्यादा मेल हैं, आपकी सारी बातें मैम तक पहुंच रही हैं। और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं तो टाइगर खान जी ने मेल कर

0: दिया है डिस्ट्रिक्ट हरदोई से, और लिखती हैं कि नरगिस संडीला से इन्होंने मेल किया है और लिख रही हैं गुड मॉर्निंग दोनों को, आपको मैम स्पेशली गुड मॉर्निंग बोला है, और जो प्रोग्राम तो सब आरजेस अच्छा करते हैं और सारे प्रोग्राम भी अच्छे हैं, लेकिन तरन्नुम मैम के सॉन्ग कभी कभी अच्छे होते हैं और अच्छे के साथ साथ कभी कभी उनके सॉन्ग हमें बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं लेकिन एक आध नहीं भी अच्छे लगते हैं, तो ऐसा तो होता है, देखिए गानों का गुच्छा है।
1: जी बिल्कुल, और सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखा जाता है, हो सकता है आपको जो न पसंद आ रहा किसी और को पसंद आ रहा है, हमारे तो श्रोता इतने ज्यादा तादाद में है कि आपको सबका ध्यान रखना होता है, और कभी कभी कोई गाना हो सकता है आपको ना अच्छा लगा हो, लेकिन उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है किसी ने फरमाइश की हो तो वो गाना उन्होंने बजाया हो, है ना। और हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं क्योंकि ये आकाशवाणी का चैनल है तो हम अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हैं और अपनी गरिमा का ध्यान रखते हैं अपने कार्यक्रमों में, और कोशिश करते हैं कि कोई भी ऐसा गाना ना जाए जिससे कुछ गलत संदेश लोगों तक पहुंचे, है ना। और साथ ही साथ आज आपने सुबह रत्ना जी बहुत सारे दिनों के बारे में बताया था, जैसे वर्ल्ड ब्रेन डे और फ्लैग डे आज है, तो अगर हम फ्लैग डे की बात करें तो हमें अपने देश के प्रति भी बहुत कर्तव्य अपने पालन करने चाहिए, जितने भी हमारे कर्तव्य नागरिक होने के नाते
0: जी, जी।
1: और इसके लिए हम बार बार अपने कार्यक्रमों के माध्यम से आप तो बहुत सारी बातें पहुंचाते हैं कि हमें क्या और कैसे करना चाहिए ताकि हम अपने आसपास के लोगों के साथ एक अच्छे सद्भावपूर्ण वातावरण में रह सकें, और साथ ही साथ हम जो काम कर रहे हैं उसको पूरी निष्ठा से करें,
0: लेकिन काम में अगर हमारी ईमानदारी होती है तो काम अपने आप निखर के आता है, और साथ में काम के साथ साथ हमारी जो काम की खुशबू है वो भी लोगों तक पहुंचती है।
1: बिल्कुल।
0: और अब हम आगे बढ़ते हैं, बाबू अंसारी देवकली अहमदपुर बाजार बाराबंकी से इन्होंने मेल किया है, और आदरणीय सुमोना मैम जी नमस्कार।
1: नमस्कार आपको भी।
0: और लिखते हैं एफएम रेनबो के सारे कार्यक्रम बहुत लाजवाब लगते हैं और मैं अपनी दुकान पर सुनता रहता हूँ, सुबह 10 से रात 9 बजे तक के कार्यक्रम को मैं आनंद लेता हूँ, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हेलो एफएम का टाइम थोड़ा सा बदल दिया जाए या फिर बढ़ा दिया जाए, क्योंकि ये सिर्फ 40 मिनट का कार्यक्रम हो पाता है तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती, और बढ़ जाए तो उनकी रिक्वेस्ट है कि और अच्छा रहेगा हेलो एफएम का।
1: हमने आपके सुझाव नोट कर लिए हैं, कोशिश होगी, हालांकि कुछ हमें नियम भी इसमें फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन देखेंगे कि किस तरह से आपकी जो सुझाव है उस पर काम किया जा सके, और आप इसी तरह से कार्यक्रम जरूर सुनते रहिए, और हमारा जो कार्यक्रम का पूरा हमारा जो चैनल है, चाहे वो आकाशवाणी लखनऊ हो, चाहे विविध भारती हो और या एफएम रेनबो हो, तीनों चैनल का यही उद्देश्य है कि आपका मनोरंजन भी हो और आप तक जानकारी भी पहुंचे। और रत्ना जी, जैसा कि आप अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जुड़ते हैं, चाहे अवधि भाषा के लोगों से जुड़े हैं या और भी लोगों से जुड़ते हैं, तो इसीलिए हमारे पास शायद इतने दूर दूर से मैसेजेस भी आते हैं कि लोग पसंद कर रहे हैं हमारे कार्यक्रम को, और इसी तरह आप अपने मेल हमको भेजते रहिए, आपको बहुत बहुत आभार।
0: देखा आपने श्रोताओं, सुना आपने कि कितने प्यार से और कितनी मोहब्बत से आप तक हमारी आकाशवाणी कार्यक्रम प्रमुख सुमोना मैम जी जुड़ी हैं, और आप लोगों के बहुत ही प्यार के लिए आप लोगों की आभारी हैं, और बहुत ही प्यार से आप लोगों की बात सब नोट करती जा रही हूं कि अब जो जो आप लोग की रिक्वेस्ट है, जो आपका फीडबैक है, उस पर कुछ विचार करने के लिए। और अब वकील अहमद जी का मेल हम शामिल करने जा रहे हैं, और लिखते हैं कि आप लोगों की आवाज़ अच्छी लगती है, साथ में आपको नमस्कार भेजा है उन्होंने मैम, और लिखा है कि पेड़ लगाएं और ईंटों का घेरा बनाएं या फिर लोहे का जाल लगाएं। राष्ट्रीय आम दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और मैम आप सुमना मैम आप ऐसा कीजिए कि ईमेल एक बार पढ़ने के बाद दोबारा आए तो पता चल जाए कि दोबारा ना पढ़ा जाए, लोग एक ही ईमेल करते हैं उन लोगों को, फिर जो नहीं पढ़े जाते हैं मेल वो छिप जाते हैं, और इन्होंने ऐसी रिक्वेस्ट की है कि एक बार एक मेल पढ़ा जाए, उसका मेल दोबारा शामिल ना किया जाए। हथूरी जिला सीतापुर से वकील अहमद जी की ये रिक्वेस्ट है।
1: बिल्कुल सही बात है, और जैसे आपने कहा कि मेल्स अगर हम लगातार भेजते हैं तो दूसरे मेल्स हमें आगे नहीं मिल
0: मिस हो जाते हैं।
1: हाँ। और चूंकि हम कार्यक्रम के साथ हमारे आरजेस गाने को भी प्ले करना होता है, आपकी आपसे बात भी करनी होती है, तो बहुत बार ये मैसेजेस मिस हो सकते हैं, तो आपकी तरफ से ही मैं श्रोताओं से ये कहना चाहूंगी, अनुरोध करना चाहूंगी कि अगर आपने एक बार मेल किया है तो कोई खास बात अगर ना लिखना हो तो आप दोबारा मेल उस दिन ना करें तो बेहतर हो, ताकि और लोगों के मेल हम तक जरूर पहुंच जाए, और अगर आप कुछ खास बात बताना चाहते उसके लिए हमेशा स्वागत है आपके मेल का।
0: देखिए बहुत ही अच्छा सा आपको रास्ता बता दिया है, और ये रास्ता हमको भी फॉलो करना है, और ये रहा इसी पे आप लोगों को भी चलना है कि आप बार बार मेल ना करें, और एक बार अगर आपने मेल कर दिया, मेल शामिल हो गया, तो उसको हम दोबारा आप अगले लोगों को मौका दें। इसी तरह से फ़ोन के लिए भी आप थोड़ा सा समझदारी से काम लें, जैसे कि एक श्रोता ने हमारे ये संदेश दिया, ये मैसेज दिया। और अब एक वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, उसके बाद फिर आपसे

वक्त हो चला है 11:40, प्रोग्राम चल रहा है संदेश आपके गीत हमारे 100.7 FM रेनबो पर। और आज हमारे लिए गर्व की बात है कि एक आकाशवाणी कार्यक्रम प्रमुख सुमोना जी हमारे स्टूडियो में आई हैं और

0: आप लोगों से रूबरू हो रही हैं, आप लोगों के जितने भी मोहब्बत भरे मेल आ रहे हैं ना, वो सब शामिल करें और सब आप लोगों से जुड़कर वो आपके सुझाव को भी एक्सेप्ट कर रही हैं और आपके जवाबों को भी दे रही हैं। तो अशोक कुमार जी का मेल आ गया, लिखते हैं नमस्कार जी, अशोक राज जी।
1: जी जी नमस्कार अशोक जी।
0: रायपुर ओदारा मितौली लखीमपुर खीरी से इन्होंने मेल किया है और लिख रहे हैं कि सभी प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, नियमित सुनता हूँ और सभी आरजी अच्छे हैं, रेडियो पर प्रोग्राम बराबर सुनता रहता हूँ।
1: तो आपने हमें मेल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और इसी तरह कार्यक्रम आप सुनिए और सुनाइए भी, ताकि हमारे चैनल को और पॉपुलर हो सके, वो दूर दूर तक जा सके। और देखिए, जब आपके मेल इतने दूर से आते हैं हम तक
0: जी,
1: तो हमें लगता है कि वाकई में हम कुछ अपने उद्देश्य में सफल हो रहे हैं
0: जी। तो इसी के साथ पहली बार एक मेल आया हमारे बीच में, और
1: किसका आया है रत्ता?
0: ये लिखा है अबनुसिस, इनका नाम फिलहाल ये दिख रहा है, और वैसे उनका नाम है राजकुमार मिश्र जी, और गोमती नगर एक्सटेंशन लखनऊ से इन्होंने मेल किया है। और आदरणीय महोदया, सादर नमस्कार, आकाशवाणी लखनऊ के एफएम रेनबो 100.7 का नियमित श्रोता हूँ। आपके चैनल के सभी आरजे बहुत ही अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं और उनकी प्रस्तुति श्रोताओं को बांधे रखती है।
1: और आपने इसको सराहा है, इसके लिए आपका बहुत आभार। और कार्यक्रम, जब आप कार्यक्रम में अपनी बात बताते हैं, हमारे आरजेस को भी खुशी होती है। देखिए रत्ना बहुत खिल गई है और साथ में हमारे साथ वैसे शिल्पी भी हैं, तो हम सभी के लिए कहेंगे कि उनकी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। और देखिए, बस मन की भी बात पढ़ लेती हैं मैम, और आपकी बात तो सुनी रही है। और इसी में इन्होंने आगे लिखा है राजकुमार मिश्र जी ने, विशेष रूप से मुझे आरजे अंजू शुक्ला जी की प्रस्तुति और सभी कार्यक्रम अत्यंत पसंद आते हैं। मेरा मानना है कि वे ऐसी आरजे हैं जिन्हें आप किसी भी कार्यक्रम में जिम्मेदारी दें, अपनी सहज आत्मीय और जीवंत शैली से उसमें नई ऊर्जा भर देती हैं। चाहे गुड मॉर्निंग लखनऊ, रजनीगंधा हो, विशेष प्रस्तुति होती है, उनकी आवाज और प्रस्तुति श्रोताओं को कार्यक्रम से जोड़े रखती है। और सुगंध माटी की कार्यक्रम भी उनके आपके चैनल से बहुत लोकप्रिय और विशिष्ट कार्यक्रम लगता है। अवधि भाषा, लोक संस्कृति और ग्रामीण जीवन की खुशबू को जिस आत्मीयता और रोचक अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है, वो वास्तव में सराहनीय है। साथ ही एफएम रेनबो लखनऊ के अन्य सभी आरजे भी बेहतरीन कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, और पूरे चैनल से हमें एक अपनापन और पारिवारिक माहौल महसूस होता है, जो आज के समय में बहुत कम देखने को मिलता है। पूरी टीम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, आप सभी इस तरह से उत्कृष्ट कार्यक्रम प्रस्तुत करते रहें। और राजकुमार मिश्र जी, गोमती नगर लखनऊ से इन्होंने लिखा है।
1: इन्होंने काफी तारीफ कर दी है रत्ना, और बाकी में आपने इतनी अच्छे शब्दों में बयान किया है अपनी भावनाओं को, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। और हमारी जो कोशिश होती है यही होती है कि हम आपको एक मित्र की तरह मिले, हमारे चैनल के जो आरजेज हैं उनकी आवाजें आपको सुकून दें, आपको प्यार दे, और आपका जो मनोरंजन है वो भी हो, और कभी कभी उत्सव का भी माहौल रहता है, तो ये सब आप महसूस करते हैं इसके लिए। और आपने लिख के दिया, बहुत बहुत आभार।
0: बहुत अच्छे से इन्होंने मेल किया, और परिवार जैसी भावना इनको आती है एफएम रेनबो चैनल से। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी। और आगे लिखते हैं, ये संतोष चौरसिया जी का मेल आ गया, ये लिखते हैं राम राम जी, गुरुग्राम हरियाणा से प्रोग्राम न्यूज ऑन AIR पर नहीं आ पा रहा है और मैं परेशान हो रहा हूँ, 100.7 नहीं सुन पा रहा हूँ, प्लीज ठीक तो करा दीजिए। संतोष चौरसिया जी की रिक्वेस्ट
1: मैं आपसे फिर कहना चाहूंगी कि आप वेव्स OTT को अगर डाउनलोड कर लें, तो उसमें आपको सुनाई दे, जितने भी चैनल से आकाशवाणी के सारे सुनाई देंगे, तो उसमें भी आप सुन सकते हैं। कभी कभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो न्यूज ऑन एयर ऐप कहीं कहीं पर नहीं सुनाई दे रहा है, जैसा कि हम लोग तक बात पहुंच रही है। तो आप वेव्स OTT, जो WAVES वेव्स OTT को डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पे, अगर आप सुन रहे हैं तो, या जिसमें भी आप सुनना चाहते हैं। और रेडियो अगर है आपके पास तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो रत्ना, हम फिर इनका पुनः धन्यवाद देना चाहेंगे, और बिल्कुल निराश मत होइए, आप तक हमारे कार्यक्रम जरूर पहुंचेंगे इस ऐप के माध्यम से
0: जी। और अब MK राज जी का लखीमपुर जी, मुनेश कुमार राज जी का गांव भानपुर हरौआ जिला लखीमपुर खीरी से मेल आ गया है। नमस्कार भेजा आपको आदरणीय मैम को, और आपको नमस्कार भेजा। इसके साथ लिखते हैं संदेश हमारा गीत हमारे कार्यक्रम में आपका मैं मेल कर रहा हूं, और पंचायत भानपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय भानपुर में बच्चों की संख्या 150 के आसपास है। प्रिंसिपल वर्मा जी के रिटायरमेंट के होने के बाद कोई भी टीचर नियमित रूप से बच्चों को पढ़ाने नहीं आ पा रहा है, तो इन्होंने कुछ अलग से चैनल से अलग कुछ बात लिखी है, और कुछ इन्होंने शिक्षा से संबंधित बात लिखी है, तो वो आपकी बात जो है वो वहीं के
1: अच्छा, तो हाँ बिल्कुल, आप अपने यहाँ के जो डीएम होंगे या जो भी आपके यहाँ के प्रधान होंगे उनसे आप बात करिए, तो वो इसके बारे में ज़रूर कुछ उपाय निकालेंगे, क्योंकि अगर इतने सारे बच्चे पढ़ने को उत्सुक हैं तो उन तक सारी शिक्षा पहुँच

0: चाहिए और आपने अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाई है, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, हमारी आवाज़ अगर वहां तक जा रही है और लोग सुन रहे होंगे तो इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। लेकिन आप भी एक पत्र तो आप लिख ही सकते हैं प्रशासन को वहां पर, या अपने प्रधान जी को, या जो भी आपके यहाँ पे जो
1: लखीमपुर के जो भी अधिकारी
0: पार्षद होंगे या जो भी होंगे उनसे आप बात कर सकते हैं और वो आपकी समस्या का जरूर समाधान करेंगे। तो रत्ना, ये कार्यक्रम का एक प्लेटफॉर्म हो जाता है, लोगों को लगता है, उम्मीद रहती है कि हम शायद उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, शायद इसी भावना से उन्होंने लिखी है। तो आपका बहुत बहुत आभार, आपने अपना मेल हम तक पहुंचाया
1: जी। और उन्होंने जो पत्र लिखा अधिकारियों को, वो भी उन्होंने उसकी फोटो डाली इसमें कि हम लोग की सुनवाई नहीं हो पा रही, तो कार्यक्रम के जरिए आप हम लोगों के लिए शिक्षा के संबंधित कुछ करिए, तो आपकी बात उन तक पहुंच गई है।
0: बिल्कुल, और हमने आपकी बात पहुंचाने की कोशिश की है और जरूर उन्होंने सुना, अगर होगा तो जरूर कार्रवाई होगी। लेकिन फिर भी आप प्रयास करते रहिए, क्योंकि प्रयास करने वालों की कभी हार होती ही नहीं है।
1: बिल्कुल, तो इतने अच्छे नोट के साथ आपका भी उत्साह बढ़ा होगा और आप जरूर आगे प्रयास करेंगे, हमको ऐसी उम्मीद है। और अब ओमकार यादव जी का मेल आ चुका है और ये अपनी बात हम तक पहुंचा रहे हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ओमकार यादव जी ने गुड मॉर्निंग भेजा है और इसके साथ साथ आपको नमस्कार भेजा है उन्होंने।
0: और रत्ना, अभी कई लोगों की ये भी शायद शिकायत ही हम कहेंगे होती है कि कुछ लोगों की आवाज उन तक नहीं पहुंच रही, तो कुछ लोग अब चैनल में नहीं हैं या फिर कोई कारण होगा जिसकी वजह से आप तक उनकी आवाज नहीं पहुंच रही है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे जितने भी आरजेज हैं, देखिए ये कोई परमानेंट जॉब जैसा नहीं है, तो हो सकता है कभी किसी को बाहर जाना पड़ता हो या वो चैनल पे ना हो तो उनकी आवाज आप तक ना पहुंचती हो, लेकिन बाकी सारे आरजेस आपके लिए कार्यक्रम करते हैं तो उनको भी आप सुन सकते हैं और अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके मेल के लिए बहुत बहुत आभार
1: जी। तो चलिए, इन्हीं बातों को आप तक पहुंचने के साथ साथ प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे में हम आपकी सारी बातें शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही मोहब्बत से आप लोगों की सारी बातों का जवाब, आपकी सारी जितनी भी क्यूरियोसिटी है वो सब पूरी कर रही हैं हमारी आदरणीय सुमोना पांडे मैम। तो वो आगे भी इन्हीं बातों को जारी रखेंगे, उसके पहले ये बहुत ही बढ़िया सा गाना आप तक पहुँचाते हैं।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा।
3: जानो फिर मानो।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: वक्त के साथ चलते चलते आपको बता दें 11:54 हो रहे हैं, यानी कि बहुत ही कम समय बचा है प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे में। और अब हम जो बात आप तक पहुंचाने जा रहे हैं वो है हमारे नियमित श्रोता बसंत कुमार जी।
1: क्या कहते हैं बसंत जी?
0: बसंत कुमार जी का ये कहना है, उनका ये सुझाव है कि ये सभी कार्यक्रम सुनते हैं, नियमित श्रोता हैं और FM के अलावा आकाशवाणी के सभी चैनल ये सुनते हैं। इसके साथ साथ इनका सुझाव है मैम कि सुबह का कार्यक्रम सुगंध माटी की और शाम में रात में 9 बजे जो रेनबो कैफे आता है उसमें ये या इनके और साथी जो हैं वो इसको कम पसंद करते हैं। कहते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा डांस के गाने होते हैं या कुछ तड़क भड़क गाने होते हैं जो हम लोग बैठ के सुकून से सुनते हैं तो हम लोगों को लगता है कि कुछ और तब्दीली हो जाए।
1: तो बसंत जी देखिए, आपने जो बात की है तो हम हर तरह के श्रोताओं के बारे में सोचते हैं। कुछ लोगों को इस तरह के गाने भी पसंद आते हैं, लेकिन ये ज़रूर है अगर आपने कहा है तो हम इस पर ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे कि आपके पसंद के अनुसार ये कार्यक्रम हो। हालांकि सुगंध माटी की कार्यक्रम बहुत लोग पसंद करते हैं तो बहुत उसमें भी लोगों को आनंद आता है। मैं ये समझती हूँ कि बहुत सारे मैसेजेस उसमें भी आते हैं जो उन गानों को भी पसंद करते हैं, लेकिन हाँ, गाने की चॉइस में हमें ध्यान रखना होगा। और हमारे आरजेस से भी मैं ये निरंतर कहती रहती हूँ कि कुछ गाने ऐसे भी बजाएं जो हर किसी को पसंद आए ताकि चैनल चेंज करने की जरूरत ना पड़े। तो आपने ये बात कही है तो हम जरूर इस पर ध्यान रखेंगे। और रात के जहाँ तक प्रोग्राम की बात है, रेनबो कैफे, तो रेनबो कैफे में हम कोशिश करते हैं कि हर प्रांत के लोकगीत जो है आप तक पहुँचाए जाए, इसलिए उसमें विभिन्न प्रांतों के लोकगीत आप तक पहुँचाए जाते हैं।
0: और इसी तरह से मैम, जैसे आज का कार्यक्रम बुधवार के जो

0: सुगंध
1: कर्कमता
0: माटी।
1: सुगंध माटी की, उसमें भी विभिन्न प्रांत की विभिन्न भाषाएं
0: हाँ,
1: सुनाई जाती हैं
0: लेकिन
1: श्रोताओं
0: अवधि पे ज्यादा उस पे जोर रहता है,
1: जी।
0: तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अवधि को भी हम लोग यहाँ से प्रमोट करें, क्योंकि वो हमारी एक तरह से जड़ है,
1: जी
0: जहाँ से हम लोग हम
1: भाषा
0: बात कर सकते हैं कि वो हमारे बिल्कुल चेतना से जुड़ी होती है
1: जी
0: और हम पसंद करते हैं। तो जो जहाँ का होता है उसको वहाँ के लोकगीत पसंद आते हैं, और कुछ दूसरे प्रांत के लोग भी हमारे यहाँ बसते हैं तो उनकी भी फरमाइश रहती है कि कुछ उनके भी गाने सुनाए जाएँ।
1: जी
0: तो शायद हम इसीलिए सारे जो जितने भी प्रांतों के गाने हैं उसमें हम लाते हैं। और अगर कभी कोई गाना आपको ऐसा लगता है कि आपको नहीं पसंद आ रहा, तो उस गाने के बारे में आप लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, हमें स्पष्ट रहेगा कि आपको किस तरह के गाने नहीं पसंद आ रहे हैं। और बाकी पसंद सबकी होती है, इसलिए हर तरह के पसंद के गाने हम लोग बजाते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेल करने के लिए, आपका मैसेज हम तक पहुंचा है
1: जी। तो बसंत कुमार जी की बात भी, जो उनके उनके जो शंका थी या उनका जो सुझाव था, वो भी यहाँ पर सुन लिया गया है। तो कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे की बात अगर करते हैं तो बस यहीं तक ये कार्यक्रम रहेगा, चूंकि 11:56 हो गए हैं और अपना एक बहुत ही व्यस्ततम कार्यप्रणाली में से समय निकालकर आदरणीय आकाशवाणी प्रमुख आदरणीय सुमोना पांडे मैम अपने श्रोताओं से मिलने के लिए स्टूडियो FM रेनबो के स्टूडियो पधारी। आपका सभी श्रोताओं की तरफ से और खासतौर से मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शिल्पी भी आपको इशारों इशारों में बहुत बहुत शुक्रिया कह रही हैं, क्योंकि वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं, बैठी हैं और अगले कुछ घंटे शिल्पी FM रेनबो पर आपके साथ रहने वाली हैं। तो रत्ना को दीजिए इजाजत, और हम सभी मिलकर मैम का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहेंगे।
0: और रत्ना, ये मेरा भी कर्तव्य भी है और मुझे अच्छा भी लगता है श्रोताओं से मिलना, तो इसमें मैं ऐसा कुछ कर नहीं रही हूँ आउट ऑफ द वे कि इसके लिए बार बार मुझे आभार मेरा जताया जाए या मुझे धन्यवाद दिया जाए। हमारे श्रोताओं का हम जरूर आभार व्यक्त करना चाहेंगे जो हमारे साथ जुड़ते हैं, अगर कॉल्स नहीं है तो उनके मेल्स आ जाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए, और आगे शिल्पी आपके कार्यक्रम लेकर प्रस्तुत करने वाली हैं, तो सभी का हम भी स्वागत करते हैं और अपने श्रोताओं का भी स्वागत करते हैं। इसी तरह कार्यक्रम सुनते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार आज के लिए,
1: धन्यवाद मैम।

नमस्कार। दोपहर के 12 बजे अब सुनिए मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भागीदारी की। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने हिंद प्रशांत भू राजनीतिक परिदृश्य की समीक्षा की और हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने यह भी कहा कि एक स्वतंत्र और उन्मुक्त भारत आसियान की केंद्रीय भूमिका को मान्यता देने के प्रति वचनबद्ध है। बागपत में डीजीपी त्रिपुरा के शव का अंतिम संस्कार अब से कुछ देर बाद बड़ौत कस्बे के शमशान घाट पर होगा। इससे पहले उनके भाई रविराज के आवास पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। विधायक छपरौली अजय तोमर सहित सैकड़ों की संख्या में लोग और त्रिपुरा पुलिस के अधिकारी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। राज्य मंत्री असीम अरुण ने भी आवास पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। असीम अरुण ने कहा कि जांच के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा।

आज राष्ट्रीय आम दिवस है। ये दिन फलों के राजा आम और भारत की समृद्ध आम परंपरा के सम्मान में मनाया जाता है। गोवा का प्रसिद्ध मनकुराद आम अपनी खास खुशबू, मिठास और अनोखे स्वाद के लिए जाना जाता है। ये सिर्फ एक फल नहीं बल्कि गोवा की कृषि और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी है। आज राष्ट्रीय आम दिवस है। ये दिन फलों के राजा आम और भारत के समृद्ध आम परंपरा के सम्मान के रूप में मनाया जाता है। सुल्तानपुर में पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाए जा रहे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत लायंस क्लब सुल्तानपुर मिड टाउन द्वारा अटल पर्यावरण पार्क में वृहद पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चिकित्सकों, समाजसेवियों और क्लब के पदाधिकारियों ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में क्लब अध्यक्ष लायन प्रमोद पुरी, सचिव डॉ राजेंद्र कपूर, डॉ डीएस मिश्रा, डॉ आत्मजीत सिंह, चार्टर प्रेसिडेंट सरदार बलदेव सिंह सहित बड़ी संख्या में सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में रूक रूक कर बारिश का सिलसिला जारी है। लगातार हो रही बारिश से राज्य में कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। लखीमपुर खीरी के पलियाकला में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बाराबंकी में घाघरा खतरे के निशान के करीब है। उत्तराखंड में पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के कारण पीलीभीत में भी शारदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। वहीं वाराणसी में गंगा के किनारे घाटों पर सतर्कता बढ़ा दी गई और प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: वाह, कितनी लाजवाब डिशेस बनाती हो, इतनी रेसिपीज कहां से लाती हो?
1: शत्रुपा से। अरे बहू, मेरा जोड़ों का दर्द तो बिल्कुल चला गया, कहां से लाई है नुस्खा?
2: शत्रुपा से माँ जी।
3: वाह, तेरा घर तो एकदम पिक्चर परफेक्ट है, कहां से लाती हो इतने नए नए आइडियाज?
2: शत्रुपा से।
4: घर, बच्चे, शॉपिंग, किचन, गार्डन, वार्डरोब, कैसे मैनेज कर लेती हो इतना सब?
2: शत्रुपा से।
5: हमारी होम मेकर्स की कंप्लीट मैगजीन शत्रुपा, मंडे टू थर्सडे दोपहर 12 बजे ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
6: स्टे ट्यून्ड टू 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
7: हेलो, गुड आफ्टरनून। 12:04 का वक्त, शिल्पी हाजिर हो गई है आपके लिए प्रोग्राम शत्रुपा लेकर। और आज बुधवार का दिन, भाई बुधवार के दिन क्या होता है स्पेशल, सोचिए। धड़कने आपके काबू में है कि नहीं है ना? भाई आज के दिन हम खाने पीने की बातें करते हैं, क्योंकि भाई ऐसा होता ना कि स्वाद जो ऐसा होता है, किसी भी चीज़ का अच्छा स्वाद जो होता है वो आपके मनो मस्तिष्क को बिल्कुल ताज़ा कर देता है, आपका दिमाग बढ़िया कर देता है, मूड बढ़िया कर देता है, एंड आपका हर चीज़ मन लगने लगता है। बस जो टाइम उसको किसी भी चीज़ को पकाने में लगता है वो अलग बात है, लेकिन कोई बढ़िया सी चीज़ आपका खाने का मन करता है, और ख़ासतौर पर बारिश के मौसम में तो लगता है कुछ बढ़िया सा चटपटा सा खाएं। लेकिन क्या हर समय ये सब चीज़ें हमें मतलब माननी चाहिए कि हाँ भाई अगर हमारा मन कर रहा है तो हमें ऐसा खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए? मतलब अपनी हेल्थ को ओवरलुक ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। और क्या खाना चाहिए जो अच्छा भी लगे और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा हो? कुछ आज ऐसी ही बातें होंगी प्रोग्राम शत्रुपा में मेरे यानी शिल्पी के साथ। सो बस गाने इंजॉय कीजिए और बढ़िया बढ़िया बातें मेरे साथ इंजॉय कीजिए। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा।
3: जानो फिर मानो।
4: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

जैसे ही मानसून दस्तक देता है ना, तो क्या होता है कि मानसून तो बड़ा अच्छा लगता है, यानी बारिश जो होता है वो बहुत ही अच्छा मौसम होता है, बारिश का मौसम। लेकिन इस मौसम में एक थोड़ी सी दिक्कत ये भी है कि कुछ लोग बीमार भी पड़ जाते हैं, कई लोग बीमार पड़ जाते हैं। और अगर आप भी उनमें से हैं जिनको लगता है कि बारिश का मौसम फ्राइड, चटपटा, हैवी, मसालेदार खाना

खाने के लिए, तो आप भाई बिल्कुल गलत हैं। बारिश में हमारा खान पान बहुत ही बैलेंस्ड होना चाहिए। अब वो बैलेंस्ड खाना क्या होना चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे। कहने का मतलब ये है कि इस समय हमारा डाइजेशन थोड़ा वीक हो जाता है, हल्का हो जाता है, तो उसमें कोशिश ही करनी चाहिए कि वो खाना खाएं जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए और जिससे डाइजेस्ट होने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अक्सर आप देखिए डॉक्टर्स के यहाँ वही लोग जाते हैं इस समय पर जिनको डाइजेशन का इशू होता है या फिर कहीं पेट में दर्द है या वॉमिटिंग हो रही है, तो इन सब चीज़ों का खास ध्यान आपको रखना है। और जो लोग चाय के शौकीन हैं वो बार बार चाय पीते हैं जिससे कि एसिडिटी फॉर्म होती है, तो कोशिश कीजिए कि आप इस बारिश के ठंडे ठंडे मौसम में हर्बल चाय पीजिए जो एक हेल्दी ऑप्शन है। गर्म सूप भी आप ले सकते हैं या ले सकती हैं, और इसमें आप थोड़ा सा लहसुन ऐड कर दीजिए, इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है।

ये जो प्यारा सा सुंदर सा बारिश का मौसम होता है, इसमें क्या होता है, जो खाने पीने की तलब और बढ़ जाती है। और कभी कभी तो हम बिल्कुल आलस नहीं करते कुछ बनाने में, खाने में घर का। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं बढ़िया बाहर से ऑर्डर करके मंगाते हैं खाना घर पर, और जो मन चाहे फटाफट आपके घर पर आ जाता है और आप उसको खाते हैं और उसके बाद बीमार पड़ जाते हैं। तो भाई कोशिश ये करनी चाहिए कि बारिश के दिनों में बाहर का खाना आपको अवॉइड करना है। वैसे भी बाहर का खाना आप सभी जानते हैं कि उसको खाना सेफ नहीं होता है, तो कोशिश कीजिए कि ये बाहर की चीज़ें, खुली चीज़ें बिल्कुल भी आप अपने खाने में इंक्लूड ना कीजिए। और बारिश के मौसम में तो ये सब चीज़ें ज़्यादा ही होती हैं, इन्फेक्शंस भी ज़्यादा होते हैं। तो भाई अब आपको लगेगा भाई खाएं

होती है, इन्फेक्शंस भी ज्यादा होते हैं। तो भाई अब आपको लगेगा भाई खाएं क्या, तो देखिए भाई दूसरे स्टार्च वाले खाने की चीजों के बदले आप ब्राउन राइस हैं, ओट्स हैं और जौ, ये सब अच्छे ऑप्शन हैं क्योंकि ये डाइजेस्ट होने में इजी हैं और इनसे जल्दी भूख भी नहीं लगती है। तो खाने में इन चीजों को इंक्लूड कीजिए, तो जब जल्दी भूख नहीं लगेगी तो आप जल्दी जल्दी फालतू में चीजें खाएंगे भी नहीं, और फिर जब ज्यादा खाएंगे नहीं तो आपका वेट भी कंट्रोल में रहेगा और आपकी तबीयत भी बिल्कुल फिट एंड फाइन रहेगी। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही हूँ जी, मैं गलत नहीं कहती हूँ, और आपकी सेहत का बहुत ख्याल है हमें, साथ ही आपके एंटरटेनमेंट का भी ख्याल है, इसीलिए ये गाना आपके लिए खास तौर पर 100.7 FM रेनबो पर।

प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3:30 से 4 बजे तक। जी दुबई 12:22 हो गया, प्रोग्राम शत्रुपा चल रहा है। शत्रुपा में हम बात आपसे कर रहे हैं कि बारिश के मौसम में यूं तो खाने पीने का बहुत मन करता है, खूब मन करता है कि बढ़िया तला भुनी चीज़ें खाई जाएं, यानी कि बढ़िया सी पकौड़ियाँ खाई जाएं, कहीं ब्रेड रोल खाया जाए, कहीं और कुछ डीप फ्राई चीज़ें बनाई जाएं। लेकिन हमने आपको बताया कि बारिश के दिनों में डाइजेशन थोड़ा वीक हो जाता है, तो ऐसी चीज़ें खाने जाएं जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए और आपको किसी भी तरह के हेल्थ इश्यूज ना हों। बारिश के मौसम में एक चीज़ और भी होती है कि ज़्यादा प्यास नहीं लगती। तो क्या होता है, जब प्यास नहीं लगती है तो हम क्या करते हैं, पानी पीना कम कर देते हैं। तो भाई प्यास लगे या ना लगे, लेकिन पानी की कमी आपकी बॉडी में नहीं होनी चाहिए। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिए कि इधर उधर से पानी मत पीजिए, अपनी बॉटल अपने साथ रखिए, क्योंकि ख़राब पानी पीने से भी कई बीमारियां होती हैं, इसलिए साफ़ पानी पीजिए। अब आप सोचेंगे खाने पीने के बाद में ये पीने की बात कहाँ से आ गई पानी पीने की। भाई खाने के साथ आपको पानी ज़रूर चाहिए होता है, और कहते हैं खाना खाने के आधे घंटे बाद ही आपको पानी पीना चाहिए। ये तो होगी मुद्दे की बात। अब आप कह रहे होंगे असली मुद्दे की बात आज आप कर नहीं रही हैं, भाई खाने पीने में कुछ तो बताइए कि क्या बनना है। तो चलिए अब जल्दी से आप लोग पेपर और पेन लेकर तैयार हो जाइए, बस हम एक गाना प्ले करें और उसके बाद आपको हम बताने वाले हैं वो रेसिपी जो आप इजीली घर पर बना सकते हैं और मजा ले सकते हैं बारिश के मौसम में भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों का। सुनते रहिए 107 FM रेनबो पर प्रोग्राम शत्रुपा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
4: तो क्या करूं?
5: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
5: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
6: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

12:30 मिनट और हम जानते हैं कि आप हमारी बात मानते हैं और आपने पेन और पेपर बिल्कुल रेडी कर रखा होगा. सो बस अब आपको लिखना है कि आपको जो रेसिपी मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत ही अच्छी है एंड इनफैक्ट मैंने भी ट्राई की है, बहुत अच्छी लगती है खाने में. तो आप पेन उठाइए और फटाफट नोट करना शुरू कर दीजिए. अगर आप रात का टाइम है, कुछ लाइट और इंस्टेंटली बनने वाली चीज़ खाना चाहते हैं, तो आप ओट्स या सूजी का चीला एक बढ़िया सा चॉइस है आपके लिए, क्योंकि ओट्स में आप ये समझिए कि भरपूर मात्रा में फाइबर होता है और ये डाइजेशन को बिल्कुल परफेक्ट रखता है. एंड चीला जो बनाएंगे आप, उसको बनाने के लिए आपको ओट्स में या सूजी में थोड़ा सा दही ऐड करना है. ठीक है, आपने मानिए एक कप सूजी ली है तो उसमें आपको आधा कप दही करीब ऐड करना है एंड पानी लेना है और बारीक कटी हुई सब्जियां लेनी है. सब्जियों में आपके ऊपर है क्या क्या ले सकते हैं, जैसे प्याज है, शिमला मिर्च है, टमाटर है, हरी मिर्च है. हरी मिर्च मिलाने से बहुत बढ़िया स्वाद आता है और धनिया अगर आप उसके ऊपर डाल देते हैं तो खुशबू भी अच्छी आती है और देखने में इतना कलरफुल लगता है कि आपका मन करता फटाफट खा लें इसको. बस आपको क्या करना है, ये सारी सब्जियां यानी सूजी में थोड़ा सा पानी या ओट्स में थोड़ा सा पानी मिलाकर, पानी और बारीक कटी हुई सब्जियां जो हैं, इन सब को मिला के और अपने जैसा आप नमक खाते हो सबसे नमक डालकर इसको बढ़िया सा मिला लीजिए. और अगर थोड़ा सा स्वाद आप और इन्हांस करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो बस उसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा गर्म मसाला डालना. बहुत ज़्यादा मत डालिए, नहीं तो वो उसका एक्चुअल जो टेस्ट, जो वेजिटेबल्स का टेस्ट है, वो चला जाएगा. तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा गर्म मसाला डाल लीजिए और बस नॉन स्टिक पैन लीजिए, बढ़िया सा देसी घी या हल्का सा तेल डालिए और इस बैटर को फैलाकर सेक लीजिए. इसके बाद इसको आपको खाना किसके साथ है, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है भाई. इसको पुदीने की चटनी के साथ सर्व कीजिए. आपको बताऊं, इतना टेस्टी और इतना बढ़िया चीज लगता है खाने में कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ. एंड प्रोटीन फाइबर से लोडेड ये एक परफेक्ट मॉनसून डिनर है. जी हाँ, सारे प्रोटीन्स आपको मिलेंगे और ये परफेक्ट मॉनसून डिनर है वाकई में. और इनफैक्ट आपकी गट हेल्थ के लिए यानी आपके डाइजेशन के लिए ये बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है. अब आप सोच रहे हैं, वाह भाई वाह, क्या चीज़ बताई. एक चम्मच चिकने में चीला बना लीजिए और खा लीजिए. यानी जो स्वाद वो आप इमेजिन कर रहे थे वो थोड़ा थोड़ा आपका गायब हो गया, लेकिन आप यकीन जानिए बहुत ही टेस्टी लगता है. और फिलहाल अगर आप ख्वाबों में जलेबी के बारे में सोच रहे हैं कि आपके सामने जलेबी गर्मा गर्म रखी और दही रखा हो, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वो ख्वाब को ख्वाब ही रहने दीजिए और फिलहाल जो मैंने बताया ट्राई कीजिए. और आपको जलेबियां हम फिलहाल इस गाने के थ्रू खिला देते हैं. एंजॉय करते रहिए 100.7 FM रेनबो.

0: जी जी जी जी जलेबी का स्वाद आपने चख लिया गाने के माध्यम से। और अब हम बात करते हैं दूसरी बढ़िया सी चीज़ की, जिसमें आप वेजिटेबल्स ऐड करके उसे बहुत ही बढ़िया स्वाद का आनंद ले सकते हैं, और वो है दलिया। दलिया लगता होगा आपको सिर्फ नाश्ते के लिए है, लेकिन नहीं नहीं जी, ये सिर्फ नाश्ते के लिए नहीं, बल्कि रात में खाने के लिए एक बहुत ही न्यूट्रिशियस ऑप्शन है। ऐसे में गेहूं का दलिया हो या मिनोवा, ये फाइबर से भरपूर होते हैं और जो मानसून में आपके मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखने में काफी हेल्प करते हैं। और आपको क्या करना है, इसे बनाने के लिए अपनी पसंदीदा सब्जियां ले लेनी है, थोड़े से तेल और मसालों के साथ इसको भून लेना है, और फिर इसमें दलिया डालकर पानी के साथ कुकर में सीटी लगा दीजिए, और जब वो सीटी बज के खत्म हो जाएगी तो ये देखने में जितना सिंपल है उतना ही टेस्टी और हेल्दी है। और साथ ही हम आपको बता दें कि अगर आपको लगता है कि आप वेजिटेबल्स को अलग से कुक कर लें, तो आप पहले दलिया को उबाल के रख लीजिए और उसके बाद चिकना डालिए और उसमें थोड़ा सा प्याज टमाटर और अदरक घिस दीजिएगा तो उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और हाँ, जैसे कि मैंने कहा, गार्निशिंग में धनिया को ज़रूर ऐड कीजिए, सारी सब्जियाँ ऐड कीजिए, कलरफुल दलिया बहुत ही अच्छा लगता है। जो लोग कैलोरी कॉन्शियस हैं उनको तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए, और जिनको लगता है कि भाई थोड़ा सा स्वाद चाहिए तो थोड़ा सा आप आलू को इस शेप में काट लीजिए कि वो आपको देखने में सुंदर लगे, और उसके बाद उसको हल्का सा फ्राई कर लीजिए, हल्का सा फ्राई करना है ना, और फ्राई करने के बाद उसको दलिया के ऊपर बढ़िया सा रख दीजिए, तो वो सजा सजा आलू के साथ दलिया आपको और अच्छा लगेगा और मन करेगा खाने का। वैसे भी ये सब चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए खासतौर पर अच्छी हो, साथ ही आपके डाइजेशन के लिए परफेक्ट है। तो भाई आज हम आपको बिल्कुल ऐसा बता रहे हैं चीज़ों को कि आप आराम से जिसे खाइए, स्वाद भी आपको भरपूर मिलेगा और इतनी कलरफुल होंगी कि आपका मन, आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, आपको लगेगा फटाफट खा लें। और हाँ, अगर आपको कुछ और खाने का मन कर रहा है तो मैं आपको एक दो चीज़ें और बताएंगी, और वो बताने के लिए और सुनने के लिए आपको बस सुनते रहना है 100.7 FM रेनबो यानी धड़कन लखनऊ की।
1: मोहल्ले में सब ठीक है
2: जब से हुआ।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टीसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ,
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक, कितना ब्लॉक करूं यार।
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है,
4: तो क्या करूं?
5: कॉल उठाओ फिर DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
5: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है, सिर्फ ब्लॉक नहीं रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
6: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

अच्छा मुझे लग रहा है ना अब लिसनर्स थोड़े से नाराज हो रहे हैं कि आप बिल्कुल सादा सादा खाना बता रहे हैं। कुछ तो बढ़िया बताइए, पकौड़ी के बारे में कुछ तो बताइए। बारिश के मौसम के बगैर में पकौड़ी ना हो तो कैसा मौसम। चलिए चलिए आप परेशान ना होइए, मैं आपको घर पर भपौरी बनाना बताती हूँ। अब आप सोचेंगे भपौरी क्या है। भपौरी जो चीज़ भाप में तैयार की जाती है, जो पकौड़ियाँ उनको कहते हैं भपौरी, यानी कि वो डीप फ्राइड नहीं होंगी, वो भाप में पकी पको भपौरियाँ होंगी और इनका स्वाद बहुत अच्छा होता है। तो अगर आज आपको शाम को खाने का मन है भपौरी, तो आप बढ़िया से चने की दाल या फिर मिक्स दाल को 3-4 घंटे तक भिगो दीजिएगा, ठीक है। 3-4 घंटे इसे भिगोने के बाद फिर इसे अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, जीरा, नमक और हींग के साथ थोड़ा सा दरदरा और गाढ़ा सा पेस्ट बना लीजिएगा। मैं फिर से बता रही हूँ, चने की दाल या मिक्स दाल को आपको 3-4 घंटे भिगोना है और फिर इसे लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, जीरा, नमक और हींग के साथ, हींग का इसलिए यूज किया जाता है कि चने की दाल हैवी होती है तो हींग आपके गैस्ट्रिक ट्रबल नहीं होने देती, इसलिए हींग बहुत फायदेमंद है। वैसे भी जो हमारे इंडियंस मसाले होते हैं वो सारे सारे आपकी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। तो थोड़ा सा आप इसका गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लीजिए। उसके बाद एक बर्तन में पानी रखकर उस पर ऐसी चीज रखिए जिसमें पोर्स हो, यानी छेद हो थोड़े थोड़े, और जाली ऐसी, और उसके ऊपर आपको क्या करना है, इस जो आपने मिक्सचर तैयार किया, इस मिक्सचर की छोटी छोटी टिक्कियां बना के, यानी जैसे आप पकौड़ी को तेल में तलते हैं वैसी पकौड़ी

आपको इसके ऊपर रख देनी, हल्का सा चिकना लगा लीजिएगा उस बर्तन में। उसके बाद इसको रख दीजिएगा और इसे भाप में पकने दीजिएगा। जब ये आपके भाप में पक जाएंगी बढ़िया से, आप बहुत हल्के चिकने में अगर आप चाहें तो इनको हल्का सा सोते कर लीजिए, फ्राई कर लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा तेल आपको बिल्कुल नहीं डालना क्योंकि ऑलरेडी भाप में पकी होती हैं, भपोरी ही इनको कहते हैं। ये तो मैं आपके स्वाद के लिए बताने को हल्का सा कर लीजिएगा, नहीं तो आप ऐसे भी इसे बढ़िया अदरक लहसुन धनिया की चटनी के साथ या फिर पुदीने की चटनी के साथ खा सकते हैं और उसका मज़ा ले सकते हैं। तो अब आप ये मत कहिएगा कि आज मैंने आपको भाप से बनी हुई पकौड़ियाँ नहीं बताई, यानी ये पकौड़ियों का भी स्वाद आ गया और लीजिए आपकी सेहत से भी कोई दिक्कत नहीं हुई, यानी सेहत भी आपकी बढ़िया रही। और अब जब सेहत बढ़िया हो ही गई है तो एक बढ़िया सा गाना भी हो जाए, क्या कहते हैं आप?

तेजी से बढ़ता समय, जी हाँ 12:52 हो गए हैं। प्रोग्राम शत्रुपा में हम आपको ऐसी चीजें बता रहे हैं खाने पीने की जो आपके इस मौसम में आपको कोई दिक्कत न करें और आप स्वाद का भी आनंद ले सकें। अब सबसे अच्छी चीज होती है खिचड़ी। जी हाँ, खिचड़ी जो होती है बीमारों का खाना नहीं है बल्कि बेहतरीन और बैलेंस्ड कम्फर्ट फूड है। तो बारिश के मौसम में मूंग दाल खिचड़ी बेस्ट ऑप्शन है और बनाना भी आप जानते हैं कि कितना सरल होता है। खिचड़ी बनाना सबसे ईजी होता है। अगर आप मूंग की दाल खिचड़ी बनाना चाहते हैं, बस आपको हल्का सा चिकना डालना और उसमें जीरा और हींग का तड़का लगाना है। और अगर आप थोड़ा सा चटपटा खाने के शौकीन है तो उसमें थोड़े से मिर्चे काट के डाल दीजिए और बढ़िया खिचड़ी यानी चावल और दाल जो आपने मिक्स करके भिगो के रखा है उसको डालिए और हल्की सी हल्दी और थोड़ा सा मिर्च डाल दीजिए और बढ़िया नमक डाल के उसका स्वाद दीजिए। इसके अलावा आप इडली और डोसा, इन सब का जो ये घोल है ये एक नेचुरल वे में फर्मेंट किया जाता है, तो आप इन्हें भी अपने फूड में इंक्लूड कर सकते हैं, यानी आपका स्वाद कुछ बढ़िया हो सकता है इडली और डोसे से। और जो आप सांभर बनाते हैं उनमें सब्जियां होती हैं जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होती हैं। खाने पीने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी खाइए। खाने पीने का मतलब होता है कि आप ऐसा खाइए जो आपके शरीर के लिए फायदेमंद हो। हाँ, कभी कभी कुछ चीज़ों में होता है कि आप बदपरहेजी कर देते हैं, लेकिन अगर आप अक्सर अपनी खाने पीने में थोड़ा सा इग्नोरेंस करते हैं यानी कि आप चीज़ों को बिना सोचे समझे खाते रहते हैं तो कभी कभी दिक्कतें काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपने आप को बिल्कुल फिट रखने के लिए खाने पीने पर ख़ास ध्यान दीजिए, ठीक है। और हाँ, जैसा कि मैंने कहा था कि हम आपसे बिल्कुल कनेक्ट रहते हैं और अभी बस जाने के बाद भी कहीं हम जा नहीं रहे, यानी 12:53 हो गया, तो मुझे मेरे जाने का वक्त हो रहा है, लेकिन अभी मैं परमानेंटली नहीं जाऊँगी। अभी मैं आपके साथ 4 तक आज रहूँगी और नेक्स्ट प्रोग्राम होठों पे तेरी बात में एक बार फिर शिल्पी आपके साथ रहेगी। तो अभी के लिए मैं आपसे टाटा बाय बाय कह रही हूँ, लेकिन वापस आऊंगी तो बिल्कुल भी हैरान एंड परेशान बिल्कुल मत होइए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
1: 8700001424।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं स्वदेशी हमने विचार एफएम पर। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एफएम रेनबो आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। दोपहर का एक बज चुका है और ये समय है कार्यक्रम अनुरोध गीत का। वो लम्हे, वो वक्त कितने अजीब होंगे, दुनिया में हम लोग कितने खुश नसीब होंगे। दूर रहकर जब आप इतना करते हो प्यार, क्या होगा आपका जब हम आपके करीब होंगे। श्रोताओं नमस्कार, आदाब। कार्यक्रम अनुरोध गीत में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारे खत जिस मोहब्बत और प्यार के साथ आपने हमारे केंद्र पर भेजे हैं, उसी प्रेम और शिद्दत के साथ हम अपने इस प्रोग्राम अनुरोध गीत में शामिल करते हैं। ये पहला खत हमारे पास आया है पिथौरागढ़ उत्तराखंड से। सुनीता मेहता रावत, दीपू रावत, बबीता मेहता, कोमल मेहता और दिनेश बिष्ट दीनू भाई, आपने सुनना चाहा है फिल्म हीरो का ये गीत लता मंगेशकर और मनहर उदास की आवाज में। इसी गीत को सुनने के लिए खत हमारे पास आया है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद जिला बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद तबरेज अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, बबलू कैप्टन निसार और मस्तान बाबा का, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही, मिराज जहां, आजाद नगर।

लक्सर हरिद्वार से। आप हैं हमारे श्रोता हरि सिंह सदर कैंट बरेली से, साथ में हैं रेकी सिंह, मीना सिंह, टीना सिंह, प्रिया सिंह और मेघा सिंह। ऊंची मस्जिद उसहस से चांद मियाँ, तबस्सुम बेगम, असद सत्तार, शाहजहाँ अली बाबा, मर्जीना अलबख्श, गंजुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम एच लल्ला, एन बी मिर्जा, मुनव्वर हुसैन, नसरीन बेगम, ककशा बेगम, अनवार मियाँ, गुमनाम शाह, बेनाम शाह, नामालूम शाह, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक। वजीरगंज जिला बदायूं उत्तर प्रदेश से ये खत हमारे पास आया है प्रेम कमल वाशने, सुशीला कमल वाशने, प्रभात कमल वाशने, अमरीश कमल वाशने, सलोनी कमल, सचिन कमल, नीरू कमल, देविका कमल, कार्तिक कमल, वेदरिचा कमल, ऐश्वर्या कमल वाशने और वाशने परिवार के सभी सदस्य। ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं से सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र यादव, आनंद यादव, सनोज यादव, अमन यादव, सोनी यादव, अंकिता यादव, विनीता यादव, अनीता यादव, सुनीता यादव, सूरज श्री यादव और यादव परिवार के सभी लोग। कनेरा मोहल्ला पटियाला से आप है बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। आप हैं बिमल ठाकुर, सरिता ठाकुर, शुभ, लभ, गुनगुन, अमर सिंह, नीलू, रीना, नीरज, बक्सीना, दातागंज बदायूं से। टिंकू भाई उर्फ भास्कर भाई, शुभम कुमार, मोहित कुमार माथुर, योगेंद्र माथुर, कुमार पाल माथुर, रुपेंद्र माथुर, रीटू शर्मा, के शर्मा, चोप सिंह शाक, आशीष शाक, रमेश साहू, मोनिका माथुर, अनिष्का माथुर। ग्राम बुडला दौलत पोस्ट उझानी जिला बदायूं से छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी, सिद्धोरेखा प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। पुराना होली चौक ग्राम करगना बरेली से गणेश शर्मा, शगुन शर्मा, कार्तिक पवन, युवराज, इशिता, पंकज, वीर शर्मा, संदीप शर्मा, चंचल शर्मा, चिंकी शर्मा, सूरजपाल शर्मा, शर्मा परिवार के सभी लोग। तो आइए सुनते हैं आप सभी के अनुरोध पर फिल्म हीरो का ये गीत मनहर उदास और लता मंगेशकर की आवाज में। रिश्तों में आजमाइश होती है, दिल में मिलने की ख्वाहिश होती है, हम आपको एक बार भी याद नहीं करेंगे, याद उन्हें करते हैं जिन्हें भुलाने की गुंजाइश होती है।

बरेली जंक्शन से गरीब भाई नासिर भाई सादिक भाई विक्की भारद्वाज अमन जैद इसरार भाई पदम भारद्वाज सुंदर भाई प्रदीप पाल नमन उमाशंकर और इनके सभी साथी आपने सुनना चाहा है बंजारन फिल्म का ये गीत अलका याग्निक की आवाज़ में। इसी गीत को सुनने के लिए ये खत हमारे पास आया है फूलबाग किला छावनी बरेली से विशन दत्त भारद्वाज शिव दत्त भारद्वाज गंगा दत्त भारद्वाज विक्की भारद्वाज वर्षा कविता कल्पना यीशु भावना आदित्य देवकी देवी भारद्वाज शिवरा नीलम भारद्वाज मुन्नी देवी भारद्वाज और साथ में हैं श्री राम राठौर। जिला बदायूं ग्राम दूनी नगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया मनोज कुमार कठेरिया सतेंद्र कुमार कठेरिया गुड्डू विशाल संगम विभू आदर्श आदित्य अमित रेणु कुमकुम निव्या सरिता अंतिमा आप हैं परी महल कासगंज से आबाद खान नवील खान असलम सैफी ए खान कंजुंडवारा से शमशुल कमर राही जाहिद अली और इनके सभी साथी आप हैं सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलठाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाडे ज्योति नरवाडे आकांक्षा नरवाडे आकाश कुमार बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी फातिमा खातून अंसारी असलम अंसारी अकरम अंसारी अल्ताफ अंसारी डुमराव बिहार से डब्ल्यू अंसारी सोनम अदीबा और दानिश अंसारी सरीमपुर बक्सर से आसमा खातून अंसारी राज एच डी अंसारी मेहताब अंसारी आफ्ताब अंसारी और मेराज

अंसारी, राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक वर्मा, आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, रितेश, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार एवं समस्त स्वर्णकार परिवार। आप हैं तहसील जाफराबाद जिला जालना हुन से श्री सुधाकर राजे यादव, प्रशांत राजे यादव, जागुताई संचित प्रथमेश सोहम प्रणाली सानवी और इनके परिवार के सभी लोग। तो आइए सुनते हैं बंजारन फिल्म का ये गीत अलका याग्निक की आवाज़ में। अपना वो नहीं जो पास आ गया, अपना वो नहीं जो पास आ गया, पराया वो नहीं जो दूर चला गया। दूर या पास होने से कोई अपना पराया नहीं होता, अपना वो है जो दिल में समा गया।

0: विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान, घर घर पर दस्तक देकर होगी सभी रोगों की रोकथाम।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने ठाना है संक्रामक रोगों को फैलने से बचाना है।
0: ध्यान रहे, बुखार में देरी पड़ेगी भारी, इसलिए बुखार होने की स्थिति पर निकटतम सरकारी अस्पताल जाएं तथा उचित चिकित्सक की सुविधा पाएं।
1: 1 से 30 अप्रैल तक चलेगा ये अभियान। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145 पर कॉल करें।
2: चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: शुदा 108.4 एफएम पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अनुरोध गीत। ये खत हमें भेजा है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा बिमला अनेजा ने, और शीशगढ़ मोहल्ला गौड़ी से गुड्डू इदरीसी मोहम्मद फरहान इदरीसी। आप हैं यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार। भूड़ बरेली से रजत कुमार, कासम कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश से यूनुस खत्री, शफी खत्री, इदरीस खत्री, नूर मोहम्मद खत्री, इरफान मीना, कासिफ मीना, हाशिम मीना। शीतल रेडियो श्रोता संघ ग्राम बहरामपुर टेमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से त्रिलोक चंद्र वर्मा, भगवत वर्मा, अभिषेक, सीमा वर्मा, अमित वर्मा, सचिन, मास्टर राज, आर्यन वर्मा, बेबी आरोही, ईशिका वर्मा, अंजलि, श्वेता वर्मा। आप हैं मोहल्ला गड़ैया बरेली मस्जिद के पास से मोहम्मद कैसर शमशी, मोहम्मद अजीम शमशी, मोहम्मद सलीम शमशी, मोहम्मद नवैद शमशी, रजिया शमशी, राजा बाबू और शमशी परिवार के सभी लोग। गंगवार रेडियो श्रोता संघ ग्राम दलपतपुर पोस्ट चटिया जिला बरेली उत्तर प्रदेश से ओम पाल गंगवार, अनिता गंगवार, उनके मम्मी पापा। ग्राम पिपरिया पोस्ट नगरिया सोबरानी जिला बरेली से अमन गंगवार, आशा गंगवार, संध्या गंगवार, छोटे लाल गंगवार और इनके परिवारीजन। खुर्जा यूपी से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म जानी दुश्मन का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में। एहसास तेरे होने का जिस पल नहीं होता, एहसास तेरे होने का जिस पल नहीं होता, सांसों का सिलसिला भी मुकम्मल नहीं होता, और जिंदगी हमारी इतनी खूबसूरत ना होती जो तुमसे मिलने का इंतजार हर पल ना होता।

श्रोताओं, सौदे शिमला 4 FM पर आकाशवाणी की बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अनुरोध गीत। और ये अगला खत हमारे पास आया है निकट बिजली घर कस्बा मीरगंज जिला बरेली से। भाई कल्लू मिस्त्री मोहम्मद नईम, मोहम्मद फहीम, दानिश, यशपाल, दिवाकर और इनके परिवार के सभी लोग, आपने सुनना चाहा है सौतन फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं ग्राम रामपुरा किसानान मजरा सिमरिया तहसील मीरगंज बरेली से राम कुमार वर्मा, भगवान दास वर्मा, रविंद्र वर्मा, सोमपाल वर्मा, तेजपाल, तेज प्रकाश वर्मा, शशि कुमार वर्मा, नत्थूलाल वर्मा, ननकी सिंह वर्मा, छोटे से विवेक और हिमांशी वर्मा। आप हैं वारिस अली खान, शकील अहमद, जावेद अली, अलशिफा खान, हमजा खान और आपने ये खत हमें भेजा है संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। और साथ में हैं फैजल खान, मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करघना बरेली से पन्नीलाल सागर, बेनी सिंह मासूम, धर्मवीर मनमौजी, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश उर्फ बंटी, रूबी भारती, रचना भारती, एकता भारती, दिव्य भारती, ममता चौधरी, श्रीमती ओमवती भारती, बेटी खनक, नकुल, नैन्सी, सारांश और इनके परिवार के सभी लोग। परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा से अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति पवनीत और विक्रमजीत ग्रोवर। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांडा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनप्रीत, मनमीत, मनमिंदर पांडा और परिवार के सभी लोग। आप हैं दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार। खमरिया बिलासपुर से साबित खान, सावित्री देवी, धर्मेंद्र प्रजापति, प्रतीक कुमार। करनाल से सुधीर नूतन, किरण ठाकुर, संदीप कोकलानी, जगमोहन प्रजापत। निकट मोती मस्जिद कस्बा नवाबगंज जिला बरेली से नसीम अहमद, मेराज भी, मुस्कान भी, मोहम्मद रेहान, अलशिफा भी, मन्नत भी। पंडित नगला बाईपास मुरादाबाद से अख्तर हुसैन, असलम हुसैन, बीबीपुर से महमूद हुसैन, बैटला सिरसी से मकसूद हसन और इनके परिवार के सभी सदस्य। तो आइए सुनते हैं सौतन फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। बड़ी शिद्दत से चाहा है तुझे, बड़ी दुआओं से पाया है तुझे, तुझे भुलाने की सोचूं भी कैसे, किस्मत की लकीरों से चुराया है तुझे।

104 FM पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत। अगला गीत फिल्म का नाम है जीवन मृत्यु, आवाज मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, और अनुरोध किया है आप सभी ने बहेड़ी से अंजुम भाई, खालिदा बेगम, कैकशा, दानिश आदिल, शफक और इनके परिवार के सभी लोग, मोहल्ला तलैया उड़ा जागीर से फजलुद्दीन भाई, अबरार भाई, अफजाल भाई, राम

जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रेहान, माहिरा नूर। आप हैं कटर चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेदराम मौर्य, कैलाश मौर्य, सुनील मौर्य, खुशबू मौर्य, आरोही मौर्य और स्वाति मौर्य। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार, कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पिंडरा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशी लाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सूरजी देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया, साजदा रानी, आलिया रानी। बिलराम गेट काजगंज से एम असलम सैफी, जैबुलनिशा बेगम, अकरम सैफी, आबाद खान। लिवई से गुलाब दास, मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, रिंगनी से दिनेश वर्मा, दतरेंगी से भागवत वर्मा, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली। बिरडी से हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक प्राची और तनु करमकर। पप्पू भाई, सलीम भाई, ये खत आपने हमें भेजा है, राजेंद्र नगर निकट तालाब के पास डेलापीर रोड, जिला बरेली से। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय। आप हैं रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। आइए सुनते हैं आप सभी के अनुरोध पर फिल्म धर्मवीर का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिर न सिमटेगी अगर मोहब्बत बिखर जाएगी, फिर न सिमटेगी अगर मोहब्बत बिखर जाएगी, जिंदगी जुल्फ नहीं कि फिर से सवर जाएगी। जो खुशी दे तुमको थाम लो दामन उसका, जिंदगी रो के नहीं हंस के गुजर जाएगी।

फिल्म का नाम है कर्तव्य, आवाज़ उषा मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं गांव लोहड्डा ज़िला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापति, श्रीमती मुनेश देवी, मास्टर अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन और इनके परिवारजन, शीशगढ़ बरेली से इलियास इदरीसी, नाजरा इदरीसी, नईम इदरीसी, नदीम इदरीसी, आप हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, स्वीट बेबी काव्या, जयपाल यादव, अनारकली बाजार जगराव से, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा, आप हैं ग्राम पजौनिया तहसील कोंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र चंसौलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक आराध्या और चंसौलिया परिवार के सभी लोग, इंदिरा बिहार रायगढ़ से वसीम अक्रम नूरजहां, डब्ल्यू अक्रम नूरजहां, वली अक्रम, उल्ला अक्रम, राजनाथ गांव से याकूब आसमा, यूसुफ इमरान, इरफान, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम और अदीबा, आप हैं ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर, बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा, ऋषि वर्मा और वर्मा परिवार के सभी सदस्य। और ये खत हमारे पास आया है गांव चौलैदा बागपत से संजय डींगिया, नमन डींगिया, मुस्कान कुणाल और डींगिया परिवार के सभी लोग। तो आइए सुनते हैं कर्तव्य फिल्म का ये गीत उषा मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। साथियों, कहते हैं कि इश्क के भी कुछ अंदाज होते हैं, इश्क के भी कुछ अंदाज होते हैं, जागती आंखों में भी ख्वाब होते हैं, ज़रूरी नहीं कि गम में आंसू निकलें, मुस्कुराती आंखों में भी सैलाब होते हैं।

0: जाओ अब तुम अपने घर जाओ। देखो मुन्नी बच्चे ज्यादा शरारत नहीं करते, जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: देखो रात बहुत हो चुकी, मैं कहता हूँ जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, छाया तो कैसे नहीं जाएगी, कैसे नहीं जाएगी।

कार्यक्रम का ये आखिरी गीत फिल्म का नाम है छोटी सी मुलाकात। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की, और पसंद किया है आप सभी ने। मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर, जिला पीलीभीत से विमल वर्मा, विनय वर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य, सरोज चौक अमरावती महाराज से कमरुल्ला भाई, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा सवालिया, शोएब खान, मुस्तफ़ा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई, गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, दादरी गेट भिवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। आप हैं महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा, ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, विशाल कुमार धंजे, शीला धंजे, गायत्री धंजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय बैद, रानी बैद, महिमा बैद और नीतू बैद, फजलिका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, ट्वानसी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, आरबी खेड़ा, लाडी खेड़ा, जीवन सिंह और खेड़ा परिवार के सभी लोग, बठेना से बलकरण, अंजनी वर्मा, कुमारी ज्योति वर्मा, चढ़ौदा सारा गांव से सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा, मेहरनगर उमरखेड़ महाराज से अभिजीत गुआड़कर राही, सरिता गुआड़कर, सिद्धांत गुआड़कर, प्रिंस एकांश गुआड़कर राही, विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गुआड़कर, वैशाली सुमित धौनी गुआड़कर। आप हैं नाना डोंगर दिबे, रमाताई डोंगर दिबे, सीमाताई, रीमाताई, दीक्षाताई, राहुल डोंगर दिबे, कृष्णा टावर, टीवी टावर, सिमरनरी हिल्स नागपुर से रहमान अलवी, अनोखी बेगम अलवी, फिरासत अलवी, गुलशन बेगम अलवी, जानवी अलवी, हानिया अलवी, नज़ाकत अलवी, शाहीन बेगम अलवी, अहिल बाबू अलवी, आदिल अलवी और अलवी परिवार के सभी लोग, जिला बदायूं, कस्बा बिलसी, वार्ड नंबर 5 से। आप हैं ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुमकुम कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोमनमिका, उत्कर्ष नेताम। और ये ख़त हमारे पास आया है औरंगाबाद से राजेश सावले पाटिल, शीतल, राजदीप, राशि और इनके परिवार के सभी लोग। तो आइए सुनते हैं फिल्म छोटी सी मुलाकात का ये गीत मोहम्मद रफ़ी, सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। सपनों की दुनिया में हम खोते चले गए, होश में थे फिर भी मदहोश होते चले गए, जाने क्या बात थी उस अजनबी चेहरे में, ना चाहते हुए भी हम उसके होते चले गए।

तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता।

और दोस्तों इसी गीत के साथ प्रोग्राम अनुरोधगी से हमें दीजिए इजाजत। अगले कार्यक्रम के लिए स्टूडियो में पहुंच चुके हैं श्रृंगार शेखर पाठक।

तो अभी आप सुन रहे थे अनुरोध गीत कार्यक्रम, और परवेज जी अब स्टूडियो से विदा ले रहे हैं और मैं श्रृंगार शेखर पाठक आपके साथ जुड़ रहा हूं। और कार्यक्रम अगला है रसरंग, तो चलते हैं रसरंग कार्यक्रम की ओर, सुनते हैं ये लोकगीत।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: चादर मोह।
1: इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी समय बता रही है 2:30 और आइए अब आपको जोड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। पहला जो गीत है ये उसने कहा था, इस फिल्म का गाना है, मन्ना डे, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, सलील चौधरी का संगीत।

तू नहीं और सही इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की आवाजों में, गीतकार असद भोपाली, संगीतकार रवि।

0: मुझे प्यार दे।
1: परख फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार सलील चौधरी।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
5: विविध भारती से, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अब आपको सुनवाते हैं मियां बीवी राजी, इस फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, एसडी बर्मन का संगीत।

तीर और तलवार इस फिल्म का ये गाना आपको सुनवाते हैं, आशा भोसले की आवाज, फारूक कैसर के बोल, संगीत निसार का।

अगला गीत सुनते हैं, रंगीला राजा फिल्म का गाना तलत महमूद और सुधा मल्होत्रा की आवाजों में, असद भोपाली के बोल, संगीत शिवराम का।

रंगीला राजा फिल्म का ये गाना आपने सुना, तलत महमूद और सुधा मल्होत्रा की आवाजों में, असद भोपाली के बोल और संगीत शिवराम का। सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला जो गीत है, जिस देश में गंगा बहती है, इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ। इस गीत को लिखा हसरत जयपुरी ने और धुन बनाई शंकर जयकिशन ने।

क्या जुर्म किया, इन आँखों का रंग हो गया गुलाबी गुलाबी।

0: सखी सहेली सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: कैसी हो आरती?
1: बिल्कुल ठीक हूँ।
0: बिल्कुल बढ़िया।
1: बिल्कुल मॉनसून में
0: बारिश का आनंद ले रही हो, है ना?
1: बिल्कुल।
0: देखिए कई जगहों पर तो अभी बहुत ज्यादा बारिश होने वाली, उसका रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। तो हम तो अपने सभी सखियों से, सखाओं से, साथियों से यही कहना चाहते हैं कि आप सावधानी रखिए और बारिश में और भी बहुत सारी पानी से संबंधित सावधानियां, खान पान से संबंधित सावधानियां तो वो तो आपको रखनी ही है जब तक ये मानसून चलेगा।
1: बिल्कुल। और जितना ज्यादा हम अपना ध्यान रखेंगे उतना ही इस मानसून का हम लुत्फ भी उठा सकते हैं,
0: आनंद ले सकते हैं, अन्यथा बीमार होने के

0: संभावनाएं काफी बढ़ जाती है। चलिए
1: बिल्कुल
0: आज के विषयों की हम बात कर लेते हैं आरती।
1: जी
0: तो हाँ, पहला विषय भी हमारा फिटनेस से संबंधित
1: हाँ
0: है ना,
1: जी
0: महिलाएं और फिटनेस,
1: जी
0: ये हमारा पहला विषय है।
1: जी
0: और दूसरा
1: दूसरा है लेखिका ज्योति जैन जी से ममता सिंह जी की बातचीत होगी, जिसमें वो फिटनेस के बारे में हमें बताएंगी, जानकारी देंगी, तो उसको आप सुनिएगा जरूर। और
0: हाँ
1: साथ ही हम बात करेंगे साड़ियों के संसार के अंतर्गत, आज हम मणिपुरी साड़ी लेकर आए हैं।
0: अच्छा, जो कि मणिपुर में बनती
1: जी
0: है
1: हाँ
0: ना।
1: बिल्कुल
0: और अगला जो विषय है हमारा, हमारा शब्द, हमारा विचार आपके, तो जो शब्द है वो है फिजूल खर्ची। तो फिजूल खर्ची तो हमें नहीं करनी चाहिए,
1: जी
0: मितव्ययिता से रहना चाहिए, सोच समझकर कहाँ जरूरत है वहीं पर पैसा खर्चा करें, क्योंकि अगर हमने इस बात का ध्यान नहीं रखा तो हमारे पूरे महीने का बजट बिगड़ जाता है,
1: बिल्कुल
0: बचत नहीं हो पाती है।
1: जी,
0: तो इन बातों का हमें ख्याल रखना है।
1: क्योंकि जब हम शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो बिल्कुल दिमाग से निकल जाता है कि हमें बजट के हिसाब से चलना है, हम जो हमें जरूरत की चीजें नहीं भी होती हैं उसको भी खरीद लाते हैं, तो ध्यान रखना चाहिए। तो आप बताइए, आपने क्या फिजूल खर्ची करी है, या फिर आप अपने अच्छी तरीके से अपने बजट के हिसाब से चलते हैं?
0: हाँ, तो ये आप हमें बता सकते हैं। और हमारा जो फेसबुक पेज है www.facebook.com, तो वहां जाकर के आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं इसके बारे में।
1: बिल्कुल
0: और व्यंजन की भी आज बात करेंगे। देखिए,
1: जी
0: आज फिटनेस की बहुत सारी बातें हो रही है, तो
1: जी
0: ज्वार के व्यंजन, अब ज्वार भी एक ऐसा अनाज है जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है,
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: उससे बनने वाले जो व्यंजन है आपके जिस जगह पर, देखिए हमारा जो देश है विविधता से भरा हुआ देश
1: जी
0: है, हर राज्य में अलग अलग तरह, एक ही चीज से अलग अलग तरह के व्यंजन बनते हैं। तो आप जहां पर रहते हैं, आपके एरिया में, आपके घर में ज्वार से किस तरह के और क्या व्यंजन बनाए जाते हैं
1: जी बिल्कुल
0: उसके बारे में आप हमें बता
1: बिल्कुल,
0: सकते
1: क्योंकि जो
0: हैं।
1: फिटनेस का ध्यान रखते हैं वो अधिकतर ये ज्वार ही खाते हैं, तो आप बताइए आप किस तरीके से आप इसको ज्वार को बनाते हैं,
0: हाँ,
1: तो
0: रोटी
1: बताइए।
0: तो बनती ही है, ये तो पारंपरिक तौर पर बहुत वर्षों से हम देखते आए हैं, हमारी
1: जी
0: दादी नानी के जमाने से, कि ज्वार के आटे से रोटी बनाई जाती है और विभिन्न तरह की उसके साथ दालें, सब्जियां उसके साथ खाई जाती
1: जी
0: है। लेकिन इसके अलावा भी और कोई व्यंजन अगर बनाए जाते हैं तो उनके बारे में आप हमें
1: जी
0: लिखकर भेज सकते हैं। और जब फिटनेस की बात आती है, तो फिटनेस तो तभी आती है जब हमारा मन चंगा हो,
1: जी
0: दिल बहुत स्वस्थ हो, दिमाग बहुत स्वस्थ हो, और उसका एक बहुत ही अच्छा साधन है और वो
1: गीत
0: है
1: संगीत
0: संगीत। चलिए
1: जी
0: सुनते हैं एक गीत।

0: आरती देखो, पहली फिल्म का ये गाना हमने आपको सुनवाया, हेमलता और सुरेश वाडकर की आवाजें, और
1: जी
0: इसमें भी बारिश से संबंधित बातें थी, लेकिन बड़ी खुशी वाली बातें थी। लेकिन ये खुशी तभी बरकरार रह सकती है जब हम अपने फिटनेस का ध्यान
1: जी
0: रखें,
1: बिल्कुल
0: और खास तौर पर जब बारिश बहुत हो रही हो, मानसून का सीजन हो, तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हुए फिटनेस का ध्यान रखा जा सकता है, तभी
1: जी।
0: इनका आनंद ले सकते हैं।
1: तो फिटनेस
0: चलो,
1: के ऊपर हम और कुछ बताने वाले हैं।
0: हाँ बिल्कुल, एक लेखिका है ज्योति जैन उनका नाम है, और वैसे तो वो लेखिका है, उन्होंने अपने लेखन के बारे में भी हमें बताया है, उनकी पुस्तकों के बारे में भी बताया है, लेकिन आज इस अंक में वो फिटनेस की बातें करने जा रही हैं,
1: जी
0: तो सुनते हैं उनकी ये बातें, और आने वाले अंकों में हम उनके लेखन के बारे में भी जानेंगे।
1: बिल्कुल।
0: चलो
1: और ममता जी ने इनका इंटरव्यू लिया है, इनसे बातचीत करी है, तो सुनते हैं।
0: बिल्कुल।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, और विविध भारती के स्टूडियो में साहित्यकार ज्योति जैन जी आई हैं। आपका हम सखी सहेली की ओर से और विविध भारती परिवार की ओर से स्वागत कर रहे हैं। ज्योति जी नमस्कार, आपका बहुत स्वागत।
0: नमस्कार ममता जी, और सचमुच सखी सहेली में आकर के मुझे बस सखी वाली ही फीलिंग आ रही है, तो आपका बहुत सारा
2: बिल्कुल
0: धन्यवाद।
2: सखी सहेली आप सुनती रही हैं
0: जी
2: लगातार,
0: जी बिल्कुल।
2: तो आपको कैसा लगता है?
0: ऐसा लगता है कि देखिए, हम अभी तक जिसको दूर बैठकर सुनते थे सखी सहेली कार्यक्रम, उसके विज्ञापन भी सुनते थे कि सखी सहेली कार्यक्रम सुनने के लिए पुरुष वर्ग भी किस तरह से वो
2: सखा भी
0: समय
2: सुनते
0: सखा भी
2: हैं
0: सुनते
2: ये।
0: हैं, तो अभी तक जिसको दूर बैठकर सुनते थे उसमें खुद आकर के तो एक अद्भुत अनुभूति हो रही है कि अरे वाह, मैं खुद भी एक सखी बन गई हूँ यहाँ
2: जी,
0: आकर।
2: हम सखियों को बता दें कि ज्योति जी के पास बहुत सारे हुनर हैं, और एक ऐसा हुनर है जो आप सबके लिए प्रेरणा की बात है। इन्होंने अपने फिटनेस के लिए बहुत कुछ किया है, डाइट से लेकर जिम जाती हैं। हम इन्हीं से पूछते हैं कि बताइए सखियों को अपने फिटनेस के लिए क्या कुछ करना चाहिए।
0: सबसे पहले तो मैं सभी सखियों से ये कहना चाहूंगी कि स्वयं को कमतर न आके, क्योंकि आपकी जो देखभाल वाली लिस्ट है उसमें आपका नाम सबसे आखिरी में होता है,
2: बिल्कुल।
0: और ये चीज बिल्कुल गलत है। ये आप अपने साथ न्याय नहीं कर रही हैं, क्योंकि आप परिवार में हर सदस्य का ध्यान रखती हैं। आपको पता होता है आपकी सास को क्या पसंद है, ससुर जी को क्या पसंद है, या माता पिता हैं तो उनको क्या पसंद है, पति को क्या पसंद है, बच्चों को क्या पसंद है, हर एक का ध्यान रखती है और उसके अनुसार आप व्यंजन बनाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी ईमानदारी से अपने लिए सलाद काटा?
2: अपने अकेले के लिए कभी खाना बनाया?
0: नहीं, अमूमन नहीं होता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ये पहले तो यहां से शुरू हो जाए कि आपको अपना स्वयं का ध्यान रखना है। आपने जिम की बात कही है, तो ममता जी मैं इसको यहां से शुरू करती हूं कि लगभग 13-14 साल पूर्व मुझे अस्थमा था, और पुराने लोग यह कहते पाए जाते हैं कि दमा जो है वो दम के साथ जाता है। अस्थमा यानी दमा, सांस की बीमारी, तो कहते हैं कि दमा दम के साथ जाता है। मैंने भी सुना ये कि, तो मुझे एक मन में चीज लगी कि अरे ये मुझे बहुत ही गंभीर बीमारी है
2: जी।
0: और मुझे इससे अब बचना है। यहां तक कि मैं स्टेराइड्स पर थी,
2: जी।
0: तब मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मैं चूंकि खिलाड़ी रही हूं, एनसीसी की कैडेट रही हूं
2: बैडमिंटन खिलाड़ी।
0: और बैडमिंटन खिलाड़ी रही हूं, तो मुझे लगता है कि अपने फिजिकल जो फिटनेस है वो आपको

0: बहुत सारी चीज़ों से बचाती है।
1: जी
0: तो उस वक्त जब मैंने जिम ज्वाइन किया, और धीरे धीरे देखिए अभी क्या होता है, मैं कई लोग मेरे वीडियोस देखते हैं तो उनको लगता है कि अरे डेडलिफ्ट है 40 किलो का, या बेंच प्रेस है 25 किलो का डंबल का, तो उनको लगता है कि बड़ा अच्छा है ये तो। लेकिन कैसे होता है कि आपको ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से चीजें आती हैं। आप एकदम से आप 50 किलो का या 40 किलो का या 25 किलो का डंबल नहीं उठा सकते हो। तो जब मैंने इसकी शुरुआत की तब मैंने 2.5 किलो के डंबल से शुरू किया, 5 किलो से शुरू किया। तो जब जब मैंने जिम जाना शुरू किया, जब मुझे लगा कि नहीं सेहत के प्रति हमको जागरूकता चाहिए, तो मैंने महसूस किया कि धीरे धीरे मैं स्ट्रांग होती जा रही हूँ। तो जब आप भीतर से भी स्ट्रांग होते हैं तो आपको बीमारियां फिर थोड़ी सी आपसे दूर भागती हैं, बीमारियां आपसे डरने लगती हैं। ये मैंने जिम शुरू किया, और जब सिक्किम में हम गए पहाड़ी क्षेत्र में, तो वहां से आकर के मैंने जितनी स्टेरॉइड्स थी वो पैक की हुई थी, और वो मैंने घर आके डस्टबिन में डाल दी। मुझे उसके बाद स्टेरॉइड्स नहीं लेना पड़ी। तो एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि आपका शरीर मजबूत होता है, आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, तो बीमारियों पर आप इस तरह से विजय प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी
0: और तब मैंने एक कहानी लिखी फतेह, इसी
1: जी
0: थीम को
1: जी
0: लेकर के तब मैंने कहानी लिखी। दूसरी चीज ये हो गई है कि डाइट का आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप जल्दी छोटी उम्र से शुरू कर दें, यानी महिलाएं अगर 30 बरस से भी शुरू कर दें तो भी बहुत अच्छा है, और बड़ी उम्र से शुरू करें तो भी, बोलते हैं ना कि अभी समय नहीं बीता है, जब जागे तभी सवेरा। तो प्रोटीन को अपनी डाइट में शामिल कीजिए।
1: जी
0: प्रोटीन यानी, और मैं ये नहीं कहती कि प्रोटीन पाउडर लीजिए, मैंने कभी प्रोटीन पाउडर नहीं लिया,
1: बिल्कुल
0: लेकिन पनीर है, स्प्राउट्स है, मूंग मोठ चना चवला तो महिलाएं अपने किचन में रोज गलाएं खाएं, और छाछ लें, सत्तू लें, सत्तू तो आदिकाल से चला आ रहा है हमारे यहाँ पे, हाई प्रोटीन है उसमें। तो अपनी डाइट का अपने को ध्यान रखना चाहिए।
1: जी
0: मैं ये भी नहीं कहती कि आप कचौरी समोसे ना खाओ, सैंडविच ना खाओ, खाएं कभी कभी, लेकिन आपके पेट में क्या जा रहा है उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
1: तो ये तो डाइट की बात हो गई, और हमने एक वीडियो देखा था जिसमें आप बहुत बड़ा डंबल उठा के और झुकी हुई हैं, ऊपर नीचे कर रही हैं, और एक में देखा कि आप टायर उठा उठा के फेंक रही हैं। तो ये कितने समय बाद ये शक्ति आपके भीतर पैदा हुई?
0: मेरे ख्याल से डेडलिफ्ट तो मैंने थोड़े टाइम बाद शुरू कर दिया था, लेकिन शुरू में जब हम डेडलिफ्ट करते हैं तो 20 केजी का बार होता है, 20 किलो का बार। तो पहले खाली बार से शुरू किया, फिर उसमें 5-5 किलो के चक्के डाले, पहिए जैसे होते हैं वो डाले, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता गया।
1: ओ
0: तो वही कि आप एक झटके से नहीं कर सकते। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप जिम जाते हैं तो वहां हर जिम में, या तो आप कुछ ऐसा स्तरीय जिम ढूंढें, जिम में ट्रेनर जो होते हैं वहां, जो भी हैं जो आपको अटेंड करते हैं, वो पहले पूछते हैं आपकी कोई सर्जरी हुई है, आप उसको सब सच सच बताइए,
1: जी
0: है
1: जी
0: ना। फिर वो पूछते हैं आपकी कहीं कोई इंजरी तो नहीं है, वो आप बताइए, आपको बैक पेन तो नहीं है वो बताइए, नी पेन तो नहीं है वो बताइए। मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मुझे एक घुटने में मेरे बहुत सालों पहले पस हो गया था, और उसकी एक छोटी सी सर्जरी हुई और करीब 2.5 महीने तक वो प्लास्टर रहा। तब मैं घुटना नहीं मोड़ पाती थी, मुझे नीचे बैठना मना था क्योंकि मैं नहीं बैठ पाती थी। लेकिन फिर जब जिम शुरू किया तो स्क्वाट्स लगाए तो मैं नहीं लगा पाती थी, लेकिन ट्रेनर के देखरेख में धीरे धीरे स्क्वाट्स लगाना शुरू किया, और आज मैं बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। तो कोई भी चीज को आप निरंतर अभ्यास से करेंगे और धीरे धीरे एक एक सीढ़ी को ऊपर चढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आप जिस जगह में हूं आप भी उस जगह पर आ सकते हैं।
1: बिल्कुल। और एक लेखक को तो हाथ की तकलीफ अमूमन हो जाती है,
0: होती है
1: क्योंकि वो नियमित रूप से
0: गर्दन की
1: थोड़ा,
0: होती है,
1: हाँ,
0: गर्दन की
1: गर्दन की,
0: होती
1: हाथ
0: है।
1: की।
0: तो मैं भी जब लिखती हूँ, मैं अभी भी कागज कलम पे लिखना ज्यादा पसंद करती हूँ। मैं अभी

0: कंप्यूटर युग में है, पर मैं कंप्यूटर वाली अभी भी नहीं हूँ। मुझे लिखने के लिए कागज और कलम ही चाहिए, तो मैं लिखती हूँ। कई बार लंबा भी लिखना पड़ता है, लेकिन बीच में आप थोड़ा सा गर्दन को चारों तरफ घुमा लीजिए और फिर लिखना शुरू कीजिए। जब आप अभ्यास में, आप शारीरिक रूप से आप मजबूत हैं, तो फिर ये छोटी मोटी चीजें आपको परेशान नहीं करती हैं।
1: जी बिल्कुल, बहुत सही बात कही। और अब चल

0: बिल्कुल, बहुत सही बात कही। और अब चलते चलते हम हमारी तमाम सखियों को बताइए कि आपने तो अपनी जिंदगी के साथ बहुत सारे समझौते किए, समझौता कहें या अपनी चॉइस पर, अपनी शर्त पर आपने छोड़ी, कैजुअल अनाउंसर रही, फिर आकाशवाणी में अनाउंसर बनी,
1: जी
0: वो आपने छोड़ा परिवार के लिए, अपने प्रेम के तहत, और पायलट बनते बनते रह गई, रिटर्न में आप क्वालिफाई की। लेकिन सखियों से आप क्या कहेंगी कि आज के जमाने में उन्हें क्या करना चाहिए?
1: देखिए, जमाना बदला है ना। इस बदलाव को सभी लोगों ने स्वीकार किया है।
0: जी
1: एक जमाना था जब मैंने ये चीजें छोड़ी, लेकिन आज मैं मीडिया के बच्चों को हिंदी पढ़ा रही हूँ। और जमाना बदला है तो, और अब चीजें भी बदली हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आजकल लड़कियों को ये सब कुछ छोड़ के और करना पड़ता है। आजकल की जो बच्चियां हैं वो दोहरी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा लेती हैं, और मुझे लगता है कि अपने सपनों को जीवित रखें, उनको जीवित रखना बहुत जरूरी है। जिंदगी के प्रति जो अपना नजरिया है वो सकारात्मक रखें, तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं।
0: बिल्कुल।
1: मैं यहाँ एक चीज और कहूंगी कि
0: हाँ
1: हक तो है ही। देखिए, जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो वहां कर्तव्य भी जुड़े होते हैं,
0: बिल्कुल
1: तो कर्तव्यों के साथ अपने अधिकार को प्राप्त करें,
0: जी
1: इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता।
0: जी और इस समय बहुत बेहतर होगा कि एक गाना हम सुनवा दें अपनी सखियों को। कौन सा गाना?
1: मैं ना खूब मस्तीखोर हूं, मैं खुल के जीती हूँ, खुल के नाचती हूँ जब मौका मिलता
0: जी
1: है।
0: जी
1: मुझे नृत्य करना अच्छा लगता है। मैंने विधिवत नहीं सीखा है, पर जहाँ म्यूजिक होता है मेरे पैर अपने आप उठ जाते हैं।
0: थिरकने लगते
1: तो
0: हैं।
1: मुझे ना एक कॉलेज में मुझे एक टाइटल मिला था मेरे आचरण को देखते हुए, तो हम वही गाना सुनते हैं, और वो टाइटल था जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने
0: किसने
1: जाना,
0: जाना? सुनते
1: तो
0: हैं।
1: बस यही गाना सुनते हैं।

0: देखो, हमारी जो सखी ज्योति जैन है, उनकी ममता सिंह से जो बातचीत हुई वो हमने सुनी, और उन्होंने भी फिटनेस के बारे में काफ़ी कुछ बातें हमें बताई।
1: जी
0: और देखिए, हंसना, खिलखिलाना, नृत्य करना, गीत सुनना, ये भी फिटनेस के
1: बिल्कुल, ये
0: कुछ
1: भी
0: राज
1: फिटनेस में ही आता
0: हाँ,
1: है
0: तो ये उन्होंने हमें
1: जी।
0: बताया। चलिए, अब हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं कि अक्सर महिलाएं क्या करती हैं, पूरे परिवार का ध्यान रखती है, लेकिन जब बात अपनी सेहत की आती है तो उसे वो सबसे आखिर में रख देती हैं। जबकि सच ये होता है कि यदि महिला स्वस्थ और फिट होगी तभी परिवार की भी खुशहाल और स्वस्थ रहेगा
1: बिल्कुल,
0: ना।
1: और फिटनेस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम पतले दिखें। पतले दिखना ही फिटनेस नहीं होता है, फिटनेस का अर्थ होता है शरीर का स्वस्थ होना, मन का प्रसन्न होना और ऊर्जा से भरपूर जीवन जीना। और महिलाओं के लिए रोजाना 30 से लेकर 45 मिनट की जो शारीरिक गतिविधि होती है वो बहुत लाभदायक होती है
0: हाँ,
1: उसमें।
0: और बहुत सारी महिलाएं ये सोचती कि हम घर का काम करते हैं ना, तो उससे तो हमारे शरीर की हलचल हो जाती है, तो अब हमें और एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है। लेकिन जो एक्सरसाइज जो हम करते हैं, उसके जो पोस्चर होते हैं,
1: बिल्कुल।
0: वो हमारी सेहत के लिए, हमारे शरीर की बनावट के लिए वो काफी उपयोगी होते हैं। तो काम अपनी जगह बहुत अच्छी बात है,
1: जी
0: करना चाहिए, लेकिन कम से कम 30 मिनट के लिए हम थोड़ा सा व्यायाम करें, थोड़े आसन करें, तो
1: बिल्कुल,
0: वो भी हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं।
1: क्योंकि इतने काम के बीच में अगर हम अपने लिए 30 मिनट ना निकालें, ये तो अपने खुद के साथ नाइंसाफी हो
0: हाँ,
1: जाएगी।
0: लेकिन कई महिलाएं नहीं निकाल पाती,
1: जी
0: घर की व्यस्तता बहुत ज्यादा होती
1: जी
0: है, बड़ा परिवार होता है, दिन भर काम करते हैं, और उसके बाद में अगर वो अपने लिए समय निकालती है तो कई बार घर के लोग कहने भी लग जाते हैं कि अरे इतना काम पड़ा है कि तुम ये क्या करने लगी हो। तो कई महिलाओं के साथ इस तरह की परिस्थितियां भी होती हैं। खैर, लेकिन तेज कदमों से चलना, योग, प्राणायाम, साइकिल चलाना, नृत्य या हल्की एक्सरसाइज, इनमें से कोई भी गतिविधि नियमित रूप से अगर अपनाई जाए तो काफी अच्छा होता है, और संतुलित आहार भी फिटनेस की मजबूत नींव होता है।
1: बिल्कुल, और आप खाने में हरी सब्जियां ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, दालें हैं, दूध है, मोटे अनाज हैं, पर्याप्त पानी और प्रोटीन की जो भी चीजें हैं, जैसे कि बहुत से लोग जो नहीं खाते उस तरीके के, तो वो अंडे नहीं खाते हैं, तो वो पनीर खाएं, ज्यादा से ज्यादा पनीर ले सकते हैं, दूध की बनी चीजें ले सकते हैं, और ये जो जंक फूड होते हैं, वो जो बहुत ज्यादा मीठे चीजें होती हैं, उनको अपना लें तो ज्यादा बेहतर है।
0: हाँ, डिब्बाबंद जो भोजन आजकल बहुत प्रचलन में है,
1: जी
0: तो उसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी ले लें और उसके बाद ही उनका उपयोग करें। और हमारा तो सुझाव यही है कि उसकी बजाय आप घर में कोई भी चीज़
1: बिल्कुल,
0: बनाकर
1: क्योंकि हम
0: खाएं तो
1: छोटी सी भी चीज जो जंक फूड वाला लेते हैं ना, उसके ऊपर आप देखिए कितनी कैलोरी लिखी होती है ना, तो
0: बिल्कुल
1: उसमें हमें जितना चाहिए उसे कहीं कई गुना ज्यादा हम थोड़े से खाने में ही ले लेते हैं, तो उसको आप ना लें तो ज्यादा अच्छा है।
0: इसके अलावा मानसिक फिटनेस भी उतनी ही आवश्यक होती है। तनाव कम करने के लिए ध्यान, योग, अच्छी नींद लेना, संगीत सुनना, किताबें पढ़ना और परिवार के साथ समय बिताना, ये बहुत मददगार साबित होते हैं इसमें।
1: बिल्कुल, और जीवन के अलग अलग चरण है, जैसे किशोरावस्था हो, या जो गर्भावस्था है, प्रसव के बाद का समय है, या रोजने वृत्ति का समय है, ये महिलाओं की शारीरिक इसमें जरूरतें जो होती हैं वो बदलती रहती हैं, इसलिए समय समय पर अपने स्वास्थ्य की जांच कराना और विशेषज्ञ की सलाह लेना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, ये जो रजोनिवृत्ति की तुमने बात की, तो उस समय भी महिलाओं को बहुत समस्याओं का
1: बिल्कुल
0: सामना करना पड़ता है उनको, जैसे हॉट फ्लशेस आना और बार बार मुंह सूखना, प्यास लगना, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं होती हैं उन्हें। तो घर के लोगों का भी तो ये कर्तव्य बनता है कि वो भी अगर ऐसी समस्या उनके साथ है तो थोड़ा उनका साथ दें और उनका ख्याल रखें। तो इस तरह से अब इन बातों का ख्याल रख के फिटनेस का ध्यान रखा जा सकता है। इसके
1: बिल्कुल
0: अलावा फिटनेस कोई विकल्प नहीं बल्कि स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर महिला स्वस्थ है तो ही वो अपने परिवार को स्वस्थ रख पाएगी और सशक्त समाज की वो पहचान भी होती है।
1: बिल्कुल
0: इसके लिए महिलाओं की फिटनेस पर बहुत अधिक ध्यान देना
1: बिल्कुल, अगर आप
0: जरूरी
1: जिम
0: है।
1: नहीं जा पा रही हैं, डंबल्स नहीं है आपके पास, तो आप 1-1 लीटर की जो बॉटल्स होती हैं है ना, उसके जरिए भी आप कर सकती हैं, डंबल्स का काम उससे ले सकती हैं, तो
0: बिल्कुल
1: आप घर में ही कुछ एक्सरसाइज हैं वो करेंगी ना, तो आपको फायदा दिखने लगेगा।
0: फिलहाल हम एक गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल।

0: ज्योति जी, बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी
0: आपका विविध भारती के स्टूडियो में आई और सखियों सहेलियों से इतनी उम्दा जानकारी वाली
1: जी
0: बातें की और इतनी इतनी प्रेरक बातें आपने साझा
1: जी
0: की।
1: जी बहुत
0: शुक्रिया
1: धन्यवाद ममता जी, आपका दिन शुभ हो और स्वस्थ हो।
0: शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
1: नमस्कार। तो आरती

0: शगुन फिल्म का ये गाना हमने सुना आरती, और अब कार्यक्रम में समय हो गया है एक अंतराल
1: अंतराल
0: का।
1: का।
2: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। आप सबका स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: झाड़ू जब तक एक सूत्र में बंधी होती है तब तक वह कचरा साफ करती है, लेकिन वही झाड़ू जब बिखर जाती है तो खुद कचरा हो जाती है। इसलिए हमेशा संगठित रहें और बिखर कर कचरा न बने।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद एकता और संगठित रहने का सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। श्रोताओं, हमें पहला संदेश मिला है कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: डॉक्टर कामिल बुल के 24 तारीख को सुने, बेल्जियम में जन्मे कैसे भारत को अपना कर्मभूमि बना लिया, रामचरितमानस पर शोध किया और कामिल बुलके से कामिल बुलके बाबा बन गए। बहुत अच्छा लगा इतनी अच्छी जानकारी और प्रस्तुति के लिए। उमंग टीम को बहुत बहुत बधाई।
1: और अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर का।
2: भवानीगढ़ संगरूर पंजाब से परमिंदर सिंह रंधावा, लखनपाल रंधावा और सुरेंद्र कौर रंधावा जी का।
1: और गणेशवाड़ी कोल्हापुर महाराष्ट्र से संभाजी सुतार, चेतन सुतार और सारिका सुतार जी का।
2: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए के अंतर्गत आज की कड़ी। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं भारत के अनूठे मेलों की।
2: ऐसे मेलों

0: उनकी जो प्रयास है समुदायों को उनकी संस्कृति से जोड़ने का, इनके बारे में लोगों को अधिक पता नहीं है, लेकिन वे अपने आप में सचमुच अद्भुत हैं, जीवंत हैं और प्रेरणा देने वाले भी। तो कल हमने चर्चा की थी असम राज्य के जॉनबील मेले की, जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का आज भी प्रचलन है।
1: आज हम चलेंगे एक और सुंदर और मनोरम उत्तर पूर्वी भारत के पर्वतीय राज्य नागालैंड और जानेंगे एक और मेले के बारे में। इसे हॉर्नबिल मेले के नाम से जाना जाता है। तो विमलेश जी, अब चर्चा को आगे बढ़ाइए।
0: जी जी जी श्रोताओं, हॉर्नबिल महोत्सव या मेला नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक मेला है। इसे त्योहारों का त्योहार यानी फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। अजीत जी, आप जानते हैं कि ये कब मनाया जाता है?
1: जी विमलेश जी, हॉर्नबिल मेला हर साल 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है।
0: जी,
1: ये कोहिमा के पास किसामा हेरिटेज विलेज में आयोजित किया जाता है।
0: हुँ.
1: लेकिन विमलेश जी, एक स्वाभाविक प्रश्न मेरे मन में आता है और वो ये है कि इस उत्सव या मेले का नाम हॉर्नबिल क्यों पड़ा?
0: अजीत जी, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है आपने।
1: जी,
0: इसका जवाब भी उतना ही सुंदर है। हॉर्नबिल एक पक्षी है जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये जबरदस्त उड़ान भर सकता है। इसके पंख इतने शक्तिशाली होते हैं कि जब ये उड़ता है तो उसके पंखों की फू फू जैसी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है।
1: जी विमलेश जी, पूर्वोत्तर भारत में विशेषकर नागालैंड में इस पक्षी को यानी हॉर्नबिल पक्षी को साहस, सम्मान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।
0: जी, यही वजह है कि नगा परंपराओं में, विशेषकर सर के आभूषणों में, हॉर्नबिल पक्षी का प्रतिरूप अवश्य दिखाई देता है। आइए अब जानते हैं कि क्या होता है हॉर्नबिल मेले में।
1: श्रोताओं, इस मेले में रंग बिरंगे पारंपरिक नृत्य देखने को मिलते हैं।
0: जी,
1: जिनमें सबसे लोकप्रिय और आकर्षक है युद्ध नृत्य।
0: जी,
1: युद्ध नृत्य में पुरुष योद्धा पारंपरिक हथियार लेकर नृत्य करते हैं। तेज ड्रम की ताल, वॉर क्राई और तालबद्ध पैरों की गति के साथ ये नृत्य होता है।
0: जी
1: विमलेश जी, एक बहुत विशेष बात तो हम भूल ही गए थे। ये तो बता दें कि इस मेले के दौरान एक बड़ी खास प्रदर्शनी होती है।
0: जी,
1: जिसे मोरुंग कहते हैं।
0: जी,
1: ये मोरुंग होता क्या है?
0: अजीत जी, मोरुंग नागालैंड की जनजातियों का युवा आवास हुआ करता था। ये बांस और लकड़ी से बना हुआ बड़ा सामुदायिक भवन होता था।
1: जी, प्रत्येक गांव में कम से कम एक मोरुंग अवश्य होता था। वहाँ जनजातीय इतिहास, युद्ध कौशल, वाद्य संगीत और लकड़ी के हस्त कौशल सिखाए जाते थे।
0: जी, यहाँ हस्तशिल्प, हैंडलूम यानी हस्तकरघा, स्थानीय व्यंजन इत्यादि प्रचुरता से मिलते हैं।
1: श्रोताओं, ये उत्सव नागालैंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रदर्शन है।
0: जी,
1: यहाँ आकर लोग असली नागा जनजातीय जीवन, आतिथ्य और उनकी परंपराओं की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी नागालैंड के बेहद खास मेले हॉर्नबिल उत्सव की।
0: जी,
1: कभी नागालैंड जाएं तो इस मेले का आनंद जरूर लें।
0: जी,
1: तो अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
0: मोरुंग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मोरुंग किसे कहते हैं? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उत्तर व संदेश हमें भेज सकते हैं। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है सुंदरिया।
0: कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक प्यारी गाय सुंदरिया की कहानी बताई गई है और उसके माध्यम से बच्चों को संदेश दिया गया है कि पशुओं में भी भावनाएं और संवेदनाएं होती हैं।
2: एक समय की बात है, हरियाणा के एक गांव में एक किसान रहता था। नाम था हीरा सिंह। निर्धनता के कारण बड़ी मुश्किल से उसके परिवार का गुजारा चलता था। उसके पास एक गाय थी, नाम था सुंदरिया। उस गाय के कारण हीरा सिंह से गांव वालों को बड़ी ईर्ष्या होती थी। निर्धनता का ये हाल था कि हीरा सिंह सुंदरिया के लिए चारा भी नहीं जुटा पाता था। वो भी गाय को बहुत प्यार करता था। वो चाहता था कि किसी प्रकार गाय को अच्छा चारा मिल सके, लेकिन तंगी पीछा नहीं छोड़ती थी। इसलिए कई बार उसके मन में एक विचार आया।
3: अब तो सुंदरिया को पालना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। कहां से आएगा उसके लिए चारा? यहां तो परिवार के खाने के लाले पड़े हुए हैं। सोचता हूं उसे किसी धनी किसान को बेच दूं, कम से कम अच्छा चारा तो मिलेगा उसे।
2: लेकिन हीरा सिंह अपने बड़े बेटे जवाहर सिंह से।

0: करता था क्योंकि उसे सुंदरिया गाय से बहुत लगाव था। जवाहर सिंह सुंदरिया को प्यार से मौसी बुलाता था। समय बीतता गया और आखिर परिवार की दरिद्रता समाप्त करने के लिए हीरा सिंह नौकरी की तलाश में दिल्ली आ गया। वहाँ एक सेठ के यहाँ उसे चौकीदार की नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ ने कहा,
1: हीरा सिंह, शहर में आजकल दूध की बड़ी किल्लत हो रही है।
2: जी मालिक, ये बात तो है।
1: पता नहीं जो दूध तुम दुकानों से लाते हो वो ठीक भी है या नहीं, बहुत मिलावट चल रही है। तुम तो हरियाणा के हो, सुना है वहाँ की गायें बड़ी अच्छी और दुधारू होती हैं। एक काम करो, तुम हमारे लिए किसी अच्छी गाय का प्रबंध कर दो।
2: जी मालिक, कोशिश करता हूँ। वैसे एक गाय है मेरी निगाह में।
1: अच्छा,
2: ऐसी कि साक्षात कामधेनु, दूध भी 15 शेर से ज्यादा ही उतरता है और उसके 200 रुपए तक लग चुके हैं।
1: भाई इतनी अच्छी गाय है तो 10 रुपए अधिक हम दे देंगे। ये लो 100 रुपए, बाकी तुम्हारे आने पर मिल जाएंगे।
2: जी मालिक।
0: दरअसल हीरा सिंह के मन में उसकी प्यारी गाय सुंदरिया ही थी। सोचने लगा, यहाँ आएगी तो अच्छा चारा भी मिलेगा और मैं उसकी सेवा भी कर लूंगा। हीरा सिंह उसी दिन गांव चला गया। जैसे तैसे अपने बेटे जवाहर को समझाया और गाय लेकर दिल्ली आ गया। सेठ जी ने गाय को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। ऐसी स्वस्थ सुंदर गाय उन्होंने पहले न देखी थी। दूसरे दिन सेठ जी ने पास के एक ग्वाले को बुलाया और गाय उसके सुपुर्द कर दी। हीरा सिंह का दिल भरा जा रहा था। उसने सेठ जी से कहा,
2: सेठ जी, गाय की नौकरी पर मुझे ही लगा दीजिए, चाहे पगार कम ही दीजिए।
1: ये नहीं हो सकता हीरा सिंह। भाई हमें तुम जैसा दूसरा ईमानदार और मेहनती चौकीदार कहाँ मिलेगा? तुम्हें तो यहीं ड्योढ़ी पर ही रहना होगा।
0: ग्वाले ने सुंदरिया को ले जाने के लिए पूरा जोर लगा दिया, लेकिन गाय टस से मस नहीं हुई। अपनी भोली आंखों से वो हीरा सिंह को ही देख रही थी, मानो कह रही थी, तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। हीरा सिंह ने गाय को थपथपाया, पुचकारा और बोल उठा,
2: मेरी प्यारी सुंदरिया, अब चली जाओ ना, मैं यही तो हूँ तुम्हारे पास। तुम चिंता ना करो, अरे मैं तुम्हें देखने आता रहूंगा, मेरी प्यारी सुंदरिया।
0: अनमने मन से सुंदरिया चल दी। लेकिन अगले ही दिन कुछ विचित्र हुआ। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाया।
1: हीरा सिंह, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? आज गाय का 5 शेर दूध भी नहीं उतरा। तुम तो कहते थे कि 15 शेर से भी ज्यादा दूध मिलेगा।
2: सेठ जी, कल ही तो मैंने पूरा 15 शेर दूध दुहकर आपको दिया था, भला मैं झूठ क्यों बोलने लगा?
1: ये बात तो है, लगता है कुछ गड़बड़ है। चलो कल फिर देखते हैं।
2: जी सेठ जी।
0: लेकिन दूसरे दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सेठ जी को गुस्सा आ गया, बोले,
1: हीरा सिंह, तुमने सचमुच मुझे धोखा दिया है। गाय को ले जाओ और मेरे पैसे वापस करो।
2: लेकिन मालिक, पैसे तो मैं गांव भेज चुका हूँ और उसमें से काफी मकान की मरम्मत में खर्च हो गए, अब पैसे कहाँ से लौटाऊं?
1: तो ठीक है, पैसा मैं तुम्हारी पगार से काट लूंगा।
0: अब रोज रोज यही शिकायत आने लगी। कभी गाय दूध बहुत कम देती, कभी चारे को मुंह तक नहीं लगाती। हाँ, एक बात जरूर थी, जब हीरा सिंह उसे देखने जाता तो बहुत प्रसन्न हो जाती और चारा भी खा लेती। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हीरा सिंह को निहारती रहती, मानो कह रही हो, मुझे वहाँ क्यों भेज दिया।

0: एक रात की बात है, हीरा सिंह अपने कमरे में सो रहा था कि तभी
1: सुंदरिया तुम मेरी प्यारी सुंदरिया।
0: वो अपराधी भाव से उसे देख रही थी, मानो कह रही हो क्षमा करना, मेरा वहां मन नहीं लगा, इसलिए रस्सी तोड़ कर आई हूँ, मुझे तो तुम्हारे संग ही रहना है। उस मूक गाय की आंखों में वेदना थी। हीरा सिंह भाव विभोर हो उठा। वो सुंदरिया के गले से लिपट कर देर तक सिसकता रहा।
1: अब तू कहीं नहीं जाएगी, हम कहाँ चलेंगे? मैं अपराधी हूं कि मैंने तुम्हें बेच दिया, लेकिन सुंदरिया वो तो तुम्हारे भले के लिए ही तो था। लेकिन अब हम साथ रहेंगे। हाँ, मैं तुम्हें कभी अपने से अलग नहीं करूंगा। मैं सुबह ही सेठ जी से बात करूंगा।
2: आओ हीरा सिंह, कुछ बात बनी? गाय कैसी?
1: सेठ जी, मैं गाय को आज ही गांव ले जाऊंगा।
2: लेकिन उसके लिए जो पैसे तुमने लिए हैं उनका क्या होगा?
1: सेठ जी, मैं उसे चुकाने के लिए मुफ्त में आपकी चाकरी करने के लिए तैयार हूँ। रुपए जब चुकता हो जाएं तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं भी छुट्टी कर लूंगा। सुंदरिया का दुख मुझसे नहीं देखा जाता सेठ जी।
0: इतना कहकर उसने गाय की डोर थाम ली और कहा,
1: सेठ जी, गाय को गांव छोड़कर मैं आपकी सेवा में फिर आ जाऊंगा और रुपए वसूल होने तक मैं आपके यहाँ काम करूंगा। नमस्ते।
0: हीरा सिंह ने गाय को पुचकारा, थपथपाया और चलने लगा। सेठ जी का मन भी भर आया था, कहने लगे,
2: हीरा सिंह, इस प्यारी गैया के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुमसे यहाँ मुफ्त में काम करवा कर क्या मुझे पाप नहीं लगेगा? मान लो कि मेरे रुपए भी वसूल हो गए। जाओ हीरा सिंह, जाओ।
1: जी सेठ जी।
2: खुशी से जाओ हीरा सिंह, और हाँ, सुंदरिया का खूब ख्याल रखना, और जब कभी भी समय मिले हमसे मिलने जरूर आना।
1: धन्यवाद सेठ जी।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुंदरिया। आशा है कि आपको जरूर ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है मेरा प्यारा दोस्त।
4: नमस्कार श्रोताओ, प्रेरक कहानियों की श्रृंखला में आपका स्वागत है।
5: ये कहानी है पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य मेघालय की। लेकिन कहानी सुनने से पहले आइए लेते हैं मेघालय राज्य की थोड़ी जानकारी। मेघालय शब्द दो शब्दों के मेल या संधि से बना है, मेघ और आलय।
4: मेघ यानी बादल और आलय यानी घर, तो मेघालय का अर्थ हुआ बादलों का घर। साथियों, प्राकृतिक सुंदरता में मेघालय का कोई सानी नहीं है।
5: जी हाँ साथियों, यहाँ जब तब अनायास ही उमड़ते बादल, ऊंचे ऊंचे पर्वत, कल कल करती नदियाँ और हरे भरे जंगल पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। गारो, खासी और जयंतिया यहाँ की मुख्य जनजातियाँ हैं।
4: मेघालय की राजधानी है शिलांग। ये कहानी शिलांग की है।

0: यूजीन लगभग 15 वर्ष का एक किशोर है। आज शिलोंग शहर के पुराने बाजार में यूजीन चला जा रहा था। उसकी आंखें लगातार दुकानों के साइन बोर्ड्स पर ही टिक रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई खास दुकान खोज रहा हो।
1: यहीं कहीं तो थी वो दुकान, कहाँ है वो? अब ये तो रही वो फूल वालों की दुकान, उसके बाद हाँ वो रही।
0: उसे वो दुकान मिल गई थी। साइन बोर्ड पर एक बिल्ली की सुंदर सी तस्वीर थी और उसके नीचे लिखा था पपीज फॉर सेल।
2: यूजीन को कुत्तों से बहुत लगाव था। उसकी बहुत इच्छा थी कि वो भी एक प्यारा सा कुत्ता पाले जो उसका दोस्त बन सके और उसके साथ खेल सके।
0: बात वास्तव में ये थी कि स्कूल में सहपाठी यूजीन के साथ रहने और खेलने से थोड़ा कतराते थे।
2: कुछ सोचकर वो दुकान में दाखिल हुआ।
1: हाँ, यहाँ से अंदर चलता हूँ। अरे वाह, कितनी सुंदर दुकान है और ले प्यारे प्यारे पपीज भी हैं। आजा आजा।
0: उसने कई बार अपने घर में कहा था कि वो एक प्यारा सा पिल्ला पालना चाहता है, लेकिन उसकी सुनी नहीं गई थी। किसी पशु को पालना काफी जिम्मेदारी का काम होता है। एक पिल्ले को पालने के लिए यूजीन के माता पिता तैयार नहीं थे।
2: लेकिन अब यूजीन बड़ा हो गया है, अब वो खुद पिल्ले का ध्यान रख सकता है, इसीलिए आखिरकार वो मान ही गए। और आज
0: यूजीन पिल्ला खरीद सकता है अपनी पसंद का। यूजीन सीधा काउंटर पर दुकानदार के पास चला गया और बोला,
1: नमस्ते मैडम।
3: नमस्ते बेटा।
1: मेरा नाम यूजीन है, मैं एक पिल्ला खरीदना चाहता हूँ। क्या आप मुझे उसका दाम बताएंगी?
3: देखो बेटा यूजीन, हमारे पास तो ढेर सारे पपीज हैं, सभी नस्ल के।
1: ओह।
3: लेकिन बेटा ये बताओ, क्या तुम सच में खरीदना चाहते हो?
1: जी बिल्कुल, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं?
3: बेटा बात ये है कि तुम्हारे साथ कोई बड़ा तो है नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बस देखो और चले जाओ?
1: नहीं,
3: क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं, देखने की जिद करते हैं, सारे बिल्ले देखते हैं और अंत में लिए बिना ही चले जाते हैं। इससे हमारा समय बर्बाद होता है ना, तो।
1: नहीं ऐसा नहीं है, मैं उन बच्चों की तरह नहीं हूँ, मैं सच में खरीदूंगा, आप उनके दाम बताइए तो सही।
3: यूजीन देखो बेटा, सबसे कम दाम के हमारे पास लगभग 2000 रुपए के पिल्ले हैं, फिर 3000 और ऐसे ही। मेरा मतलब नस्ल के हिसाब से और भी महंगे हैं।
1: अच्छा,
3: क्या तुम इतना पैसा दे पाओगे?
1: ओहो, अभी इस समय तो मेरे पास 1500 रुपए ही हैं। अब ये तो मैं आपको अभी तुरंत दे सकता हूँ, बाकी पैसे आपको कल दे सकता हूँ। मैं पापा से बात कर चुका हूँ, वो मुझे मेरी पसंद का पिल्ला लेने के लिए कह रहे थे, आप मुझसे कल तक ले लीजिए।
3: बेटा ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना, समझो मेरी बात। वो क्या है कि अगर अभी तुम्हें पपी चाहिए तो तुम्हें पूरा पैसा भी अभी ही चुकाना होगा, समझे ना?
1: ठीक है मैडम, पर आप मुझे पपी दिखाइए तो सही, मैं आपको इसका मूल्य चुका दूंगा आज ही शाम तक। अब आया हूँ तो पसंद करके ही जाऊंगा, अभी 1500 दूंगा और जब बाकी पैसे लाऊंगा तब मैं आपसे पिल्ला ले लूंगा।
3: ठीक है। शेल्बिलिन, शेल्बिलिन, अरे कहाँ हो भाई?
4: हाँ जी बताइए।
3: देखो सारे पपीज ले आओ, ग्राहक कब

0: ही खड़े हैं, ध्यान रखा करो।
1: हाँ हाँ अभी लाता है, बस एक मिनट।
2: थोड़ी ही देर में सामने एक छोटा सा दरवाजा खुला और 5-6 प्यारे प्यारे पिल्ले कूं कूं करते हुए सामने आए। वो ऐसे लग रहे थे मानो ऊन के गोले हों। सब के सब बहुत ही प्यारे लग रहे थे।
3: यूजीन ने देखा कि उनमें एक पिल्ला था जो उछल कूद नहीं मचा रहा था। उसके सामने के दोनों पांव तो काम कर रहे थे, लेकिन पीछे के दोनों पांव घिसट रहे थे। वो धीरे धीरे घिसटता हुआ सबसे पीछे पीछे आ रहा था।
0: अरे शेल्बिलिन, तुमसे कितनी बार कहा है इसे मत लाया करो। तुम्हें ये छोटी सी बात समझ नहीं आती क्या? तुम फिर से इस पिल्ले को ले आए, हटाओ इसे।
1: ये तो बहुत शैतान है, पीछे पीछे आ ही जाता है। अभी ले जाता हूँ इसे, चलो शाबाश वापस चलो।
4: एक मिनट, अब इसे क्या हुआ? ये ऐसे क्यों चल रहा है? आजा आजा इधर आ।
0: ये जन्म से ऐसा ही पैदा हुआ है, सही होता तो इसकी बहुत कीमत होती, अब तो बोझ ही है हमारे लिए।
4: मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, कितनी कीमत होगी इसकी?
0: हैं? अच्छा समझ गई बेटा, समझ गई, मुझसे मजाक कर रहे हो ना? अरे ये देखो, ये वाला कितना सुंदर है। महंगा तो है लेकिन दूर दूर से लोग आते हैं इस वाले पिल्ले को खरीदने के लिए।
4: नहीं ये नहीं चाहिए मुझे। वो वाला कितने का है?
0: अरे बेटा कैसी बातें करते हो, ये बेकार है। अरे बिन पैर का पिल्ला, बहुत से लोग आते हैं इस दुकान में, हम तो इसे छुपाई देते हैं।
4: क्या?
0: वैसे भी ये भला किस काम का, कौन खरीदेगा इसे?
4: मैडम
5: 100.4 FM आकाशवाणी बरेली सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। और बहुत
4: अब ये मेरा हुआ, मेरा दोस्त हैरा, हैरा मेरा दोस्त, तू यूजीन का दोस्त, तुम्हें शाम तक ले जाऊंगा दोस्त।
3: देखो बेटा, मैं तुम्हारी भावनाओं और जानवरों के लिए तुम्हारे इस प्यार का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन बेटा क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुमने इस पपी में ऐसा क्या देखा कि तुमने इसको ही चुना, वो भी इतनी कीमत देकर? आखिर क्यों बेटा?
4: आप पूछते हैं क्यों? ये देखिए मैडम, ये देखिए।
2: यूजीन नीचे झुका और उसने धीरे धीरे अपनी पैंट ऊपर उठाई। दुकानदार ने देखा यूजीन का बायां पांव घुटने से कटा हुआ था, नीचे का आधा पैर कृत्रिम था, वहां धातु का पांव लगा हुआ था जिसके सहारे वो थोड़ा मुश्किल से लेकिन बिना सहारे के चल सकता था।
3: अरे बेटा ये
4: जी मैडम, आधा पैर नहीं है मेरा, आप बताएं मेरी क्या कीमत है आप जैसे लोगों के बीच? मैं भी इस पपी की तरह कूद नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, तो हो गया ना मैं भी बेकार बोझ।
3: अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें करते हो, वो तो मैं
4: भी मौका मिलते ही सबसे खुलना मिलना चाहता हूँ, लेकिन शायद मेरी ये कटी टांग ने मुझे सबके बराबर नहीं होने दिया। और 5 साल की उम्र से जानता हूँ मेरे साथ कोई नहीं खेलता, ये सब मैं जानता हूँ, ये सब मुझे पता है
3: बेटा।
4: इसलिए मुझे लगता है कि ये पपी मुझे मेरी कटी टांग से नहीं पहचानेगा, मुझे मेरी दोस्ती और मेरे प्यार से पहचानेगा। मैं नहीं चाहता ये अभी

0: मेरी तरह आजादी को, प्यार को तरसे। आज से, अभी से ये मेरा हुआ। आजा मेरा दोस्त, आजा।
1: यूजीन बेटा, इस पपी को तुमसे बेहतर भला कौन समझेगा? और शायद ये किसी और के साथ उतना प्यार भी ना पा सके जो इसका अधिकार है। इसे तुम्हें सौंपकर मैं भी निश्चिंत रहूंगी। ये लो, ये अब तुम्हारा हुआ। लो।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरा प्यारा दोस्त, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज पर, और स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 4 बजने को हैं। और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ।

0: जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 FM और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। 100.4 FM आकाशवाणी बरेली सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में। दोस्तों, खुली हवा हम सबको पसंद है और खुली हवा में जो आनंद आता है वो कहीं नहीं आता है। और पहले का अगर हम वो जमाना याद करें जब हम खुली हवा में अपने घर की छत पर या आंगन में या खेत पर चारपाई डालकर लेटते थे और उसमें जो हमें नींद आती थी उसका आनंद अलग ही होता था और उस आनंद का कहना ही क्या। तो आज का विषय भी हमारा इसी से जुड़ा हुआ है कि बंद कमरों में आपको सुकून की नींद आती है या खुले आसमान के नीचे। तो देखते हैं हमारे श्रोताओं का क्या विचार है। तो पहली कॉल किसकी लगी है, आइए बात करते हैं। आपकी बात आकाशवाणी के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। कौन कहां से बोल रहे हैं?
1: जी नमस्कार, मैं लाल मोहम्मद अंसारी, ग्राम करेली, पुरानी मस्जिद करेली से बोल रहा हूं।
0: स्वागत है आपका कार्यक्रम में, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया हैं सर, आप बताएं आप कैसे हो?
0: मैं बहुत अच्छा हूं। तो ये बताइए कि बंद कमरे में आपको जो है सुकून की नींद आती है या खुली हवा में आसमान के नीचे आपको अच्छी नींद आती है?
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया इतना अच्छा विषय रखने के लिए, क्योंकि मैं अपनी बात करूं तो मुझे सर बंद कमरे में बहुत अच्छी नींद आती है, जहां पर सुकून होता है, शोर शराबा नहीं होता है।
0: जी
1: मान लीजिए रात के समय अंधेरा होता है तो नींद बहुत अच्छी आती है, क्योंकि कुछ लोग जो है खुले आसमान के लिए सोते जरूर है लेकिन खुले आसमान के नीचे मान लीजिए उबस भी पड़ती है, कीड़े भी काटते हैं, मच्छर भी काटते हैं, तो सर मुझे तो खुले आसमान के नीचे नींद नहीं आती है, मैं तो बंद कमरे में सोना पसंद करता हूँ और मुझे कहीं पे बहुत अच्छी और खूबसूरत नींद आती है।
0: जी तो कौन सा गीत आज आप प्रोग्राम में सुनेंगे?
1: ये गाना सुना दीजिए, फिल्म का नाम है हमारा खानदान।

0: आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बरेली से तराना अंसारी बात कर रही हूँ।
0: स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तो
1: थैंक यू
0: ये
1: सर।
0: बताइए कि खुले आसमान के नीचे सोना आपको अच्छा लगता है या बंद कमरे में?
1: सर हमें तो बंद कमरे में सही लगता है सोना।
0: खुले आसमान में, खुली हवा के में आसमान देखते हुए अच्छा नहीं लगता?
1: वो भी अच्छा लगता है सर, थोड़ी सेहत के लिए हवा भी खाना जरूरी है बाहर भी, मगर नींद तो सुकून की हमें बंद कमरे में ही सही आती है।
0: जी, तो कौन सा गीत प्रोग्राम में आज आप सुनेंगी?
1: सर फिल्म का नाम है साजन का घर और गाने के बोल हैं सावन आया बादल छा।

0: आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: आपका शुभ चिंतक बाहुबली छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से संवाद कर रहा हूँ।
0: स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या करते हैं आप?
1: मैं तो भी रिटायर हूँ, 84 साल चालू है
0: जी।
1: और बचपन से थोड़ा सा संगीत और आकाशवाणी के प्रति आकर्षण होने के वजह से
0: जी
1: आज तक वो शौक मेरा मुकर्रर है भाई साहब।
0: बहुत अच्छा है। तो ये बताइए कि बंद कमरे में आपको सुकून की नींद आती है या खुले आसमान के नीचे?
1: ये तो जो ऋतु मान के ऊपर निर्भर रहता है, तो काले में मैं खुली हे खुले तो छत के ऊपर अपने टेरेस के ऊपर खुले आसमान के नीचे सोकर
0: जी
1: और शांति की नींद आती है भैया जी।
0: जी पहले एक जमाना था, हम लोग खुले में ही सोना पसंद करते थे, ज्यादातर हम लोग घरों की छत पर लेटते थे, आंगन में लेटते थे, या जो लोग किसान लोग हैं वो अपने खेत पे लेटकर फसल की रखवाली करते थे। तो एक वो दौर था, और आज के दौर में हम लोग जो है कमरों में सोते हैं। तो कौन सा आपको बेहतर लगता है, यही हम जानना चाह रहे थे।
1: ये खुली हवा में सोना तो मैं ज्यादा अधिकतर पसंद करूंगा
0: जी,
1: क्योंकि खुली हवा में प्राण वायु जो ऑक्सीजन होता है
0: जी,
1: उसका बोले तो हमें पूरे पूर फायदा होता है। और एक नेचुरल जो प्राकृतिक जो हवाएं रहती है उसमें सुखद नींद आती है। मगर बंद कमरों में क्या रहता है भाई साहब की हवा का बोले तो आना जाना थोड़ा सा बोले तो सीमित रहता है
0: जी,
1: उससे अस्वस्थता और नींद में खलल।
0: तो कौन सा गीत आज आप प्रोग्राम में सुनेंगे?
1: नींद न मुझ तो आए खोया प्यार जगाए,
0: ये कौन सी फिल्म का गीत आप सुनेंगे?
1: बॉक्स नंबर 999999।
0: तो हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत 100.4 FM आकाशवाणी बरेली।

0: आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: हम रेडियो से बात कर रहे हैं।
0: कौन बात कर रहे हैं?
1: वीरपाल यादव।
0: तो क्या करते हैं आप?
1: हम घर पर रहते हैं, से जाते हैं।
0: तो आकाशवाणी बरेली के कार्यक्रम आप सुनते हैं?
1: हम तो मोबाइल सुनते, रेडियो सुनते हैं।
0: तो कैसे लगते हैं कार्यक्रम आपको?
1: हमारे पूरे दिन 24 घंटा वैसे पास होता।
0: तो ये बताइए कि बंद कमरे में आपको अच्छी नींद आती है, सुकून की नींद आती है, या खुले आसमान के नीचे सोना अच्छा लगता है आपको?
1: अरे बाहर लेटे छत पर लेने से ताजी हवा मिलती है, चारों लड़की बातचीत मिलती है, कौन किधर क्या बता रहा, कौन किधर आया, कौन गया।
0: तो आकाशवाणी बरेली के कौन कौन से कार्यक्रम आप सुनते हैं?
1: मैं तो सवेरे को जी भजन कीर्तन आते हैं
0: जी,
1: और समाचार सुनता हूँ और किसान बाल सुनता हूँ।
0: तो कैसे लगते हैं कार्यक्रम, कुछ जानकारी मिलती है आपको?
1: पूरी जानकारी, ये तो जानकारी का तो रेडियो आकाशवाणी तो गुरु मानो।
0: तो कौन सा गीत प्रोग्राम में आज आप सुनेंगे?
1: हमें आज सुना दो धर्म काटे फिल्म का गाना सुना दो, वोटे जान लेगा।
0: हम आपको सुनवा रहे हैं धर्म काटा फिल्म का।

0: आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, कौन कहां से बोल रहे हैं?
1: सर नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहां से बात कर रहे हैं?
1: मैं जिला बरेली थाना मेरगंज कोटोरे ग्राम रसूलपुर इमामबाड़े के पास से अल्ताफ हुसैन अंसारी बात कर रहा हूं सर।
0: स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तो ये बताइए कि खुले आसमान के नीचे आपको सुकून की नींद आती है या बंद कमरे में?
1: सर मेरा तो कहना यही है कि खुले आसमान के नीचे ज्यादा सोना सेहत के लिए हानिकारक भी है, मगर इतना सोए कि बस अपना स्वास्थ्य ठीक रहे, मगर जो बंद हम कमरे में लेटते हैं तो उसमें नींद ज्यादा अच्छी आती है।
0: उसमें नींद अच्छी ज्यादा आती है, लेकिन एक जमाना था हम लोग खुले आसमान के नीचे ही गर्मियों के दिनों में सोना पसंद करते थे, वहाँ हमें

0: अच्छी हवा लगती थी और मौसम जो है उसका आनंद मिलता था, आसमान के तारे दिखाई देते थे, चांद दिखाई देता था।
1: हाँ, एक खूबसूरत सुहाना मौसम लगता था। जब गर्मियों का मौसम आता था तो जब खुले आसमान के नीचे सोते थे और
0: जी
1: जब उसमें टिमटिमाते हुए तारे जो नजर आते थे तो बहुत ही सुहाना अच्छा मौसम लगता था और रात बेहतर लगती थी।
0: जी तो कौन सा गीत आपको प्रोग्राम में सुनवाया जाए?
1: आज मैं फिल्म द्रौपदी का सुनना चाहूंगा, तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है, देख के तेरी सूरत दिल को चैन आता है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ नाम ले सकता हूँ।
0: जी बिल्कुल।
1: ये मुस्कान है, तरन्नुम अंसारी जी हैं, रुखसार हैं, और बरेली करेली से लाल मोहम्मद अंसारी, बंधन अली भाई हैं, और यही मेरे मतलब जुआ अमन और आदिल भाई हैं।
0: तो आप सबके लिए भेज रहे हैं हम ये की

0: 100.4 FM आगरे, जब हम खुल कर लेते उस आनंद। हमारे श्रोताओं का क्या विचार है? आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन कहां से बात कर रहे हैं?
1: हम भी आपके साथ है सर। मैं कुंडलवाड़ी जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से बात कर रहा हूं सर।
0: स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कैसा मौसम है आपके यहां?
1: मौसम तो बहुत सुहाना है सर। हवा चल रही है, बारिश रिमझिम हो रही है।
0: अरे वाह, तो क्या करते हैं आप?
1: सर मैं रिटायरमेंट हूँ।
0: तो आकाशवाणी बरेली के कार्यक्रम आप सुनते हैं?
1: सर बरेली तो हमारी जान है।
0: तो कैसे लगते हैं कार्यक्रम आप?
1: बहुत बढ़िया सर कार्यक्रम। अभी जो आजकल कार्यक्रम चल रहा है ये भी बहुत नंबर एक कार्यक्रम चल रहा है सर।
0: तो ये बताइए कि खुले आसमान के नीचे आपको सुकून की नींद आती है या बंद कमरे में?
1: सर खुला आसमान तो बहुत धूपकाले में अपन सो सकते सर।
0: जी, खुला आसमान मिल पाना भी अब थोड़ा कठिन हो गया है।
1: मगर आज जो शहर में
0: जी
1: मच्छर की वजह से, मक्खियों की वजह से बंद कमरे में तो जरूरी है सर।
0: जी, तो
1: कुछ ऐसा मतलब मौसम के हिसाब से सोच सकते सर।
0: जी नहीं, मेरा ये पूछने का अभिप्राय है आपसे कि खुले आसमान के नीचे सोना आपको अच्छा लगता है या बंद कमरे में सोना? क्योंकि पहले एक समय था जब हम लोग खुले आसमान के नीचे ही सोते थे।

0: अपनी
1: बिल्कुल
0: छत,
1: सर,
0: अपनी
1: जब हम
0: छत
1: पढ़ते
0: पर या
1: थे
0: घर के आंगन में या
1: आंगन
0: कभी
1: में
0: कभी
1: सोते
0: खेत
1: थे,
0: पर हम
1: बिल्कुल
0: फसल देखते थे तो खेत पर सोना पड़ता था।
1: हाँ जी, खेती भी ऐसे ही सोते थे सर,
0: जी
1: और पूरे
0: कौन,
1: आसमान में तारे दिखते थे,
0: जी कौन से
1: और
0: वाले में सुकून
1: आसमान में
0: ज्यादा
1: कुछ
0: है?
1: एयरप्लेन जाते थे, उस देखते देखते नींद लगती,
0: जी
1: हवा भी ऐसी नेचुरली हवा सर, वैसा
0: जी
1: हवा तो मिलता ही नहीं,
0: जी
1: बहुत
0: तो
1: बढ़िया हवा मिलती है, और नींद ऐसे लग जाती है कि शक्कर की नींद बोलते सर उसको।
0: जी तो कौन सा गीत आपको सुनवाया जाए प्रोग्राम में?
1: मेरे को सर ये देखो, बोल रहा था बोल, और गाने के बोले हवा सर्द है खिड़की बंद कर लो,
0: हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी नमस्ते, मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बचोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तो कैसा मौसम है महाकाल की नगरी में?
1: जी अभी यहाँ पर रुक रुक के कल शाम से तेज बारिश हो रही है और अभी आधे घंटे से काफी तेज बारिश हुई है यहाँ पर।
0: तो ये बताइए कि खुले आसमान के नीचे आपको सुकून की नींद आती है या बंद कमरे में?
1: जी ये तो बहुत ही अच्छा विषय रखा आपने, क्योंकि खुले आसमान के नीचे जो सोने का आनंद है, नींद आने का आनंद है, वो किसी बंद कमरे में या एसी वाले कमरे में नहीं मिल सकता है।
0: जी
1: इसके लिए मैं आपको बताऊं, जैसे कि अभी हमने पिछले हफ्ते तो ठीक है, मतलब जून जुलाई में काफी गर्मी का सामना किया था, पिछले महीने में तो हम घर के अंदर रह रहे थे, उसके अलावा हमारे कूलर चल रहे थे, एसी चल रहे थे, लेकिन फिर भी घर के अंदर से भाप निकल रही थी। और जैसे हम छत पे जाते थे, वहां पे बैठते थे, वहां पे ठंडी हवा लगती थी, तो मतलब ऐसा मन करता था कि बस यहीं पर सो जाए।
0: जी
1: जी तो उसके लिए तो सर ऐसा भी होता है कि जैसे हम ऊपर भी सोते हैं, नींद भी आती है, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है कि ऊपर कभी थोड़ी बहुत हवा रुक जाती है ना, तो मच्छर काटने लगते हैं, इसीलिए हमें कमरे में आना पड़ता है।
0: जी तो कौन सा गीत आपको प्रोग्राम में आज सुनवाया जाए?
1: जी आप सुनवा दीजिएगा बाजीगर फिल्म का, ए मेरे हमसफर, एक जरा इंतजार।
0: हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। जी तो कौन सा गीत आपको प्रोग्राम में आज सुनवाया जाए?
1: जी आप सुनवा दीजिएगा बाजीगर फिल्म का, ए मेरे हमसफर, एक जरा इंतजार।
0: हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी।

0: आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: सर जी, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश सतीश रघुवंशी बात कर रहा हूँ सर जी।
0: स्वागत है आपका कार्यक्रम में, कैसे हैं आप?
1: जी बिल्कुल सर जी, हम तो मस्त हैं, स्वस्थ हैं सर। आप बताएं कि आप कैसे हैं।
0: मैं बहुत अच्छा हूँ। तो ये बताइए, आपकी खुले आसमान के नीचे आपको सुकून की नींद आती है या कि बंद कमरे में?
1: जी जी बिल्कुल सर जी, बहुत ही अच्छा टॉपिक है सर जी, और बहुत ही अच्छी, मतलब मेरे को बहुत ही अच्छा पसंद आया सर आपका टॉपिक।
0: जी तो बताइए।
1: तो सर जी, मतलब मेरे हिसाब से सबसे अच्छा ये है कि सर बंद कमरे में सुकून की नींद होती है,
0: जी
1: और यदि सर यदि बाहर आसमान के नीचे यदि सोते हैं तो सर खेत में या कहीं पे भी सोते हैं मान लो अपन, तो सर कीड़े का डर रहता है, कोई व्यक्ति आने का डर रहता है, मतलब नींद उतनी सुकून से नहीं हो पाती
0: डर
1: सर।
0: तो रहता है, लेकिन उसके साथ बड़ी सुंदर हवा हमें मिलती है कभी कभी।
1: जी जी बिल्कुल सर, हवा तो मिलती है सर, मगर बाहर ये भी है ना सर कि मतलब डर ही रहता है और नींद है, मतलब उतनी सुकून से नहीं सो सकता आदमी, क्योंकि कि हवा तो लगती रहती सर, मगर उसको हमेशा बेचैनी इस बात की होती है कि मतलब उसको डर रहता है कि कोई ना जाए, कोई उठा ना ले, या कोई कुछ ना कर दे, मतलब ये डर भी रहता सर।
0: जी तो प्रोग्राम में कौन सा गीत आज आप सुनेंगे?
1: सर जी आप मुझे सुनो दीजिए सर जी, फिल्म का नाम है साथी, और गीत के बोल रहेंगे सर जी, हुई आखिर ना मोरी ये दिल मुस्कुराया, याद साथी कोई भूला याद आया।
0: हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये।

जी हाँ, दिल लगाने का कैसा ये इनाम है। और आप सुन रहे हैं 100.4 FM पर कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। और इस प्रोग्राम में हम आपकी फोन कॉल्स के अलावा आपके कुछ चुनिंदा कमेंट भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हमारे पास ये कमेंट आया है राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ का। ये लिखते हैं कि आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम पेशकर्ता को नमस्कार। मजबूरी के अंदर बंद कमरे में सोने पर या आराम करने को आजकल हम विवश हो गए हैं, लेकिन जो खुला वातावरण है वो प्रकृति की गोद में ही हमें मिलता है। खूबसूरत हवाएं सुकून देती हैं, वह बंद कमरे में नहीं मिल पाती हैं। और मुझे आज ये विषय जानकर बचपन के दिन याद आ गए, ये कहते हैं। और अगला कमेंट हमारे पास प्रोग्राम में है हरहरपुर मटकली से शाहरुख नूर अंसारी का। ये लिखते हैं कि नींद का संबंध किसी खास जगह से नहीं है, बल्कि इंसान के मन की शांति, संतोष और बेफिक्री से होता है। अगला कमेंट हमारे पास है, इसको करने वाले हैं दत्ता आष्टी जालना महाराष्ट्र से। ये लिखते हैं कि मेरे लिए सुकून भरी नींद का मतलब सिर्फ जगह नहीं बल्कि मन की शांति है। और विशु टेलर का हमारे पास कमेंट पहुंच रहा है और ये लिखते हैं कि खुले आसमान के नीचे ठंडी हवा, प्रकृति का सुकून।

और तारों भरा आसमान कुछ लोगों को बेहद सुकूनदायक लगता है, बशर्ते जगह सुरक्षित और मौसम अनुकूल हो। जी हाँ, मौसम अगर अनुकूल है तो बात ही अलग है, और मौसम जब अनुकूल होता है तो हमें भी आनंद आता है, आपको भी आनंद आता है। लेकिन मौसम जब विपरीत होता है, यानी कि गर्मी होती है, मच्छर लगते हैं, तो नींद आने में थोड़ी सी दिक्कत होती है बाहर अगर हम सोते हैं। लेकिन बाहर जब खुली हवा और मस्त मौसम हो तो उसकी बात ही अलग है। तो सुनते रहिए 100.4 FM पर कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ।

जी हाँ, न जाने कहाँ दिल खो गया। और अगर मौसम अनुकूल हो और खुली हवा में आसमान के नीचे हम लेटे हों और आसमान पर तारे टिमटिमा रहे हों, चांद चमक रहा हो और ठंडी सी बयार बह रही हो, तो नीले गगन के पास यानी कि नीले गगन के नीचे सोने का अपना अलग ही आनंद है। और उस आनंद में हम सब डूब जाते हैं और बहुत सुंदर नींद आती है। अगर सुंदर हवा बह रही है और नीला आसमान दिखाई दे रहा है, तारे चमक रहे हैं। और इसी प्रोग्राम में हमारे पास कमेंट है उड़ला जागीर से फजलुद्दीन अबरार और अफजाल का, और अगला कमेंट भेजा है अनोखे लाल मौर्य ने पुराना शहर बरेली से।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी समय बता रही है संध्या के ठीक 5 बजे हैं। और आइए अब आपको जानकारी दे देते हैं हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी देर में 5:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम भजन संध्या। 5:30 पर आपकी सेवा में लेकर उपस्थित होंगे कार्यक्रम नारी संसार। चर्चा करेंगे यात्रा और महिला सुरक्षा के बारे में, साथ ही महिला शिक्षा से जुड़ी सरकारी योजनाओं पर भी आपको जानकारी दी जाएगी। युवाणी कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 6 बजे। चर्चा होगी यास्तिका भाटिया किससे संबंधित है, इसके साथ ही विशेष सेगमेंट रहेगा कुछ खास है आज, साथ ही होगी प्यार की धुन। ग्राम जगत कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 6:30 पर, चर्चा होगी युवा और कौशल विकास पर, साथ ही आपको सुनवाएंगे कृषि गोष्ठी, चर्चा होगी कृषि तकनीक के बारे में, प्रतिभागी होंगे बाबूराम हेमराज अब्दुल वहीद। और शाम 7:31 पर समय रहेगा प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन का। आज के कार्यक्रम में विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर मोहम्मद अकीक। हमारी सभा शुरू होगी कल प्रातः 5:53 पर। और कल प्रातः शुरुआत में आप सुनेंगे आकाशवाणी लखनऊ के प्रसारण और 8:15 से हम आपसे जुड़ेंगे कल सुबह, और कार्यक्रम नमस्ते बरेली प्रस्तुत करेंगे कल प्रातः 8:15 पर। और 8:45 पर कल प्रातः सुनिएगा लोकरंग कार्यक्रम में लोकगीत। और 9 बजे से आप सुनेंगे कल विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। सोशल मीडिया पर आपकी फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद होगा कल प्रातः 10 बजे। सवरंग कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल पूर्वाहन 11 बजे। और 11:15 समय रहेगा कार्यक्रम झुमका गिरारे का। अनुरोध गीत कार्यक्रम सुनिएगा कल अपराहन 1 बजे। और इसके बाद रसरंग कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे कल अपराहन 2 बजे आपके लिए। आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम सुनिए कल शाम 4 बजे। नारी संसार कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5:30 और 5:05 पर आप भजन संध्या में भजनों का आनंद ले सकेंगे। किसानवाणी कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल शाम 6:30 पर। कल बात होगी मोटे अनाज की खेती के बारे में, साथ ही कृषि गोष्ठी आपको सुनवाएंगे किसान भाई खेती में आमदनी कैसे बढ़ाएं। प्रतिभागी होंगे राजेंद्र कुमार, गजेंद्र सिंह और संचालन होगा डॉक्टर रविंद्र कुमार का। ग्राम जगत कार्यक्रम सुनिएगा कल शाम 7 बजे। और कल शाम 7:31 पर समय रहेगा कार्यक्रम अनुरोध गीत का। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

जी हाँ, क्षण क्षण कण कण में गूंज रही मैं बरेली आकाशवाणी हूँ और हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। और लीजिए प्रस्तुत है भजन संध्या कार्यक्रम। आप सभी का स्वागत है भजन संध्या कार्यक्रम में। करते हैं भजन संध्या कार्यक्रम की शुरुआत इस भजन के साथ। विघ्नेश्वराय, वरदाय, सुरप्रियाय, लंबोदराय, सकलाय, जगत्थिताय, नागाननाय, श्रुतियज्ज विभूषिताय, गौरी सुताय, गणनाथ नमो नमस्ते।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

इसी के साथ भजन संध्या कार्यक्रम अभी संपन्न होता है। अभी आप भजन संध्या कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम नारी संसार।

जॉब के लिए, कभी बच्चों का स्कूल, कभी बाजार, कभी अपने ख्वाबों की तलाश में। लेकिन एक फर्क आज भी मौजूद है। जब भी कोई बेटी घर से निकलती है तो अक्सर यही कहा जाता है, ठीक से जाना, फोन ऑन रखना, जाते ही मैसेज करना। यही चिंता हर परिवार की होती है। तो सखियो, घर से निकलने से पहले चेक कर लें कि आपका मोबाइल चार्ज है। अपनी लोकेशन की जानकारी अपनी किसी खास व्यक्ति को जरूर शेयर करें। और अगर कोई बार बार आपको परेशान कर रहा है, घूर रहा है या फिर जानबूझकर टीस करने की कोशिश कर रहा है तो चुप नहीं रहना है, आवाज उठाइए। जरूरत हो तो आप अपनी सीट भी बदल सकती हैं। अब जो आपके आसपास लोग बैठे हैं, आप उन लोगों से बातचीत शुरू कर दीजिए। और अगर मदद की जरूरत हो तो मदद मांगने में कोई संकोच न कीजिए। सफर के दौरान यदि कोई दूसरी महिला असहज दिखे तो बस इतना जरूर पूछ लीजिए, सब ठीक तो है ना। यकीन मानिए, यही शब्द किसी अनजान महिला को ये एहसास दिला देते हैं कि वो अकेली नहीं है। आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लें, बदलाव सिर्फ कानून से नहीं आता, बदलाव हमारी परवरिश, हमारी सोच और हमारे संस्कारों से आता है। अपनी बेटियों को ही स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट ना बनाएं, बल्कि अपने बेटों को भी ये सिखाएं कि हर महिला का सम्मान करना उनका फर्ज है। किसी महिला पर गलत नजर डालना, उसका पीछा करना, उसे असहज महसूस कराना या किसी भी तरह का बुरा व्यवहार करना, ये सब इंसानियत के खिलाफ होता है। जिस दिन हमारे देश के बेटे महिलाओं की इज्जत करना सीख जाएंगे, उस दिन हमारे देश की बेटियां बेझिझक, बेखौफ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने सफर पर निकल सकेंगी। जब भी वो घर से सफर के लिए बाहर निकलेंगी तो दिल से यही आवाज निकलेगी, आहा आहा ये सुहाना सफर।

0: सखियों, कहते हैं ना, जब हम सफर पर चलते हैं तो अगर हमारा मन खुश है तो वाकई वो बहुत सुहाना सफर बन जाता है। और इस गीत को सुनने की फरमाइश हमारे पास आई थी ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से, साजिया भी अंसारी, शगुफ्ता भी अंसारी, मोबीन जहां अंसारी, लालू भैया अंसारी और लाल मोहम्मद अंसारी जी की। सखियो, जब एक बेटी पड़ती है तो सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बदलती बल्कि पूरा परिवार और समाज आगे बढ़ता है। आज शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है बल्कि आत्मनिर्भर बनने, अपने अधिकारों को समझने और अपने सपनों को साकार करने का सबसे सशक्त माध्यम शिक्षा है। इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और हमारी राज्य सरकारें समय समय पर ऐसी अनेक योजनाएं चला रही हैं जिनका उद्देश्य है कि कोई भी बेटी या महिला केवल आर्थिक या सामाजिक कारणों से शिक्षा से वंचित ना रह जाए। इसीलिए और अधिक जानकारी के लिए हम आपको सुनवा रहे हैं एक वार्ता जिसका विषय है महिला शिक्षा से जुड़ी सरकारी योजनाएं, और इस विषय पर जानकारी दे रही है नसरीन शमसी।
1: गाँव की शिक्षा राष्ट्र के विकास, महिला सशक्तिकरण व आर्थिक प्रगति और स्वस्थ पारिवारिक जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। शिक्षित महिलाएं ही समाज के उत्थान में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। शिक्षा न केवल महिलाओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करती है बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में भी सहायक है, क्योंकि कहा भी गया है कि यदि एक नारी शिक्षित होती है तो वह पूरे परिवार को शिक्षित कर देती है। अब बात करते हैं महिलाओं की शिक्षा से संबंधित सरकारी योजनाओं की। महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देते हुए सरकार ने बहुत से कार्यक्रम व योजनाएं बनाई हैं।

जिनका जानना व उनसे लाभान्वित होना बहुत जरूरी है। इनमें सबसे पहले मैं नाम लूंगी सुकन्या समृद्धि योजना का। ये एक वित्तीय बचत योजना है जो महिलाओं की उच्च शिक्षा व विवाह के लिए एक सुरक्षित कोष बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह एक छोटी बचत योजना है जिसमें जमा राशि पर शानदार ब्याज पर दर लगभग 8.2% मिलती है। इसमें 10 वर्ष तक की आयु की बालिका का खाता खोला जा सकता है। इसमें जमा राशि को आवश्यकता पड़ने पर काम में लिया जा सकता है। सरकार की दूसरी मुख्य योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री सुमंगला योजना। इसके अंतर्गत 6 चरणों में 25,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है, जैसे लड़की के जन्म पर 5,000, फिर कक्षा 1 और कक्षा 6 में प्रवेश पर 3,000, कक्षा 9 में 5,000 और स्नातक में प्रवेश लेने पर 7,000 रुपए की मदद की जाती है, जिससे कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा संख्या में शिक्षित हो सकें और उनकी शिक्षा में कोई भी आर्थिक बाधा या रुकावट ना आए। आइए अब बात करते हैं बालिका समृद्धि योजना की, जिसका उद्देश्य है गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों की लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करना। इसमें कन्या के जन्म पर माँ को नकद अनुदान और कक्षा 1 से 10 तक पढ़ाई करने पर प्रतिवर्ष 300 रुपए से 1,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना भी है, जिसे NSIGSE के नाम से जाना जाता है। जो लड़कियां 8वीं पास करने के बाद किसी न किसी कारण से पढ़ाई छोड़ देती हैं, उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने तथा कक्षा 9 में दाखिला लेने पर एक मुश्त राशि दी जाती है, जिसे 18 वर्ष की आयु या 12वीं पास करने के बाद बैंक से निकाला जा सकता है। एक योजना CBSE उड़ान नाम से है, जो छात्राओं की उच्च तकनीकी शिक्षा जैसे IIT NIT के लिए है। इस योजना का मूल उद्देश्य लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना है। इस योजना में 11वीं 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली मेधावी छात्रों को मुफ्त अध्ययन सामग्री मुहैया कराई जाती है। इसके अलावा ऑनलाइन ऑफलाइन कक्षाएं संचालित की जाती हैं और आगे की पढ़ाई के लिए उचित निर्देश व मार्गदर्शन भी दिए जाते हैं। यदि परिवार में 2 पुत्रियां हैं तो इसके लिए सरकार की बहुत अच्छी योजना है। इस योजना के तहत बालिका के नाम पर 30,000 की राशि जमा की जाती है और 2 बालिकाओं के नाम पर 15,000 की राशि जमा की जाती है, जो उनकी शिक्षा में मदद करती है। इसके अलावा एक योजना और भी है, जिसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यानी PMMBY के नाम से जाना जाता है। इस योजना के तहत पहले बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपए और यदि दूसरा बच्चा बेटी है तो 6,000 रुपए की एक मुश्त राशि सहायता के नाम पर प्रदान की जाती है। ये राशि गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताओं के बेहतर पोषण और स्वास्थ्य के लिए सीधे उनके खातों में भेज दी जाती है। सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे यानी BPL परिवारों के लिए अपनी योजनाओं में खास ख्याल रखा है। इन योजनाओं में महिलाओं को सबल समर्थ बनाने हेतु उन्हें समाज की मुख्य धाराओं से जोड़ने का प्रयास किया गया है। इसी प्रयास के अंतर्गत एक योजना उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के नाम से जानी जाती है। इसके अंतर्गत जो महिलाएं हिंसा का शिकार हैं, दहेज या एसिड पीड़ित हैं या विधवा हैं, उनके लिए की जाने वाली एक व्यवस्था है, जिसमें आर्थिक क्षतिपूर्ति व अन्य अनुतोष उपलब्ध कराए जाते हैं। आज हमने महिलाओं की शिक्षा के संबंध में सरकारी योजनाओं के बारे में जाना और समझा। वास्तव में ये समस्त योजनाएं नारी शक्ति को बढ़ावा देती हैं। अब नारी के लिए कहा गया ये वक्तव्य कि अबला जीवन हाय तुम्हारी, यही कहानी अब पुरानी हो चुकी है। अब वही अबला नारी सबला नारी कहलाने लगी है, क्योंकि अब वह सरकार द्वारा चलाई जाने वाली उपयोग योजनाओं का लाभ उठा रही है। आज आवश्यकता इस बात की है कि अधिक से अधिक महिलाएं इन योजनाओं के बारे में जानें और इनसे लाभान्वित हों, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, क्योंकि शिक्षित बालिकाएं ही अच्छी माएँ बनती हैं। वही अपने अधिकार व कर्तव्यों को समझकर समाज की उन्नति व राष्ट्र का निर्माण करती हैं। शायद इसीलिए नेपोलियन ने भी कहा था कि गिव मी गुड मदर्स आई विल गिव यू गुड नेशन, यानी तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छा राष्ट्र दूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।

0: सखियो, आपने जो गीत सुना उसको सुनने की फरमाइश हमारे पास आई थी कटरा चांदखा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति मौर्य की तरफ से।
1: सखियो, हम आपको बता दें कि हमारी बहुत सारी सखियां ऐसी हैं जो हाउस कीपर हैं, वर्किंग है, लेकिन साथ साथ हमारे पर्यावरण को भी बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा रही हैं, हमारे पर्यावरण की भी काफी देखभाल कर रही हैं। और जब मैं ऐसे सखियों के घर में जाती हूँ और उन्हें उनके हरे भरे पौधे देखती हूँ तो मेरा दिल खुश हो जाता है। लगता है जैसे वो घर नहीं, कोई जीता जागता बाग है। और आज हमारे साथ है एक ऐसी ही सखी, गुरप्रीत कौर जी, जो पौधों से न सिर्फ प्यार करती हैं बल्कि उन्हें अपने परिवार जैसा मानती हैं। पौधों से उनका प्यार, उनका एक जुनून है। उनसे मिलने के बाद उनका जुनून छलकता नजर आता है और उनके घर में कोई भी ऐसा कोना नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हमें हरियाली देखने को ना मिले। हरियाली को अपने जिंदगी का उन्होंने एक हिस्सा बना लिया है, इसीलिए हम पहुंच गए गुरप्रीत जी से मिलने के लिए। नमस्ते गुरप्रीत जी।
2: नमस्ते मैम।
1: गुरप्रीत जी, आप अपने घर को इतना हरा भरा और साफ सुथरा रखती हैं, बहुत मेहनत करती हैं, तो आप ये बताइए कि आपका जुनून, ये आपका प्यार, ये आपका लगाव कैसे शुरू हुआ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई?
2: मैम, असल में मुझे बचपन से ही इन पेड़ पौधों से बहुत लगाव था और मैं इनके लिए पागल रहती थी, मुझे जुनून था इनका। और ये जुनून मेरा और ज्यादा तब बढ़ता गया जब मेरी शादी हुई और मेरे को एक अपना घर और एक छोटी सी बालकनी मिली जिसमें मैंने एक एक करके पौधे लगाना शुरू किए। और आज मेरे घर में इतने सारे पौधे हैं कि मुझे खुद उनकी केयर करना, उनकी देखभाल करना बहुत अच्छा लगता है और मेरी पूरी छत हरियाली से भर चुकी है।
1: घर का काम भी करती हैं, वर्किंग भी हैं और पौधों की देखभाल भी करती हैं, तो दिन में आप कितना वक्त देती हैं इन पौधों को?
2: मैं जितना वक्त अपने परिवार को देती हूँ ठीक उतना ही वक्त इन पौधों को भी देती हूँ। एक तरफ मैं अपने परिवार का

0: ध्यान रखती हूँ, साथ ही साथ इन पौधों का भी, क्योंकि ये भी मेरे परिवार का एक अहम हिस्सा है। और मैं इनकी सुबह उठते ही सबसे पहले इनसे मिलती हूँ, जैसे हम अपने बच्चों को कुछ काटते हैं सुबह उठ
1: जी
0: के
1: जी
0: उनसे मिलते हैं, वैसे ही मैं इन पत्तियों को भी सहलाती हूँ, उनसे भी मिलती हूँ रोज। और मैं रोज सुबह उठकर देखती हूँ कि किस पौधे को किस चीज की जरूरत है। अगर इन्हें खाद की जरूरत है तो खाद देती हूँ, पानी देती हूँ, और मैं अपने किचन वेस्ट से खाद बनाती हूँ। और बहुत ध्यान रखती हूँ कि पौधों को पानी सही समय पर मिलता रहे। और जैसे सब्जी धोने का पानी भी मैं इन पौधों में देती हूँ।
1: अच्छा, तो आपके परिवार वाले भी आपकी इस काम में मदद करते हैं या आप अकेले ही ये सब कुछ करती हैं?
0: जी बिल्कुल, मेरे परिवार वाले मेरा सहयोग करते हैं इस काम में, और मैंने अपने साथ साथ अपने बच्चों में भी शुरू से ही ये आदत डाली है। और पर्यावरण के प्रति उनके हृदय में भी उतना ही प्रेम है जितना मेरे में है। और अभी मैंने और मेरे पूरे परिवार ने, सबने मिलकर ये जो वृक्षारोपण अभियान हुआ था उसमें
1: जी
0: भी
1: जी
0: हिस्सा लिया था, और मेरे पति भी पौधारोपण में अब बहुत रुचि लेने लगे हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगता है ये करना।
1: किचन में अगर कोई खाना बच जाता है या कचरा होता है तो उसको आप किस तरह से काम में लाती हैं?
0: किचन वेस्ट को भी इस्तेमाल करती हूँ खाद बनाने में, और कई बार जो खाना वगैरह जो बच जाता है वो चिड़िया को या किसी जानवर को डाल देती हूँ।
1: हरप्रीत कौर जी, इस वक्त हमारी बहुत सारी सखियां आपको सुन रही हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारी सखियां भी कोशिश करेंगी कि वो भी अपने घर को यूं ही आपके जैसा हरा भरा बना लें। तो आप हमारी सखियों को क्या सलाह देना चाहेंगी?
0: मैं सभी से ये कहना चाहूंगी कि पेड़ हमारे जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, क्योंकि ये हमें बहुत सारे लाभ देते हैं, जैसे फसल पैदा करते हैं, औषधि देते हैं, और हमें सौंदर्य प्रदान करते हैं, और हवा और पानी की गुणवत्ता को सुधारते हैं। तो जैसे मैं अपने जीवन में एक इस चीज को अहम हिस्सा बना चुकी हूँ कि मेरे को खूब सारे पेड़ लगाने हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी, मेरे घर में अगर कोई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल आती है या मिठाई का डिब्बा आता है तो मैं उसको भी उपयोग में लाती हूँ, उसमें खाद लगाकर पेड़ पौधे उगाती हूँ। तो जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सबसे यही अनुरोध करना चाहूंगी कि आप भी इस तरीके से एक छोटी छोटी पहल करना शुरू करिए, क्योंकि अगर हम पहल करेंगे तो हमें देखकर हमारे आसपास के लोग भी उसको अपनाने की कोशिश करेंगे, और एक दिन हम अपने पर्यावरण को खूबसूरत बनाने में आखिर सफल हो ही जाएंगे।
1: आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी। ये बताइए कि जैसे आपने एक मुहिम चलाई हुई है कि पर्यावरण को बिल्कुल साफ सुथरा रखना है, हरा भरा रखना है, तो हमें अपने पर्यावरण को और अधिक हरा भरा बनाने के लिए, पूरा पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहे, साफ रहे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए?
0: मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि हमें प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: प्लास्टिक का उपयोग आज के समय में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मनुष्य अपनी सुविधाओं के लिए प्लास्टिक का निर्माण कर रहे हैं, उसको उपयोग में ला रहे हैं, जो कि हमारे वातावरण के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि ये प्लास्टिक जल्दी डिकम्पोज नहीं होता है, और
1: जी
0: उसकी वजह से ये हमारे जानवरों को, हमारे वातावरण को बहुत हानि पहुंचाता है। तो सबसे पहले जो हमें ये कार्य करना चाहिए वो ये है कि हमें प्लास्टिक का उपयोग पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए, और उसकी जगह पेपर बैग्स या फिर कपड़े के बने हुए थैलों का इस्तेमाल करना चाहिए।
1: हम भी एक वादा करते हैं कि आज से कम एक पौधा जरूर लगाएंगे और उसे अपने बच्चों के जैसा पालेंगे। और हाँ, जैसा गुरप्रीत जी ने बताया, प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। घर में एक पौधा लगाना बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन उससे मिलती ताजगी और सुकून की सखियों कोई कीमत नहीं होती। गुरप्रीत जी ने हमें बताया कि अगर दिल से चाहें तो हम घर को ही एक अच्छा सा बागीचा बना सकते हैं। तो चलिए हम सब भी एक वादा करें, आज से कम एक पौधा जरूर लगाएंगे और उसे अपने बच्चे के जैसा पालेंगे। गुरप्रीत जी, आपसे मिले, आपका बागीचा देखा और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। हम सुनना चाहेंगे अपने सखियों के साथ मिलकर आपकी पसंद का एक गीत।
0: आफरी आफरी।

सखियों, हमने आपसे पूछा था एक सवाल, हमारे देश की प्रथम महिला पायलट का नाम क्या है, और हमारे पास जवाब आए हैं। हमारी बहनों के तो आए ही हैं, साथ ही हमारे भाइयों ने भी इसके जवाब दिए हैं। धत्ता डोड़ के आष्टी जालाना महाराष्ट्र से, और ग्राम बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेन नेताम कुसुम और कुसुम नेताम ने, कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस अनिल कुमार, अजित कुमार जंगेल और नंदिनी जंगेल ने, दयानंद कॉलेज भवानी पेट सोलापुर महाराष्ट्र से रितिका मिस्कीन, वानी आरब चंद्रकला, गणेश काशीनाथ, संगीता मिस्कीन, आरोही प्रियांशी सोनी, और इसका ही जवाब हमारे पास भेजा है गंगा सिंह रावत जी ने, राजेश वर्मा जी ने, और मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद सुहेल, अनाम यशफ, और किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली ने, और इसका जवाब हमारे पास आया है हिरमानी वर्मा जी की तरफ से भी, और सभी ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है कि जवाब है सरला ठकराल। तो सखियो, आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा, अपने पत्रों के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा, और अब हम चलते हैं, अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

अभी आप नारी संसार कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, 100.4 मेगाहर्ट्ज पर 6 बजे है और लीजिए अब प्रस्तुत है युववाणी कार्यक्रम।

नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का प्रोग्राम में युगवाणी में। और आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी रेडियो दोस्त माधुरी। दोस्तों, शाम का ये सुहाना वक्त और एक कप चाय के साथ अगर हो प्यार भरी धुन तो मन को बड़ा सुकून मिलता है। और दोस्तों, यही प्यार अगर हमारे रिश्तों में भी हो तो हर पल खास बन जाता है। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और प्यार की धुन में सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों आइए अब सुनते हैं एग्रीकल्चर विषय के बारे में युवा छात्र से की गई इस खास बातचीत को।
1: मेरा नाम श्याम सिंह है।
0: कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या करते हैं आप?
1: जी मैंने एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है कानपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, और मैं अभी जॉब्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ।
0: जी आपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट क्यों चुना है?
1: जी मेरे पिताजी फार्मर हैं और मैं हमेशा से एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से ही जुड़ा रहा हूँ, तो मैंने जो एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स हैं उनको करीब से देखा है और फिर मैंने एग्रीकल्चर में अपनी पढ़ाई शुरू की। धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट बढ़ा तो उसी में मैंने, और इसमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं, तो इसीलिए मैंने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को चुना। और मैं इसके द्वारा जो हमारे किसान भाई हैं, क्योंकि मैं किसान बैकग्राउंड से हूँ, तो उनके लिए हेल्प कर सकूंगा और उनके लिए नई टेक्नोलॉजी है उनको पहुंचा पाऊंगा, और इसमें बहुत अच्छा जॉब के लिए भी अपॉर्चुनिटीज है, इसीलिए मैं एग्रीकल्चर में।
0: जी अच्छा ये बताइए कि आधुनिक कृषि में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है?
1: जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है, आधुनिक कृषि है, उसमें एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा रोल है। यह जो है किसान की उत्पादकता बढ़ाता है और जो श्रम है, जो लेबर कॉस्ट है, उसको घटाता है, और जो हमारे संसाधन हैं जैसे कि हमारा वाटर हो गया या हमारी सॉयल हो गई, उनको बहुत बेहतर तरीके से यूज करता है। जैसे कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी है, जैसे हम एग्जांपल ले लें कि ड्रिप इरिगेशन है, ड्रिप सिंचाई है या स्प्रिंकलर सिंचाई है, तो कहीं भी अगर वाटर की कमी है तो हम इस मेथड का यूज करेंगे तो एक इफिशियंट हम अपना इनपुट यूज करेंगे, वाटर बहुत ज्यादा पानी जो है वो लॉस नहीं होगा। इसके अलावा हम ड्रोन को यूज कर रहे हैं आजकल, जो ड्रोन है उसके द्वारा हम जो अपनी क्रॉप है उसको मॉनिटर कर पाएंगे अच्छे से, और जो फर्टिलाइजर है उसको ड्रोन द्वारा छिड़काते हैं, पेस्टिसाइड को दे सकते हैं, और यहाँ तक आजकल इरिगेशन भी ड्रोन द्वारा कर रहे हैं। और जब हम आधुनिक तकनीक, जैसे हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर को भी, हमारा आधुनिक ही एग्रीकल्चर है, उससे हम जो हमारे इनपुट है उनका इफिशियंट यूज होता है, इसीलिए हमारे लिए टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा रोल है जो हमारा मॉडर्न एग्रीकल्चर है।
0: जी अच्छा ये बताइए कि ये जैविक खेती क्या होती है?
1: जो जैविक खेती है उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। ये क्या होता है, इसमें हम रासायनिक खाद होती है जो, और कीटनाशक होते हैं उनका उपयोग ना करके हम जो हमारे जैविक प्रोडक्ट होते हैं, जैसे हमारी गोबर की खाद हो गई, कंपोस्ट हो गई, या जीवाणु खाद हो गई, या जो हमारे फसल के अवशेष बचे होते हैं उनको सड़ा के जो खाद बनाते हैं, मतलब एक जो प्रकृति में उपलब्ध होते हैं खनिज, सिर्फ हम उनका उपयोग करते हैं, कोई केमिकल यूज नहीं करते, तो इससे हमारी जो सॉइल की है हेल्थ बनी रहती है और हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो मेंटेन रहती है, और इससे हमारी हेल्थ पे बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे केमिकल जो है वो धीरे धीरे बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं, उससे बहुत सारी बीमारियां होती है, कैंसर होता है, तो ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है और हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है, और हमारी जो सॉइल है उसके लिए बहुत अच्छा, केमिकल जो है वो सॉइल को बहुत ज्यादा डिग्रेड कर रहे हैं, तो इसीलिए जैविक खेती पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है।
0: जी अच्छा विलेज के डेवलपमेंट में भी एग्रीकल्चर की कोई भूमिका है? हमारा मतलब है कि ग्रामीण विकास में भी कृषि की कोई भूमिका रहती है?
1: जी हाँ, ग्रामीण विकास में एग्रीकल्चर का ही बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो हमारे देश की 58% लगभग पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, तो एग्रीकल्चर क्या है, ग्रामीण में रोजगार प्रदान करती है और जो खाद्य की सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करती है, और उससे आर्थिक विकास भी बढ़ता है, जिससे किसान का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, और वो एक सामाजिक विकास में भी मदद करता है, और हमारा जो पर्यावरण है उसको भी संरक्षण कर रहा है, तो एग्रीकल्चर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट अहम भूमिका निभाता है हमारे विलेज के डेवलपमेंट, रोजगार अवसर देता है, खाद्य सुरक्षा करता है, और हमारा आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास भी करता है।
0: जी आप हमारे युवा साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं यही कहना चाहूँगा कि जो एग्रीकल्चर है उस पे हम सभी डिपेंड हैं, तो एग्रीकल्चर

0: एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज भी है कि जो आने वाला समय है उसमें हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और हमको प्रोडक्शन अच्छा करना है जिससे हम अपनी पॉपुलेशन जो भी हमारी जनसंख्या है उसका हम पेट भर सकें। और मैं यही कहना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर में जॉब के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो जो भी एग्रीकल्चर में आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है कि उसमें कोई हमको रोजगार नहीं है। उसमें बहुत सारे बिजनेसेस भी हैं जो हम कर सकते हैं, बहुत सारे नए नए बिजनेस हैं उसको हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर एक बड़ी फील्ड है जिसमें हम करियर भी अपना बना सकते हैं जॉब के फील्ड में भी, और हम बिजनेस भी उसके साथ कर सकते हैं और उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेना चाहते हैं या जो भी एग्रीकल्चर से जुड़े हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा जुड़े और एग्रीकल्चर को एक अच्छी ऊंचाई पर लेकर लें।
1: जी, हमें उम्मीद है आपके विचारों से हमारे श्रोतागण जरूर जागरूक होंगे। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और आकाशवाणी बरेली से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू, धन्यवाद।
1: अभी आपने सुनी है बातचीत और प्यार की धुन में आनंद लेते हैं अब इस प्यारे से सॉन्ग का।

दोस्तों, अब बारी है सेगमेंट चक्रव्यूह की, और इसमें हम आपसे पूछते हैं कुछ क्वेश्चंस जिनको आपको नोट करना होता है, और फिर उन सवालों के उत्तर हमें पत्रों के माध्यम से आप भेज सकते हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों प्रश्नों को नोट करने के लिए। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, एवरेस्ट की बेटी पुस्तक की लेखिका कौन है? साथियों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? हमारा चौथा प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? दोस्तों, हमारा पांचवा प्रश्न है, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? साथियों, प्रश्न को दोबारा सुनिए, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है, सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित हैं? और हमारा आखिरी प्रश्न है साथियों, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये थे सेगमेंट चक्रव्यूह के आज के प्रश्न। और साथियों, हम आपको बता दें कि चक्रव्यूह के अगले अंक में यानी कि अगले बुधवार को इन प्रश्नों के उत्तर को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा उन श्रोताओं के पत्रों को भी शामिल किया जाएगा जो इनके उत्तर हमें लिखकर भेजेंगे। दोस्तों, चिट्ठी लिखने के लिए हमारे कार्यक्रम का पता है, प्रोग्राम चिट्ठी आई है युवाड़ी अनुभाग द्वारा, केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र बरेली, पिन कोड नंबर है 243001। और आइए अब सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

साथियों, अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 44। और साथियों, तीसरा क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था, महिला आरक्षण विधेयक के तहत लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? तो इसका सही उत्तर है 33%। साथियों, अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था, भारत के पहले सौर मिशन का क्या नाम है जिसे सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है? तो इसका सही उत्तर है आदित्य L1। साथियों, अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है गोदावरी नदी। साथियों, अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है और किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है असम में है और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, हमारा आखिरी प्रश्न था, कंप्यूटर विज्ञान में AI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये थे चक्रव्यूह के पिछले अंक के प्रश्न और उत्तर। और आइए अब सुनते हैं प्यार की धुन में ये प्यारा सा गीत।

0: विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान, घर घर पर दस्तक देकर होगी सभी रोगों की रोकथाम।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने ठाना है, संक्रामक रोगों को फैलने से बचाना है।
0: ध्यान रहे, बुखार में देरी पड़ेगी भारी, इसलिए बुखार होने की स्थिति पर निकटतम सरकारी अस्पताल जाएं तथा उचित चिकित्सक की सुविधा पाएं।
1: 1 से 30 अप्रैल तक चलेगा ये अभियान। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145 पर कॉल करें।
2: चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों आइए अब चलते हैं चक्रव्यूह के उन प्रश्नों की तरफ जो हमने आपसे चक्रव्यूह के पिछले अंक में पूछे थे। दोस्तों पहला प्रश्न हमने आपसे पूछा था, भारत के किस शहर को हाल ही में देश की पहली AICT के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है लखनऊ।

दोस्तों आज के इस प्रोग्राम की एंडिंग करते हैं एक पॉजिटिव थॉट से, जिसे हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है। साथियों ये लिखते हैं कि जीवन एक दर्पण की तरह है, आप

मुस्कुराएंगे तो यह भी मुस्कुराएगा, इसलिए हर परिस्थिति में आशा, प्रेम और सकारात्मकता बनाए रखें। इसी के साथ अपनी रेडियो दोस्त माधुरी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।

अभी आप युववाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर, और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: कृषि गोष्ठी कार्यक्रम में
1: कार्यक्रम ग्राम जगत में सब भैया बहन को बहुत बहुत स्वागत है और सब भैया बहन के लिए आपके भैया राकेश शर्मा
2: और भैया कृष्णपाल की
1: राम राम। और कृष्णपाल भैया सुनाओ हालचाल का भी रहो है आजकल।
2: भैया हालचाल तो बढ़िया है और जहाँ तक होने वाली बात है तो भैया खेती बाड़ी काम चल रहा है, धान की रोपाई तो कर दी भैया, अब पशुओं की देखभाल कर रहे हैं, चारा कट के आ रहा हूँ उन्हें खिला पिला रहे हैं और भैया लोग बीमारी से उनकी रोकथाम कर रहे हैं।
1: अच्छा भैया बताओ, हमने जहाँ देख रहे हैं कि इस समय भी हमारे बहुत से भैया ऐसे हैं जो कि धान की रोपाई कर रहे हैं, तो क्या जो इस समय धान की रोपाई कर रहे हैं उनकी फसल का लेट हो जाएगी?
2: लेट तो भैया ना ही आई, लेकिन कुछ पछेती जो प्रजाति होती है उनको भी हमारे किसान साथी लगाते हैं और जाके साथ साथ मैं देखी हुई भैया कि जो हम धान की पौध डालते हैं राकेश भैया,
1: हाँ
2: अब खेत में तो हमने लगा दी, लेकिन जो धान की नर्सरी वालों के खेत होता रह जाता है कुछ भैया चरी होती है, चरी को काट के अपने वहां में रोपाई करते हैं, तो ऐसे खेत रह जाते हैं उनमें हमारे किसान भैया बहन रोपाई कर देते हैं तो लगभग जो है औसतन उत्पादन उनको भी मिल जाता है।
1: अच्छा कहीं कहीं पेड़ तैयार ना भी कर पाई है, जैसे मान लो हमारे किसान भैया किसी कारणवश अपनी पौध देर से डाली है तो जो एक कारण है कि रोपाई उनकी भैया देर से हो पा रही है।
2: बिल्कुल भैया, और देखो जो आप बात कर रहे हो देर अबेर की, तो खेती बाड़ी को तो काम ऐसा हुआ है देर अबेर लगी रहती है, लेकिन हाँ कुछ काम ऐसे हैं जो समय से ही करने पड़ते हैं और समय से अगर कहूँ ना करो चूक हुई गई तो फिर बाको नुकसान बाको खाना आ जा हमको उठाने पड़ते हैं। वैसे तो यार जो धान की रोपाई की बात कर रहे हो तो कहते हैं भैया 21 से 25 दिन की पौध जो है वो लगाए देना चाहिए खेत में, अब कहूँ ऐसी समस्या कोई आई जैसे कोई खल्ला को खेत है वहाँ पानी भरो वो है या किसी कारण पौध तैयार ना हो पाई तो कर रहे हैं भैया और उनको औसतन उत्पादन मिलेगा भी अगर देखभाल सही तरीके से करेंगे तो।
1: भैया जब आप सही कह रहे थे, ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी जो हमारे ग्राम जगत जो हमारे ग्रामीण भैया हैं उनसे संबंधित विशेष जानकारियां अपने कार्यक्रम के माध्यम से भैया के पास तक पहुँचाने को प्रयास करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं चर्चा को विषय का रखो है आपने
2: भैया, चर्चा को विषय तो जो सरकार है हमारी, हम ग्रामीण भैया बहनों के लिए योजनाएं चला

0: पता ना क्यों खेती से बचना चाहते हैं। तो जो ऐसे साथी हैं, जो ऐसे युवा हैं जो खेती का काम ना करना चाहते हैं, उनके लिए हमारी भारत सरकार ने का काम करूँ है कि बहुत से कौशल विकास के कार्यक्रम लागू करे हैं, इस प्रकार के प्रशिक्षण लागू करे हैं जो कि हमारे युवा भैया उस प्रशिक्षण को प्राप्त करके अपनों कोई ना कोई काम धंधा वहाँ से संबंधित कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। युवा और कौशल विकास आत्मनिर्भरता और रोजगार को मुख्य आधार है। भारत सरकार युवाओं को रोजगार उन्मुख बनाने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि PMKVY और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के माध्यम से ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट जो है दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में भी उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन जैसी योजनाओं के तहत लाखों युवाओं को प्रशिक्षित करो जा रहा है। अब जहाँ भैया रोजगार उनके लिए उपलब्ध कराओ जा रहा हो, और जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है उसमें भैया जो स्वरोजगार हैं और उद्यमिता के नए नए ऑप्शन प्रदान करे जा रहे हैं। जाके साथ ही साथ भैया जो ITI है ऐसे जो आधुनिक बना के उनको और तकनीकी कोर्स करा के युवाओं के लिए डिजिटल युग के लिए तैयार करो जा रहा है।
0: और सबसे अच्छी बात जहाँ मैं कहा है कि भैया मान लो हमारे कोई युवा भैया ने कोई तकनीकी ज्ञान प्राप्त करो, जैसे कि आपने कही कि ITI वगैरह करके जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उससे संबंधित वे अपनों व्यवसाय रोजगार कर सकते हैं, तो वो रोजगार शुरू करने के लिए सरकार के द्वारा उनके लिए धनराशि भी प्राप्त कराई जाती है लोन के रूप में कि

0: अगर आप अपनों को स्वरोजगार करना चाह रहे हो तो सरकार की तरफ से आपको आर्थिक सहायता प्रदान करी जाएगी, जिससे कि आप अपनों काम धंधा शुरू कर सकें।
1: बिल्कुल। तो देखो जो भैया हमारे कृषि में वैसे तो देखी हुई कि खेती बाड़ी हो, बहुत से किसान भैया मैंने खेती बाड़ी कर रहे हैं, खेती जुड़े व्यवसाय अगर खेती ना कर पा रहे हैं तो जो खेती जुड़े व्यवसाय जैसे मुर्गी पालन है, बटेर पालन है, मौन पालन है, बत्तख पालन है, भेड़ बकरी पालन है, ऐसे व्यवसाय को करके भी अच्छी अपनी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। और अगर ऐसे व्यवसाय की बात करें तो भैया इनके लिए भी हमारी सरकार ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था करी है, लोन की व्यवस्था करी है और जाके लिए प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं। अगर किसान साथी जो हमारे भैया बहन हैं, युवा हैं, अगर उनमें भी भैया वो कौशल विकास के तहत जो है अपने प्रशिक्षण लेकर करेंगे तो निश्चित है ऐसे व्यवसाय को करके भी अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। और राकेश भैया देखो बातचीत तो अपने भैया बहनों से बहुत सारी होगी कार्यक्रम में, लेकिन अब समय हो चलो है कृषक गोष्ठी को।
0: तो भैया हम अपने कार्यक्रम में कृषक गोष्ठी सुनवाते हैं, तो आज कृषक गोष्ठी में प्रतिभागी हैं बाबूराम, हेमराज, अब्दुल वहीद और संचालन करो है हमारे तेजपाल भैया ने। सुनवाते हैं अपने भैया लोगों के लिए जा कृषक गोष्ठी।
2: कृषि गोष्ठी कार्यक्रम में सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप हैं भैया
3: हेमराज
2: कहाँ से हैं?
3: नौगमा वीरान, तहसील नवाबगंज, जिला बरेली।
2: आप?
4: हम अब्दुल वहीद अटकटर अब्बानी बेगम, तहसील नवाबगंज, जिला बरेली से।
2: जी आप बताएं।
5: हम भी नौगमा वीरान हैं।
2: नाम?
5: बाबूराम।
2: अच्छा, सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। अब्दुल वहीद जी, मैं जानना चाहूंगा पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है?
4: पढ़ाई लिखाई में इंटर मान लो।
2: अच्छा, इंटर तक पढ़े लिखे।
4: और पापा के साथ में खेती बाड़ी का कार्य कर रहा हूँ।
2: अच्छा, तो अभी खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं?
4: हाँ जी।
2: अच्छा, कौन कौन सी खेती बाड़ी होती है आपके यहाँ?
4: मेरे यहाँ खेती बाड़ी गन्ने का, धान का और गेहूं का और लाई वगैरह जो है।
2: धान, गेहूं, गन्ना की फसल ज्यादा होती है
4: जी।
2: अभी आपके खेत में कोई फसल खड़ी हुई है?
4: जी, गन्ने की फसल खड़ी हुई है।
2: अच्छा, धान लगाए?
4: हाँ धान लगाया।
2: अच्छा, कौन सी किस्म के धान लगाए?
4: धान मैंने सरबती लगाई है।
2: अच्छा, धान लगाने से पहले आपने खेत की तैयारी कैसे की?
4: खेत की तैयारी जुताई करना पड़ती है। जुताई करने के बाद फिर गोबर की, जैसे जो कृषि कार्य में जैसे होता है, डेयरी फार्म कर लो या वैसे अपने जो भी, उससे आपको लाभ अच्छा मिल जाएगा।
2: अच्छा, यानी कि खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन करना बहुत जरूरी है।
4: हाँ जरूरी है।
2: तो पशुपालन आप करते हैं?
4: अभी दो ही भैंसे हैं।
2: अच्छा, पशुपालन करते हैं तो पशुपालन से लाभ है?
4: हाँ पशुपालन से लाभ है, मगर कम पशु होने से कार्यकाल हल्का रहेगा, ज्यादा पशु होंगे तो कार्यकाल अच्छा रहेगा।
2: भैया हेमराज, जो खेती बाड़ी तो करते हो गए आप?
3: हाँ जी, खेती बाड़ी करते हैं।
2: पशुपालन भी करते हो?
3: हाँ पशुपालन भी करते हैं।
2: अच्छा, कौन कौन से पशु हैं आपके पास में?
3: भैंसे हैं दो।
2: अच्छा, दो भैंसे हैं। अच्छा, दूध हेरो है?
3: हाँ, एक भैंस दूध दे रही है, सुबह को 6 लीटर, शाम को 4 लीटर।
2: अच्छा, 10 लीटर दूध भैंस दे रही है। दूसरी भैंस?
3: दूसरी भैंस अभी तैयार नहीं है।
2: अच्छा, गाभिन है?
3: गाभिन भी नहीं है।
2: अच्छा, जो दूध आपके यहाँ पर हेरो है, वह दूध को खाने पीने में इस्तेमाल कर लेते हो या कुछ बेच देते हो?
3: उसको सुबह का दूध जो है दूध वाले को दे देते हैं, दूधिया लोग आते हैं हमारे यहाँ पर।
2: अच्छा।
3: और शाम का अपने लिए यूज करते हैं।
2: तो फायदे हैं पशुपालन से?
3: अनेक फायदे हैं, इससे गोबर की खाद भी बनती है, अपना भी खर्चा चलता है।
2: यानी कि समय रहते जैसे कि जरूरत होए गोबर की खाद की तो खेत में पड़ जाता है?
3: हाँ, खेतों में डाल सकते।
2: और घरेलू खर्चा जैसे कि बाजार हाट के खर्चा है, खेती बाड़ी के कुछ खर्चा है, जो निकलते रहते हैं?
3: हाँ सब निकलते रहते।
2: तो पशुपालन से फायदे हैं?
3: पशुपालन से अनेकों फायदे हैं।
2: अच्छा, पशुपालन आप जो कर रहे हो तो पशुओं को हरे चारे के रूप में खिलाने के लिए कौन कौन सी फसलें बोते हो?
3: इसमें चरी है, बाजरा है, बरसीम है।
2: अच्छा, ये फसलें बोई जाती हैं हरे चारे?
3: बोई जाती हैं। और हरे चारे के साथ में भूसे के साथ में चोकर वगैरह भी दे सकते हैं आप?
2: चोकर है, खली है,
3: हाँ,
2: दाना
3: खली,
2: है,
3: दाना सब दे सकते हैं।
2: बिल्कुल,
3: इससे दूध में थोड़ी मात्रा बढ़ जाएगी।
2: होना भी यही चाहिए, क्योंकि अगर हम पशुओं के खान पान को विशेष ध्यान रखेंगे तभी तो उनसे हमें दूध की मात्रा यानी कि दूध का उत्पादन अच्छा मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बरसात का मौसम चल रहा है।
3: हाँ जी।
2: और जब बरसात के मौसम में आप अपने पशुओं को कैसे ध्यान रख रहे हैं?
3: इसके लिए मच्छरों की देखभाल रखनी पड़ती है।
2: धुआं कर देते?
3: हाँ, धुआं भी करते हैं और पंखा भी चलाते हैं, जिससे हमारे पशु स्वच्छ रहें, साफ रहें, कोई बीमारी वगैरह ना आए।
2: तो बहुत अच्छी बात है आपने बताई। बाबूराम जी, आप बताएं जैसे कि आप की उम्र कितनी हो गई होगी लगभग?
5: हाँ, 60-62 है।
2: खेती बाड़ी कब से कर रहे हैं?
5: छोटे से पे कर रहे हैं।
2: अच्छा,
5: 4-5 साल से जा है कि बरिहानों कर देते हैं, 2-2.5 बीघा जमीन है, वहाँ बरिहानों कर देते हैं।
2: अच्छा, बरिहान यानी सब्जी वाली खेती?
5: हाँ,
2: भी कर
5: हाँ,
2: देते?
5: लौकी है, तुरई है, ये कर देते।
2: अच्छा, सब्जी वाली फसलों के अलावा और कौन कौन सी फसलें करते हो?
5: और कब 2 बीघा में और क्या कर रहे हैं? ज्यादा धान कर दो, गेहूँ कर दो।
2: अच्छा,
5: बरिहान ना करो धान गेहूँ कर देते।
2: हाँ,
5: 3-4 साल हो गई, इन साल समझ लो नुकसान हो गए। लौकी तो रही जो ही गाड़ी।

0: लेटा काट गए, झामो पूर दो, झामो पूर के ऊपर पहुंच गए, फले का फले टूटो, जरे सूख गो।
1: अच्छा,
0: दोबारा गाड़ी, मगर फिर भय वादा दुकान पर गए अपने की दवाई दो, पेड़ क्यों सूख रहे हैं, बोले हो सकत कीड़ा हो नीचे दीमक हो।
1: अच्छा,
0: तो उसने आधो लीटर फिर क्लोरो दी ही, फिर हमने इंजन चलाओ, इंजन चलाए पर पानी में सब टपकाई मुंह है, तो हमने कीड़ा वगैरह दीमक हो मर जाएगी।
1: अच्छा,
0: मगर कुछ ना लिख रू, फिर दोबारा हम बसू की, फिर हमने पेड़ खोद के देखे चतरे है काबला है, मगर न सुड़ी लिख रही न दीमक लिख रही, पेड़ वैसे सूख गए।
1: दूसरी बात ये है कि फसल सूखने के कारण यही रहते हैं कि कुछ हमारी जो जमीन है उसमें पोषक तत्वों की कमी रहता है, और पोषक तत्वों की कमी कैसे दूर हो, तो इस बात को समाधान के लिए तो हमें सबसे पहले हम अपने किसान साथियों से जय कहना चाहेंगे कि जो हमारे जो खेत की मिट्टी है उस मिट्टी की जांच जरूर करा लें, और जब हम जांच करा लेंगे तो हमें जब पता चल जाएगी हमारे खेत की मिट्टी में आखिर कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी हो रही है, तो उसी हिसाब से उसी मात्रा में अगर लगावेंगे तो हमें जो परिणाम जमीन के दूषित होने के मिल रहे हैं बिना मिलेंगे। तो जब कभी भी आप अब खेती करें, फसल की बुवाई करें, तो सबसे पहले मिट्टी की जांच जरूर कराएं। अच्छा अब्दुल बहेद जी, खेतीबाड़ी आप करते हो, और खेतीबाड़ी के साथ साथ हमारे जो किसान साथी हैं वो अन्य व्यवसाय यानी कि खेतीबाड़ी से जुड़े हुए, अन्य व्यवसाय खेतीबाड़ी से जुड़े हुए कौन से हैं, जैसे कि पशुपालन तो है ही है, दूसरा ये है कि कुछ मुर्गी पालन भी अगर कर लें, या मछली पालन कर लें, या भेड़ बकरी पालन है, अगर ये हमारे किसान साथी कोई ना कोई अगर साथ में रोजगार को लेकर चलेंगे तो जरूर लाभान्वित होंगे। तो क्या विचार हैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से जो किसान साथी सुन रहे हैं आपके लिए, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहते हैं?
2: खेतीबाड़ी के साथ साथ अदर जो व्यवसाय होना चाहिए वो बिल्कुल आपकी बात से सहमत हैं कि व्यवसाय तो होना चाहिए। अदर जैसे मुर्गी पालन है, भैंस पालन है, बकरी पालन है, गांव के स्तर से कोई ऐसा कोई जानकार आदमी नहीं मिलता है कि उसे किसान को सही जानकारी के लिए बताए या कोई समझाए।
1: आप जो बता रहे हैं कि जानकारियों का अभाव, लेकिन हम तो कोशिश यही करते हैं अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से कि जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो हमारे किसान साथियों को मिलती रहें, और जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका भी लाभ समय रहते मिलता रहे। हेमराज जी, इस समय बरसात को मौसम चल रहा हो, पशुपालन आप करते हो, और जब बरसात के मौसम में पशुओं में संक्रामक बीमारियां ना हो, जैसे कि इसी मौसम में खुरपका है, मुंहपका है, ये बीमारियां उनको खतरा बनो रहता है, ये बीमारियां ना हो, इसके लिए क्या उपाय करते हो?
3: खुरपका मुंहपका एक बहुत ही भयानक बीमारी है, इससे बचने के लिए पशुओं को नियमित रूप से नहलाना चाहिए, सुबह और शाम में इन्हें अलग अलग जगह पर बदलना चाहिए जिससे उनके मुंह पैर साफ रहें, यही वजह है कि मुंहपका और खुरपका रोग से बच सकते हैं।
1: बिल्कुल आपने सही बात बताई, क्योंकि साफ सफाई को बहुत बड़ा महत्व है, जिस जगह पशु हम बांध रहे हैं, पशुशाला है, सार है, उसकी साफ सफाई होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि ये रोग ना हो, इससे पहले हमारे नजदीकी जो पशु चिकित्सा केंद्र हैं वहां जाके डॉक्टरों से सलाह लेकर अगर हम अपने पशुओं में समय से टीकाकरण करा देंगे तो इन बीमारियों के होने का खतरा ही नहीं रहेगा। तो हम तो यह सलाह देना चाहेंगे कि समय रहते अपने पशुओं में टीकाकरण अवश्य कराएं। बाबूराम जी, जैसे कि खेतीबाड़ी कर रहे हैं हमारे किसान साथी, और खेतीबाड़ी के साथ साथ अगर हमारे कुछ किसान साथी हैं जो वृक्षारोपण करके जैसे कुछ पापला लगा रहे हैं, कुछ लिप्टिस लगा रहे हैं, अगर इस तरीके की पौध तैयार करके और अपना जो है उसमें खेत में अगर लगा देते हैं तो इससे भी हमारे किसानों का को लाभ प्राप्त होता है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे?
0: इसमें का चारों ओर तो लिप्टिस लगी हुई है, अब दो ढाई बीघा में का लगा देंगे हम, चारों ओर लगी गई है लिप्टिस है, और बीच में कब देते हरियाणों में।
1: अच्छा,
0: दो साल तो हमने चरी और ढेंचा बो हो तो वो काफी बड़ो हो तो वो सब बाइम लोट बाई दो।
1: अच्छा, बात करें ढेंचा की, तो ढेंचा को तो हरी खाद,
0: हरी खाद हमारे दोनों चीजें बही।
1: अच्छा,
0: दो साल बही टेटन ना चमक रहो जब हमने खतवाई तो।
1: अच्छा,
0: हमने सारी जायज हरे चारा से खेती में दम बढ़ेगी, वैसे घूर घूर अगर पड़ रहा है तो।
1: अच्छा, कुछ हमारे किसान साथी पहले मोटे अनाज की खेती करते हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का।
0: हाँ, होती है।
1: और अब हमारी सरकार को जोर है कि जैसे पहले खेती हुए करती है ज्वार की, बाजरा की, मक्का की और जौटा की, उस हिसाब से अभी भी जो हमारे किसान साथी हैं वो मोटे अनाज की खेती करें, तो मोटे अनाज को आप जानते होंगे क्योंकि आप बता रहे हो कि उम्र भी आपकी जो है 60 के करीब है, तो आपने देखा होगा कि ज्वार, बाजरा, मक्का खाने से आदमी में क्या फायदे थे, तो वो

0: अब दोबारा करनी चाहिए।
1: बात तो करना चाहिए मगर वह होगी नहीं। अब
0: क्यों, अगर कोशिश करें तो ऐसा कौन सा काम है जो होगा नहीं।
1: एक आदमी कर दे वो तो होगी ना, सब लोग करें।
0: बस यही है कि एक ना करके किसान साथी हैं, थोड़ी थोड़ी अगर खेती अगर मोटे अनाज की भी करते रहेंगे तो क्या है उनके खान पान में सुधार होएगो। दूसरा ये है कि जब हमारा जब खान पान सही रहेगा तभी हम स्वस्थ रहेंगे, और जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम अपनी जो खेती बाड़ी के काम धंधे हैं वे अच्छे से कर सकते हैं। अब्दुल वहीद जी, जैसे कि आप ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं
1: जी
0: और गांव गांव हमारी सरकार के द्वारा बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, किसान सम्मान निधि है, आवास योजना के तहत आवास मिले हैं, उज्ज्वला योजना है, फसल बीमा योजना है, तो इनमें से किसी योजना का आप लाभ ले रहे हैं?
1: जी
0: कौन सी योजना का लाभ आपको मिल रहा है?
1: पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे
0: अच्छा, किसान सम्मान निधि आपको
1: इस
0: मिल रही है।
1: किसान
0: अच्छा, इससे कुछ फायदे
1: ये।
0: हैं? अच्छा, कुछ
1: हाँ, इससे
0: फायदे।
1: फायदा है, खेती बाड़ी में काम हो जाता है,
0: अच्छा, खेती बाड़ी में काम
1: हाँ
0: धंधे ले लेते हैं।
1: हाँ
0: अच्छा,
1: खाद
0: होना
1: पानी
0: भी
1: आ
0: ये
1: रहा
0: चाहिए
1: है,
0: कि अगर
1: सही
0: मान
1: है।
0: लीजिए समय रहते हमारे पास पैसा नहीं है तो ये पैसा अगर
1: आ रहा है, सरकार दे रही है तो अच्छा उसमें।
0: आप सब लोग कृषि गोष्ठी कार्यक्रम में उपस्थित हुए और आपके द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से किसान साथियों के लिए खेती बाड़ी, पशुपालन और सरकारी योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी आप लोगों ने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी।

0: देखो भैया, अबे हमने अपने किसान भैया के लिए कृषक गोष्ठी सुनवाई, और कृषक गोष्ठी में हमारे संचालन करोहो तेजपाल भैया ने बहुत ही अच्छे ढंग से, जो हमारे प्रतिभागी आए हैं बाबूराम, हेमराज, अब्दुल वहीद, उनने अपने अनुभव और विचार साझा करे। जो भी हमारे किसान भैया जो कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, उनके लिए जरूर जानकारी प्राप्त हुई होगी, और जे अनुभव के लिए वे हमारे किसान भैया अपनी खेती बाड़ी में जरूर आजमावेंगे।
1: आजमावेंगे। और एक चीज तो भैया, एक बात हमने सीखी कि खेती के संग संग पशुपालन बहुत जरूरी है।
0: भैया जावत, आप सही कह रहे हो, लेकिन कहीं कहीं जा देखने को मिलती है हमारे किसान भैया का कहते हैं कि देखो घर हमारे छोटे छोटे हो जा रहे हैं, और भैंस वगैरह है या गाय है बांधन की व्यवस्था ना है, क्योंकि अगर हम भैंस पाल रहे हैं तो एक जगह तो हमारी भैंस बांधने के लिए कमरा होना चाहिए, फिर भूसा वगैरह रखने के लिए बाऊ को इंतजाम होना चाहिए, फिर जो गोबर वगैरह है या हम खाद के लिए गोबर अपने संचय करेंगे बाऊ के लिए जगह होनी चाहिए, इतनी जगह ना है तो हम पशु ना पाल सकते हैं। तो हम भी भैया से जा कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास में गाय या भैंस पालन की व्यवस्था ना है, जगह कम है, तो कम जगह वाले जो साधन हैं, जैसे कि आप मुर्गी को पालन कर सकते हो, अगर जगह थोड़ी और ज्यादा है तो आप बकरी को पालन कर सकते हो, जैसी आपके पास में जगह है और खेती से संबंधित जो काम आप खेती के साथ साथ कर सकते हैं वे काम को अपनाओ, जिससे कि आपकी आमदनी थोड़ी और ज्यादा बढ़ जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया। और जो कहते हैं कि भैया जगह ना गांव में जगह की कमी भैया आज ना है, देखिए कि भैया घेर अपने पड़े हैं, उनमें अपने पशु पाल सकते हैं, और घर के पिछवाड़े, जो आपने कही मुर्गी पालन वाली बात, तो घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन कर सकते हो, वो तो चुमके आ जाए शाम को अपने दरबार में आ जाए, और बाकी बात भैया उनके अंडा बेचो, आराम से बिक्री करो, और अगर मन कर लो खान को तो भैया खा भी सकते हो। और जो आपने कही कि भैया बकरी पालन करके भी, तो आपने देखो भैया बकरी का दूध तो महंगा बिकता है।
0: भैया जावत, आप सही कह रहे हो, जब बीमारियां चलती हैं तो लोग बकरी के दूध बहुत तलाश करते हैं कि हमें बकरिया का दूध मिल जाए, जिससे कि हमारी जाने का कहते हैं कि प्लेटें वेटे बढ़ जाती हैं।
1: हाँ बिल्कुल भैया, और उस समय दूध मिलना मुश्किल पड़ जाता है, और सोचते हैं कि पहले भैया का हो गया बकरिया हो बाकियाँ चल रहे हैं, तो बाकियाँ डिब्बू या कमंडल लेके जाते हैं और कहते हैं कि भैया हमें 3100 जरा दूध मिल जाए, तो अब 3100 हूं भैया फ्री में कहाँ मिले इनको, तो भैया फिर बाग भाव पत्र रखते हैं, अरे तो जो तो बड़ा महंगा दे रहे हैं। तो ऐसे व्यवसाय हैं जिनको हम करके अपनी आमदनी, अपने परिवार की तरक्की अच्छे तरीके से राकेश भैया कर सकते हैं।
0: अच्छा, एक व्यवसाय और है, जैसे हमारे बहुत से भैया ऐसे हैं जो कि मधुमक्खी पालन करते हैं, तो उनके लिए तो अपनी कोई विशेष जगह की आवश्यकता तो होती ना है, वे तो खेतने में जाके जो उनके जो मधुमक्खी पालन के बॉक्स होते हैं वे खेतने में जाके लगाते हैं वे, तो हमारे किसान भैया मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल कर सकते हैं, बस मन होना चाहिए, और बाकी ले आप प्रशिक्षण ले लो, और बाकी बाद में आप मौन पालन भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन भैया बातचीत तो देखो हुई रही राकेश भैया, लेकिन अब कुछ मन हो रहा गौनी बजनी को,
0: तो गौनी बजनी को मन आपको हिरो होगा। हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास में अपने कमेंट भेजते हैं और लोकगीत की फरमाइश करते हैं, अगर आप कहो तो बे भैयन के नाम हम

0: शामिल करें।
1: अरे अरे राकेश भैया, नेकी और पूछ पूछ कतई देर मत करो, कार्यक्रम में शामिल करो नाम।
0: देखो भैया जी, हमारे नियमित श्रोता हैं, आप समझ गए होंगे जिला बदायूं से। आप हैं दूने नगर जिला बदायूं से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया, मनोज कुमार, सत्येंद्र कुमार, गुड्डू, विशाल, संगम, वैभव, आदर्श, आदित्य, अमित, रेणु, कुमकुम, नित्या, सरिता और अंतिमा। इसके साथ ही साथ दूसरे हमारे साथी हैं कटरा चांद खां, मौर्य मंदिर, वार्ड नंबर 11, पुराना शहर वर्ली से। आप हैं अनोखीलाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही, स्वाति मौर्य। और इसके साथ में जो अगली कमेंट हमारे पास में आई है, आप हैं जीएम रोड लखना दौन जिला सिवनी मध्य प्रदेश से, लाडलाजी चौबे, रिमझिम चौबे, रानू चौबे, सागर मध्य प्रदेश से, हिमानी तिवारी, भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा आप लिख रहे हैं। कोई भी लोकगीत आप अपनी पसंद के आधार पर सुनवाने की कृपा करें।
1: और कुछ भैया फरमाइश हमें सोशल मीडिया के माध्यम से मिली है और जो फरमाइश भेजी है, चौखड़ा धाम कॉलोनी सनावत जिला खरगोन से मध्य प्रदेश से लिखने वाले हैं कृष्णपाल सिंह चौहान, तारा देवी चौहान, नव उदित सिंह चौहान, वैभवपाल सिंह चौहान, बेबी ध्रुवी और प्रद्युम चौहान। और जे फरमाइश से लिख के भेजी, ग्राम कोठा खंडुआ आंवला बरेली से रामबाबू मिश्रा, कृष्णा देवी, दिलीप मिश्रा, माधुरी मिश्रा, प्रदीप मिश्रा, सविता देवी, सत्यम मिश्रा, शीतल मिश्रा, राधा सलोनी, शिवम और इनके परिवार के सभी सदस्य। और आप हैं नसीब रेडियो श्रोता संघ नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से, अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब, अब्दुल हक डावर और जिया उल हक, और भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी जी।
0: और इसी के साथ ही साथ हमारे पास में कुछ कमेंट और आई हैं। आप हैं ग्राम मलगांव विकासखंड आरमपुर जाफराबाद जिला बरेली से, कमल सिंह, धर्म सिंह, अर्जुन सिंह, धनवीर सिंह, सुमन देवी, स्वाति, सीमा, कंचन और उमा। ग्राम इस्लामगंज जिला बदायूं से आप हैं वसंत लाल शर्मा, कुलदीप शर्मा, मदन शर्मा, रेणु शर्मा, नीरू, संगम, सपना, लवि और परिवार के सभी सदस्य। परा वहाउद्दीनपुर जिला बरेली से आप हैं सुनील श्रीवास्तव, सत्यपाल श्रीवास्तव, धर्मपाल, आकाश, मुनिंदर, मोनू, सुरेंद्र और अमन। ग्राम चंपतपुर पोस्ट बल्लिया जिला बरेली से वीरपाल सिंह, पवनदेव, देवांश, सुमन देवी, भरत कुमार, मुकेश, आप सबकी फरमाइश, आप लोगों ने फरमाइश करी है कि प्यारो से लोकगीत हमें सुनवाओ जाए। इसके साथ ही साथ भैया और कौन कौन से साथी हैं?
1: बिल्कुल भैया, जो फरमाइश हमको मिली है, मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नवेद सुहेल हसन अब्बासी, अनम यसफ अब्बासी और रसीद बारसी की।
0: तो आप सबकी फरमाइश पे सुनते हैं जब प्यारो से लोकगीत।

0: देखो भैया, अब हमने अपने भैया की फरमाइश के आधार पर प्यारों से लोग भी सुनवाओ, और लेकिन हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जिनके नाम अभी हम ना पढ़ पाए हैं, वे शिकायत करते होंगे कि राकेश भैया ने हमारे नाम शामिल ना करे हैं, तो भैया उन साथियों के भी नाम हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। आप हैं अशरफ खा छावनी होली चौक बरेली से, राम प्रसाद शर्मा, जय श्रीदेवी, वंदना, मनोरमा, अजय, विनोद, रीता, वंश और कनिष्क का।
1: लखनाथ मंदिर के सामने बरेली से बेंचीलाल गंगवार, गुड्डी देवी, प्रशांत देव, ज्ञानेंद्र देव, इला देवी गंगवार, संजय अग्रवाल, बर्फा देवी, सुनील यादव, रमेश चंद सैनी, पूरन चंद जोशी, राज और उनके परिवार के सभी सदस्य, छबीलपुर गुंडौर से आप हैं हरबेज कश्यप, अर्जित दिव्यांश, और डोंगरपुर छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये और इनके परिवार के सभी सदस्य।
0: तो आप सबकी फरमाइश के आधार पर हम आपको सुन पाते हैं दूसरों प्यारों से लोकगीत।

0: तो राकेश भैया, आपने तो बिल्कुल सावन क्योंकि नज़दीक है और बिल्कुल सावन की याद दिला दी। हम वहाँ तो पड़ गए, झूला तो पड़ गए मुआ की डाल पे। और अब भैया देखो, समय हो चलो है कृषि पाठशाला को।
1: तो देखो भैया, कृषि पाठशाला में भी कृषि से संबंधित जानकारियां होती हैं, जाके प्रायोजक हैं IBRI बरेली।
2: ग्राम जगत कार्यक्रम के इस खास सेगमेंट रेडियो कृषि पाठशाला के प्रायोजक हैं भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान IVRI, इज्जत नगर बरेली।
3: किसान साथियों, राम राम। आज के कृषि पाठशाला कार्यक्रम में आज का विषय है खरीफ फसलों हेतु पशु अवशिष्ट से तैयार जैव उर्वरक संवर्धित जैविक खाद। और इस विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर MB रेड्डी। आप IVRI बरेली से कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और एक और मेहमान हैं हमारे साथ, आप हैं किसान साथी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से आए हैं आप, नाम क्या है आपका?
4: अमर प्रकाश गंगवार, ग्राम बपोर सौड़ा, तहसील मीरगंज, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ।
3: डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद।
3: अमर प्रकाश जी, सबसे पहले क्या सवाल है आपका डॉक्टर साहब से?
4: डॉक्टर साहब, आपसे मेरा एक सवाल है
5: जी।
4: जैविक उर्वरक क्या होता है?
5: जैविक उर्वरक हमारे जो जमीन में तमाम तरीके की सूक्ष्म जीवी उपलब्ध होते हैं, उसमें से बहुत सारे ऐसा सूक्ष्म जीवी है वो आपकी खेतों के जो फसल के लाभदायक भी है, आते हैं रासायनिक उर्वरकों को डालते हैं, उसको थोड़ के जो भोजन बना के हमारे पौधों को उपलब्ध कराने के लिए जो सहायता करते हैं उसको जैव उर्वरक बोलते हैं। इसी से जो खाद बनती है उसी को हम बोलते हैं जैविक उर्वरक अभिसिंचित खाद।
3: अमर प्रकाश जी, डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छे ढंग से आपको बताया कि जैव उर्वरक क्या होता है। अच्छा, आप क्या जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से,
4: इसको प्रयोग कैसे करना चाहिए?
5: सबसे पहले हम तो बीज की उपचार के रूप में भी दे सकते हैं। जो निर्दिष्ट सूक्ष्म जीवियों के जैव उर्वरक है उसके जो मात्रा निर्धारित है उसी के अनुसार हम प्रयोग करना है बीज उपचार के माध्यम से। और दूसरा तरीका है, हम इसको

0: तो जिस फसल में रुपाई के माध्यम से हम उगाते हैं, जैसे कि हमारा धान है और गन्ने भी है, उसमें जो घाटे लगाते हैं, उस जैसे फसल को हम क्या कर सकते हैं, वो जो रुपाई करने से पहले जो जड़ को उपचार करके भी आप वो फसल को लगा सकते हैं, मतलब रुपाई कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे बेहतर तरीका आते हैं, आप सीधा भी प्रयोग कर सकते हैं, और उसके साथ सीधा सीधा प्रयोग करने के समय हम गोबर के साथ अभिसिंचित करके इसको प्रयोग करना उचित और बेहतर तरीका माना जाता है।
1: तो किसान साथियों, आप सब भी आज जान रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने बताया कि तीन तरीके से हम जैव उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं, बीज उपचार करके और जड़ों का शोधन करके और सीधे गोबर की खाद के साथ मिला करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। जी अमर विकास जी, और क्या सवाल है आपका?
2: गोबर के खाद के कैसे अभिसिंचित करना चाहिए?
0: जैसे इसको अभिसिंचित करने के लिए गोबर के साथ सबसे पहले अच्छे सड़ी हुई गोबर को हम लेना है, और जो सड़ी हुई गोबर का जो ढेर बनाना है, ऐसा जगह जिसमें हमेशा छाया बना रहे। तो उसके बाद उसमें जैसे कि 200 केजी अगर आपने सड़ी हुई गोबर लिया है, उसमें लगभग 2 केजी की मात्रा में जैव उर्वरक की कल्चर लेना है, मदर कल्चर। उसको अच्छे से वो हम खाद के साथ मिलाना है, और उसके बाद अगर हमें लगे वो जो खाद सूखा है, तो हम थोड़ा सा पानी उसके ऊपर छिड़काव करना चाहिए, ताकि जितना नमी, सही नमी उसमें रहे और उसका विकसित के लिए, जो हमारे सूक्ष्म जीवी बढ़ाव के लिए वो उपयोग हो जाए। और इसके बाद भी हम जो उसके जो ढेर बनाया है, उसको हम गन्नी बैग, जो जूट की बोरी मिलते हैं, उस बोरी के सहायता से उसको ढकना चाहिए, ताकि उसमें हमेशा नमी बना रहे। और जब भी पानी देना है, तब वो बोरी के ऊपर से, बोरी हटा के पानी नहीं, छिड़काव नहीं करना है, बोरी के ऊपर से ही छिड़काव करना चाहिए, ताकि वो जो हार्ड नहीं बन पाए, कि जो जम ना जाए। 10 दिन के अंतर आपकी जो सूक्ष्म जीवी का संख्या बढ़ के वो हम खेत में विनियोग करने लायक हो जाए।
1: जी, तो बहुत ही अच्छे ढंग से डॉक्टर साहब ने बताया है अमर प्रकाश जी कि किस तरह से गोबर की खाद के साथ मिला करके इसका प्रयोग कर सकते हैं हमारे किसान साथी। अब हम देख रहे हैं कि कुछ और भी आप जानना चाह रहे हैं।
2: अगला सवाल मेरा और यही है कि प्रयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: सबसे पहले जो जैव उर्वरक है, अधिक तापमान या धूप से उसको बचाना बहुत जरूरी है। इसको शाम की समय पे ही खेत के ऊपर छिड़काव करना है, बिखेरना है। उसके बाद अगले दिन सुबह सुबह जाके हम खेत में जुताई के आखिर जुताई पे इसको मिलाना चाहिए। ये सबसे पहले मतलब जो सावधानियां हमको याद रखनी है। और इसके साथ जब बनाने की टाइम है, जो अच्छी सड़ी हुई जो गोबर को ही प्रयोग करना चाहिए, वरना उसमें जो जो हीट होते हैं, गर्मी होते हैं, उसकी वजह से ये जो सूक्ष्म जीवी है, मरने की भी संभावना है। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी इसको रासायनिक कीटकनाशियों या फफूंदनाशकों के साथ मिला के हम कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए हमारे खेत में, क्योंकि हमारे सूक्ष्म जीवी को नष्ट कर नष्ट हो जाएगा उसके भी, मतलब कहीं पानी ना पहुंच पाए उस जगह पे हम लोग इसको बनाना चाहिए।
1: मुख्य बात डॉक्टर साहब ने ये बताई है कि सावधानी जो रखनी है वो कीटनाशकों या फिर जो फफूंद नाशक दवाइयां हैं उनके साथ इसका प्रयोग कभी भी नहीं करना है। और क्या सवाल है आपका?
2: अगला सवाल एक और है, छोटे और सीमांत किसान कम लागत में जैविक खाद कैसे तैयार कर सकते हैं?
0: तो जो गोबर या उसका जो मूत्र प्राप्त तो होते हैं हमारे पशुपालन की पशुओं से, उसी को हम ये जो सीधा खेत में प्रयोग करने से भी बेहतर है, उसमें जैविक उर्वरक के साथ उसको अभिसिंचित करके करिए। और इसके जैसे अब आपने अभिसिंचित करेंगे, तब उसका गुणवत्ता और उसमें पोषक तत्वों को उपलब्ध करना की क्षमता भी बढ़ने की संभावना है।
1: इस तरह से किसान साथियों को अमर प्रकाश जी आपको ध्यान रखना है। आप बहुत महत्वपूर्ण सवाल डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं हमारे किसान साथियों के लिए। और क्या कुछ जानना है डॉक्टर साहब से?
2: एक लास्ट सवाल और है आखिरी मेरा, सरकार द्वारा जैविक खाद या जैव उर्वरक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं?
0: जो नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसके अंतर्गत जो जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए, इसको सस्ते सस्ते मात्रा में मतलब मिलने के लिए प्रबंध किया गया है। इसको हमें जो कहाँ से मिलते हैं, जो सबसे पहले है, आपको एटीएम बीटीएम से संपर्क करिए, उधर से बहुत सस्ता है इसका। 1 किलो का ऐसे 40 रुपये 50 रुपये का मात्रा में मिलते हैं, इस महंगा वाले चीज़ है नहीं। उसके बाद कृषि विश्वविद्यालय में भी मिलेगा आपको, और या इफको एंड क्रिप्को भी है। इसके अतिरिक्त आपका जो हमारे केंद्र सरकार की कृषि अनुसंधान संस्थान, जितने भी यूनिवर्सिटीज है और प्रयोगशाला है, उसमें भी मिलेगा।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात डॉक्टर।

0: सब आपने बताई है।
1: जैविक खाद लगाने से हमको किस किस चीज का फायदा मिलता है इसे?
0: जैविक उर्वरक को विनियोग करने में बहुत सारे तमाम आपकी लाभ है। जो सबसे पहले आते हैं, हमारा जो मिट्टी में जो उपलब्ध वाले जो रसायन उर्वरक आप डालते हैं, उसको हमारे पौधे को उपलब्ध कराने की सबसे प्रमुख भूमिका निभाते हैं हमारा सूक्ष्मजीवी। वो सूक्ष्मजीवी जो मिट्टी में आपने जो डाला रसायन उर्वरक, उसको तोड़ के उसको जो अनुपलब्ध से उपलब्ध तरीके में बदलने के लिए सबसे बड़ा काम करते हैं हमारा सूक्ष्मजीवी, जो आप जैव उर्वरक के साथ देते हैं। और उसके साथ जो हमारे जमीन के साथ, आप इसको जब गोबर के साथ अब सिंचित करके विनियोग करेंगे, तब उसमें आपकी जैविक कार्बनिक पदार्थ हमारे इस मिट्टी में बढ़ जाएगा। और उसके साथ साथ भी हमारे जो मिट्टी का जल को धारण का क्षमता भी बढ़ेगा। और इसके जो पोषक तत्वों के अलावा जो विटामिन्स मिनरल्स जो पौधे की अच्छे पैदावार के लिए जरूरत होते हैं, वो सब उपलब्ध कराने में इसका प्रमुख भूमिका है। और इसके साथ आपका जो निर्भरता रसायनों को उर्वरक के ऊपर 25 से लेकर 30% का निर्भरता भी घटने की संभावना है। और आपकी पैदावार भी 25 से 30% पैदावार भी बढ़ने की संभावना भी है। और इसका सबसे जड़ हमारे जड़ जो पौधे का जड़ होते हैं, वही ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसको विकसित होने में जो हमारे जैविक उर्वरक के द्वारा जो दिया है सूक्ष्म जीवी, वो जड़ की विकसित करने के लिए बहुत अच्छा प्रयोग काम करते हैं। और इसके जब विकसित हो जाएगा हमारा जड़ का, तो तमाम तरीके का जो पोषक तत्व लेने का क्षमता और पानी लेने का क्षमता, ये सब बढ़ते हैं पौधे में।
2: भाई उत्पादन बढ़ने की संभावना आपने 25 से 30% व्यक्त की है,
0: जी
2: तो एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है। अमर प्रकाश जी, डॉक्टर साहब आपके हर प्रश्न का बड़ी सटीकता से जवाब दे रहे हैं और बहुत अच्छी बातचीत हम लोगों की हो रही है। क्या और कोई सवाल बचा है अभी आपके पास?
1: अगला सवाल एक और है, जैविक उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं?
0: जी अमर प्रकाश जी, आपने बहुत बेहतर क्वेश्चन पूछा है, सवाल पूछा है। जो नत्रजनी बैक्टीरिया को यूज करते हैं हम, इसके साथ जो मिट्टी में जो अनुपलब्ध फास्फोरस है उसको वो उपलब्ध कराने के लिए हमने फास्फो बैक्टीरिया यूज करते हैं। और इसके लिए तो पोटेशियम सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया भी उपलब्ध है। अजोस एजोटोबैक्टर अजोस्पाइरिलम है, ये जो नत्रजनी को स्थिरीकरण करेगा हमारे फसल के जड़ में, ये नत्रजनी के लिए यूज करते हैं। और इसके साथ एनपीके कंसॉर्शिया है, इसमें एक कंसॉर्शियम ऐसा है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, तीनों पोषक तत्वों को जो मिट्टी में से उपलब्ध कराने के लिए चाहिए है जो सूक्ष्म जीव, वो सब मिल जाते हैं, ये सभी होते हैं उसमें। इसके अलावा भी आप जो वैम बोलते हैं माइकोराइजा है, वो आपकी जड़ विकसित में भी प्रोस्ता मतलब अच्छा काम करेगा, और पानी को बनाए रखने के लिए भी मिट्टी में ये भी काम करेगा। इस तरीके के जैव उर्वरक अब उपलब्ध है।
2: और अमर प्रकाश जी, आपने बहुत ही सटीक सवाल डॉक्टर साहब से पूछे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से डॉक्टर साहब ने उन सभी प्रश्नों के जवाब आपको दिए हैं। आपके साथ साथ हमारे वो सभी किसान साथी जो इस तरह की जानकारी चाहते थे, आज के इस कृषि पाठशाला से जरूर लाभान्वित होंगे, ऐसी आशा करते हैं। और अब आज की इस कृषि पाठशाला को यहीं संपन्न करते हैं। किसान साथियों, आज की कृषि पाठशाला के इस अंग का विषय था खरीफ फसलों हेतु पशु अपशिष्ट से तैयार जैव उर्वरक संवर्धित जैविक खाद, और विषय विशेषज्ञ थे डॉक्टर MB रेड्डी। आप IVRI इज्जत नगर बरेली से कार्यक्रम में शामिल हुए, और शामिल हुए हमारे एक किसान साथी श्री अमर प्रकाश गंगवार जी, ग्राम सहोड़ा जिला बरेली से। तो आप दोनों ही महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: ग्राम जगत कार्यक्रम के इस खास सेगमेंट रेडियो कृषि पाठशाला के प्रायोजक थे भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान IVRI इज्जत नगर बरेली।
4: और अब कार्यक्रम ग्राम जगत से अपने भैया कृष्णपाल
5: और अपने भैया राकेश शर्मा को दो अनुमति। भैया बहनों,
4: राम
5: राम, राम।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली के प्रसारण और थोड़ी देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

0: लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपके रेडियो सेट पे, न्यूज ऑन AIR ऐप से आपके स्मार्टफोन और DTH पर आप आकाशवाणी लखनऊ का ये प्रसारण सुन रहे हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक

मुख्य समाचार। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सीईओ के चयन के लिए दिया एक महीने का अतिरिक्त समय। धार्मिक समिति के पुनर्गठन और प्रवक्ता की नियुक्ति को दी मंजूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर व्यक्त की चिंता, कहा युवा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बाढ़ से बचाव की तैयारियों को परखा, बाढ़ चौकियों को सक्रिय रखने और बीमारियों से बचाव के लिए विशेष सतर्कता बरतने के दिए निर्देश।

0: से बचाव के लिए विशेष सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। और प्रदेश के 10 एथलीट राष्ट्रमंडल खेलों में करेंगे देश का प्रतिनिधित्व। ग्लासगो में कल होगा आयोजन का शुभारंभ। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या के श्री मणिरामदास छावनी में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में मंदिर प्रबंधन, चढ़ावा व्यवस्था, सीईओ की नियुक्ति, ट्रस्ट के रिक्त पदों और धार्मिक समिति के पुनर्गठन समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। ट्रस्ट के महासचिव कृष्ण मोहन ने बताया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के चयन के लिए गठित समिति ने आवेदनों की अधिक संख्या और प्रक्रिया की गंभीरता को देखते हुए एक महीने का अतिरिक्त समय मांगा था, जिसे ट्रस्ट ने मंजूरी दे दी है। तब तक प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रखने के लिए एक सचिव की नियुक्ति को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
1: एक उपयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी का चयन करने के निमित्त गठन समिति ने भारी संख्या में आवेदन प्राप्त होने से चयन में अधिक समय की आवश्यकता बताते हुए एक माह का अतिरिक्त समय मांगा है। विषय की गंभीरता और परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए न्यासी मंडल ने यह अनुरोध स्वीकार किया है। न्यास ने आगामी कालखंड में श्रद्धालुओं की संख्या में संभावित वृद्धि को देखते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति में इस विलम्ब के कारण एक सचिव की नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की है।
0: ट्रस्ट ने साफ किया कि राम भक्तों की आस्था पहले की तरह अटूट है और मंदिर में दर्शनार्थियों की संख्या लगातार बनी हुई है। बैठक में चढ़ावा गणना व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। मीडिया के माध्यम से नियमित संवाद बनाए रखने के लिए ट्रस्ट ने आधिकारिक प्रवक्ता नियुक्त करने का भी फैसला किया है। ट्रस्ट ने धार्मिक समिति के पुनर्गठन का भी फैसला लिया है। इस समिति की अध्यक्षता स्वामी गोविंद देवगिरी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार विद्यार्थियों की आकांक्षाएं पूरी करने और युवा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
2: अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी।
0: रक्षा मंत्री ने संसद में विपक्ष के हंगामे पर कहा कि सरकार ने प्रत्येक मुद्दे पर सार्थक बहस करने की इच्छा व्यक्त की है, लेकिन विपक्ष सड़कों पर उतरकर मुद्दों को उलझाने का प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नेतृत्व में आज पार्टी कार्यकर्ताओं ने विपक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन कल नीट पेपर लीक मुद्दे पर प्रधानमंत्री आवास के बाहर किए गए प्रदर्शन के विरोध में किया गया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक राजनीतिक दल को अपनी बात रखने और विरोध दर्ज कराने का अधिकार है, लेकिन देश की संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखना प्रत्येक जनप्रतिनिधि का दायित्व है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष छात्रों के नाम पर राजनीति करने का काम कर रहा है।
3: जो लोग संसद का छात्रों के नाम पर गुमराह करके, घेराव करके अव्यवस्था अराजकता पैदा करना चाहते हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। ये लोग भारत के लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं। ये कांग्रेस प्रधानमंत्री जी के आवास को घेरती है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करती है। कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, आपने कल और परसों के इनके पूरे के पूरे षड्यंत्रों को देखा है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले के विकास कार्यों, बाढ़ बचाव और जल निकासी के तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने जल निकासी के प्रबंध पर जोर देते हुए कहा कि जल भराव की समस्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के

0: प्रयोग को रोका जाए ताकि इससे नाले चोक न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ चौकियां सक्रिय रहें और बाढ़ से प्रभावित होने वाले गांवों में बीमारियों से बचाव के लिए विशेष सतर्कता बरती जाए। इससे पहले मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बूथ सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति पूरी दुनिया की धारणा बदली है। श्री योगी ने कहा कि भाजपा ने सबसे बड़े दल के रूप में सुशासन और लोक कल्याण के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं।
1: भारतीय जनता पार्टी ने दुनिया के अंदर एकमात्र एक राजनीतिक दल के रूप में, सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में, मूल्य और आदर्शों पर विश्वास करते हुए सुशासन लोक कल्याण के नए प्रतिमान स्थापित करते हुए दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में अपनी एक मजबूत उपस्थिति प्रस्तुत की है। दल से बड़ा देश केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कह सकता है, कोई अन्य दल का व्यक्ति नहीं कह सकता।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में मेधावियों को पदक प्रदान किए। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों का दायित्व केवल शिक्षा देना ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों में सही सोच और राष्ट्रहित की भावना विकसित करना भी है। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ का आज बागपत के बड़ौत में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण भी मौजूद रहे। श्री अरुण ने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बधाया। 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी श्री धनखड़ का शव 20 जुलाई को अगरतला स्थित पुलिस मुख्यालय में मिला था। ग्लासगो में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों का कल से शुभारंभ होगा। 2 अगस्त तक चलने वाले इस आयोजन में उत्तर प्रदेश के 10 एथलीट भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इनमें 2 खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स में हिस्सा लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: गुलवीर सिंह 5000 मीटर और 10000 मीटर दौड़ में पदक के लिए 2 आजमाइश करेंगे। प्रयागराज के कुलदीप कुमार पोल वॉल्ट और जौनपुर के रोहित यादव भाला फेंक में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टेपल चेस और 5000 मीटर दौड़ में भाग लेंगी। वहीं प्रियंका गोस्वामी 10000 मीटर की पैदल चाल और नीरू पाठक 400 मीटर की रिले दौड़ में प्रतिस्पर्धा करेंगी। यूपी पुलिस की अस्मिता डे जूडो और आगरा के आदित्य प्रताप सिंह बॉक्सिंग में दम दिखाएंगे। लखनऊ के श्रियांश त्रिवेदी और भदोही के सागर पैरा एथलीट के रूप में भाग लेंगे। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रदेश में बीते 3-4 दिनों से हो रही बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित है। वहीं कई जनपदों में नदियां उफान पर हैं। लखीमपुर खीरी के पलियाकला में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बाराबंकी में घाघरा नदी भी खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। गौतमबुद्ध नगर में हिंडन और यमुना नदी में बाढ़ की आशंका को देखते हुए सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व अजीत कुमार सिंह ने बताया कि जिले में 18 बाढ़ चौकियां और 18 बाढ़ शरणार्थी स्थल बनाए गए हैं। प्रशासन की टीमें सतर्क हैं और जल भराव वाले इलाकों में सहायता पहुंचाई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक कल से 25 जुलाई के बीच प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सीईओ के चयन के लिए दिया 1 महीने का अतिरिक्त समय। धार्मिक समिति के पुनर्गठन और प्रवक्ता की नियुक्ति को दी मंजूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर व्यक्त की चिंता, कहा युवा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बाढ़ से बचाव की तैयारियों को परखा। बाढ़ चौकियों को सक्रिय रखने और बीमारियों से बचाव के लिए विशेष सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। और प्रदेश के 10 एथलीट राष्ट्रमंडल खेलों में करेंगे देश का प्रतिनिधित्व। ग्लासगो में कल होगा आयोजन का शुभारंभ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं। 100.5

0: 4 MHz पर लीजिए, सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक
2: रोहेलखंड का आधुनिकतम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल गंगाशील हॉस्पिटल दीदीपुरम बरेली।
3: मानसिक तनाव, अत्यधिक चिड़चिड़ापन, सोचते सोचते खो जाना, याददाश्त की कमी, परेशान रहना, रोज के कार्य करने में असक्षमता, मेंटल ट्रॉमा जैसी किसी भी समस्या में परामर्श एवं सुझाव करें गंगाशील अस्पताल के मानसिक रोग विभाग में डॉक्टर अभिलाषा गुप्ता से।
4: कैंसर के इलाज का अति आधुनिक अस्पताल,
5: गुर्दे और पेशाब संबंधी बीमारियों के इलाज की सभी
6: महिलाओं के बांझपन और जठरानी की सभी बीमारियों के इलाज की सुविधा,
5: स्किन अथवा त्वचा के रोगियों का संपूर्ण इलाज,
6: 24 घंटे इमरजेंसी सेवा,
5: आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों के इलाज के लिए सरकार द्वारा अधिकृत अस्पताल गंगाशील हॉस्पिटल दीदीपुरम बरेली। इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल करें 8273254444।
7: रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है, और साथ ही स्वागत है हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद बरेली के फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद अकीक साहब का। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका।
8: जी नमस्कार।
7: डॉक्टर साहब आज कुछ खास है हमारे कार्यक्रम में बात करने के लिए, और खास मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सांस फूलना और दमा ये दोनों ऐसी टर्म्स हैं, ऐसे शब्द हैं, ऐसी बीमारियां हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी है कि सांस फूलना क्या होता है या फिर दमा की बीमारी क्या होती है। लेकिन जो तीसरा विषय हमने लिया है COPD, इसके विषय में थोड़ा कम सुना है, चूंकि ये हमें लगता है कुछ टेक्निकल शब्द हैं, तो हम सबसे पहले COPD के विषय में ही जानना चाहेंगे कि COPD क्या है, किस तरह की बीमारी होती है।
8: जी जी, COPD ये बहुत अच्छा टॉपिक है। COPD के जो मरीज होते हैं इनकी सांस फूलना बढ़ जाती है।
7: जी,
8: तो COPD जो पूरा उच्चारण उसका है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज करके हम बोलते हैं।
7: अच्छा।
8: और COPD और दमा एकदम अलग बीमारियां हैं।
7: अच्छा।
8: क्योंकि दोनों में सांस फूलती इसीलिए कोरिलेट करते हैं लोग कि ये भी वही दमा है हमको।
7: अच्छा।
8: COPD को इसीलिए कुछ लोग पहले काला दमा बोलते थे।
7: अच्छा।
8: काला दमा COPD को ही बोलते थे।
7: अच्छा।
8: COPD और दमा में अंतर बहुत जरूरी पता होना। दमा के मरीज ज्यादातर यंग होते हैं।
7: अच्छा।
8: यंग एज में होता है, और जो COPD होता है ज्यादातर ओल्ड एज में मिलता है।
7: अच्छा।
8: बूढ़े लोगों में। हाँ।
7: लेकिन दमा डॉक्टर साहब आप यंग बता रहे हैं, छोटे बच्चों को भी दमे की बीमारी देखी गई?
8: जी, छोटे बच्चों में, यही मैंने यंग बोला ना।
7: हाँ, हाँ।
8: कि छोटे बच्चों में और यंग एज के 25 साल 20 साल 15 साल 16 साल 4 साल 3 साल ऐसे बच्चों में जो है दमा की बीमारी होती है।
7: डॉक्टर साहब इसी बीच एक श्रोता आ गए लाइन पर, पहले इनकी बात सुन लेते हैं।
8: जी,
7: रेडियो हेल्पलाइन में आपका स्वागत है, अपना परिचय देते हुए प्रश्न बताएं।
9: जी
7: सत श्री अकाल जी।
9: और जी की गल है?
7: वो बढ़िया जी, बढ़िया।
9: बरेली से बोल रहे हैं?
7: हाँ, आकाशवाणी बरेली रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम में आपकी कॉल लगी हुई है। इस समय डॉक्टर मोहम्मद अकीक साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। दमा, सांस फूलना और COPD के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। आप बताइए आपका क्या प्रश्न है।
9: मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, और मेरी मतलब जैसे मैं खाना उना खाता हूँ मेरे पेट जो मतलब डबरा डबरा रहता है, मेरे ज्यादा गैस बनती है।
7: आज दमा और सांस फूलने की बात है, डॉक्टर साहब क्या बताना चाहेंगे, अपना परिचय दे दें भाई।
9: मैं आजाद सिंह बोल रहा हूँ, तहसील बहरी ब्लॉक नंदपुरा बारपुर से।
7: अच्छा अच्छा
8: जी, आजाद सिंह जी आपने जैसा पूछा कि खाना खाने के बाद आपका पेट फूल जाता है या गैस की समस्या है, आज हम लोग बात तो कर रहे थे कि दमा और COPD के बारे में, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसे ही कोई दिक्कत अगर है तो मैं गंगा चरण में फिजिशियन कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ, आपको खाना खाने के बाद ये समस्याएं अगर आ रही हैं तो आप वहाँ पे हमसे संपर्क कर सकते हैं।
7: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर साहब से मिल लीजिएगा हॉस्पिटल में आके, और इस कार्यक्रम के अंत में भी पता आपको बताया जाएगा, आप डॉक्टर साहब से मिल लीजिए, वहाँ आपको डॉक्टर साहब देख लेंगे और आपकी समस्या का समाधान कर देंगे।
8: जी
7: डॉक्टर साहब, हमारे कॉलर ने समस्या बताई,
8: क्योंकि
7: आप फिजिशियन हैं तो आप मल्टीपर्पज डॉक्टर होते ही,
8: इसीलिए सारी समस्या आ रही है। मैं आपको COPD के बारे में बता रहा था। तो COPD और जो दमा जिसको कहते हैं ब्रोंकल अस्थमा, अस्थमा के नाम से जाने जाते हैं, तो ये दोनों एकदम अलग बीमारियां हैं। वो यंग एज में होते, नए बच्चों में भी हो सकता है, उसमें सांस फूलती है और इसमें भी सांस फूलती है COPD में।
7: अच्छा।
8: लेकिन अगर साइंटिफिकली देखा जाए जो डॉक्टर लोगों के डायग्नोसिस के हिसाब से है तो काफी अंतर होता है COPD और दमा के मरीजों में।
7: अच्छा।
8: और उसको अंतर करना बहुत जरूरी है, और अंतर जो है डॉक्टर कई सारी जांचें करते हैं और सिम्टम के आधार पे करते हैं कि कोई COPD है या फिर दमा की बीमारी है। दमा की बीमारी का इलाज आमतौर से कोई भी इनहेलर अगर ले लेते हैं तो उससे आराम मिल जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है।
7: अच्छा।
8: या फिर कोई स्टेरॉइड की टेबलेट ले लिया उससे भी बिल्कुल ठीक हो जाता है
7: दमा
8: तुरंत आराम मिलता है।
7: हाँ।
8: लेकिन COPD का क्या है कि अगर आप ये इनहेलर ले रहे हैं फिर भी सांस फूल रही, दवाई ले रहे हैं फिर भी सांस फूल रही, स्टेरॉइड भी ले रहे हैं फिर भी सांस फूल रही, तो ये इसीलिए क्योंकि अंतर है बीमारी में। लंग्स के अंदर जो होता है कि जो दमा के मरीज होते हैं उसमें जो इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रोंकल्स के अंदर वो इररिवर्सिबल होता है। इररिवर्सिबल का मतलब होता है कि इन्फ्लेमेशन हुआ फिर वो ठीक हो गया।

0: तो जो ठीक हो गया दवाई से तो तुरंत उनको एकदम नॉर्मल हो गए।
1: अच्छा।
0: नॉर्मल फंक्शन करने लगा तो उनका सांस फूलना बंद,
1: यानी फेफड़े के अंदर की जो संरचना है उसमें सूजन आ जाती है।
0: जी जी। और इसमें जो होता है सीओपीडी में, इसमें क्या होता है, इररिवर्सिबल होता है।
1: अच्छा,
0: कि जितना ब्लॉकेज ऑब्स्ट्रक्शन हो गया सांस लेने में या छोड़ने में, दोनों में दिक्कत आती है। तो जो जितना दिक्कत हो गई वो हो गई। इसके लिए हम लोग एक स्पायरोमेट्री टेस्ट करते हैं जिससे पता चलता है कि सीओपीडी है कि ब्रोंकल अस्थमा है।
1: अगर उसमें हम अपने श्रोताओं को अगर समझाना चाहें तो सीओपीडी का मतलब ये हुआ कि ऐसी रुकावट फेफड़े के अंदर जो परमानेंट हो जाती है,
0: जी,
1: एक बार होने के बाद खत्म नहीं होती,
0: जी,
1: सांस के रास्ते में रुकावट पैदा हो जाती
0: जी। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सीओपीडी को हम लोग क्योर नहीं कर सकते, जड़ से नहीं खत्म कर सकते।
1: अच्छा।
0: उसको रोका जा सकता है
1: जी,
0: उसको प्रिवेंट कर सकते हैं हम लोग हैं, और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मतलब दवाइयों से उसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन उसको जड़ से नहीं खत्म कर सकते।
1: डॉक्टर साहब, वजह जरूर बता दीजिए हमारे श्रोताओं को, सीओपीडी जैसी बीमारी की वजह क्या होती है?
0: जी, इसके कई कारण हैं। जो आम कारण है जो होते हैं लोगों को सीओपीडी किस वजह से होता है, उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये है कि वो स्मोकिंग। स्मोकिंग इसका मेजर कारण है। जो बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो उनके लंग्स में ऐसा बदलाव आ जाते हैं जिसकी वजह से सीओपीडी हो जाता है। दूसरा कारण होता है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या होता है कि उसमें बहुत सारे कार्बन ऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ये ऐसे हैं केमिकल्स जो लंग को नुकसान पहुंचाते हैं।
1: अच्छा।
0: नुकसान पहुंचाते हैं जिसकी वजह से सीओपीडी हो जाती है।
1: अच्छा।
0: एक तीसरा कारण ये भी होता है कि बायोफ्यूल जो होता है।
1: अच्छा।
0: बायोफ्यूल जो होता है, जैसे कि घर पे अगर हम पहले के लोग करते थे कि चूल्हे पे खाना बनाते हैं,
1: अच्छा,
0: लकड़ी जलाते हैं जो धुआं निकलता है,
1: जी जी,
0: इससे भी जो है अब वहीं पे खाना बना रहे हैं तो उसका धुआं नाक के रास्ते, मुंह के रास्ते फेफड़ों में जाता है
1: जी।
0: और वो भी एक कारण होता था जिसकी वजह से सीओपीडी होता है। तो ये मोटे मोटे कारण हैं जिसकी वजह से सीओपीडी की बीमारी होती है।
1: अच्छा, लक्षण डॉक्टर साहब अगर हमारे श्रोता जानना चाहें किस तरह के लक्षण प्रदर्शित होते हैं।
0: जी, सीओपीडी दो बीमारियों के समूह को बोला है। दो बीमारी हैं उसको एक साथ सीओपीडी हो जाता है।
1: अच्छा।
0: एक होता है उसमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अच्छा। बोलते हैं, और एक होता है इम्फाइसीमा। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और इम्फाइसीमा दो चीजें होती हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में जो होता है कि जो ब्रोंकस है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन आ जाती है। ब्रोंकस जो हमारे सांस जिसमें हम जाती है, हवा जाती है,
1: यानी फेफड़े के अंदर जो सबसे छोटी संरचना होती है
0: उसमें सूजन आ जाती है।
1: उसमें सूजन आ जाती है जी।
0: और जो इम्फाइसीमा होता है उसमें क्या होता है कि फेफड़े इलास्टिसिटी चली जाती है।
1: पिचकने फूलने की जो क्षमता होती
0: है, जैसे गुब्बारा होता है ना
1: जी, जी,
0: कि उसका एक समय तक इलास्टिसिटी रहती है, पिचक जाता है।
1: हाँ,
0: लेकिन अगर उससे ज्यादा हो गया,
1: तो
0: फूल गया
1: जाता है,
0: तो फिर वो फट जाता है या फिर वापस नहीं आता। ऐसे ही लंग्स का होता है। तो ऐसे इलास्टिसिटी का अगर क्रॉस कर गए एक थ्रेशोल्ड वैल्यू को
1: जी,
0: तो लंग वो वापस नहीं आते।
1: अच्छा।
0: तो लंग वापस आना और दूर जाना, वापस आना, यही संरचना जिसी से हम ऑक्सीजन लेते हैं।
1: जी, जी।
0: अगर हमने हवा भर ली फिर वापस छोड़ ही नहीं पाए तो हवा ट्रैप रहेगी अंदर।
1: अच्छा।
0: और ट्रैप रहेगी तो दिक्कत आएगी। तो ये होता है इम्फाइसीमा।
1: अच्छा।
0: और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में सूजन आने की वजह से क्या होता है, उनको जो मेन सिम्टम होता है वो खांसी और बलगम।
1: अच्छा।
0: पहले बलगम बनता है क्योंकि वहां से अब कहीं सूजन होती है तो उसको ठीक करने के लिए इम्यूनिटी
1: जी
0: वर्क करती है, इम्यूनिटी वर्क करती है तो बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं, और उन केमिकल्स की वजह से क्या होता है, स्पुटम बलगम बनता है।
1: जी जी जी।
0: वो बलगम जब भरने लगता है ब्रोंकस के अंदर, उसकी वजह से खांसी पैदा होती है।
1: यानी थूक जब गाढ़ा हो जाता है, जिसे बलगम आम भाषा में कहा जाता है, और वो ज्यादा निकलने लगता है
0: जी,
1: तो वो एक सिम्टम माना जाता
0: वो
1: है।
0: एक तो खांसी के साथ बलगम आना
1: जी,
0: सीओपीडी में जितने मरीज होंगे वो बहुत क्रोनिक होगा। क्रोनिक मतलब अगर उनका
1: काफी लंबे समय
0: कि 3 महीने से लगातार उनको खांसी बलगम आ रहा है
1: जी जी,
0: और 3 महीने से जब खांसी बलगम आता है इसकी वजह से क्या होता है, साथ में सांस भी फूलती है। तो दो मेजर सिम्टम जो होते हैं, खांसी और बलगम। तीसरा क्या होता है लक्षण, सांस फूलना। खांसी बलगम के साथ साथ मरीज की सांस भी फूलेगी
1: जी जी।
0: जैसे कि दमा के मरीज होते थे तो उसमें खांसी बलगम नहीं जरूरी है।
1: हाँ।
0: वो सिर्फ सांस फूलने के लिए बताएंगे कि सांस फूलता है
1: जी।
0: लेकिन सीओपीडी का मरीज जो होगा वो कहेगा कि खांसी भी है, बलगम भी है
1: और
0: सांस भी फूल रही है। साथ साथ में क्या होगा, उनका चेस्ट टाइटनेस होगी।
1: अच्छा।
0: सीने में कहेंगे कि जकड़न टाइट हो रहा सीना हमारा।
1: अच्छा, आवाजें भी कई बार आती हैं सांस लेने में डॉक्टर
0: जी। अब क्या होता है, जब वो स्पुटम इकट्ठा हो जाता है, ब्रोंकस भरने लगता है
1: जी,
0: तो जब हम सांस खींचते हैं या छोड़ते हैं तो किसी पाइप में अगर उसको ब्लॉक कर दें, हल्का सा आधा ब्लॉक कर दें, फिर उसके अंदर से हवा पास करें, जैसे गांव में फुकनी का यूज करते थे हवा पास करने, तो एक आवाज निकलती है
1: जी, जी।
0: तो ऐसे ही आवाज आती है, जब सांस लेते तब भी आवाज आती है, सांस छोड़ते हैं, इसको हम लोग वीजिंग बोलते हैं डॉक्टरी भाषा में।
1: अच्छा, अच्छा।
0: कि वीज हो रहा है, अगर वीज नहीं आता

0: है तुम लोग स्टेथो लगा के सुनते हैं।
1: अच्छा।
0: बीच तो हम लोगों को ऐसे ही सुनाई देती थी बिना स्टेथोस्कोप के। अच्छा। लेकिन स्टेथोस्कोप से अगर सांस कुछ आवाजें सुनाई देती हैं तो उनको हम लोग ब्रोंका ही बोलते हैं।
1: अच्छा।
0: तो ये सुरली आवाजें होती हैं।
1: अच्छा।
0: तो ये आवाजें आने लगती हैं इसी वजह से। जब दिखता है तो उसको बीच बोलते हैं
1: जी,
0: और जब नहीं दिख रहा होता है स्टेथो से पता करते हैं तो ब्रोंका ही बोलते हैं।
1: यानी सीने पे और पीठ पे जब आला लगा के आप कान में सुनते हैं तो इन्हीं आवाजों को सुनने की कोशिश की जाती है।
0: जी जी, इन्हीं आवाजों को सुनने की कोशिश है। और यही इनके मोटे मोटे जो लक्षण है सीओपीडी में कि सांस फूलेगी, खांसी बलगम और सीना टाइट लगेगा।
1: डॉक्टर साहब, आपने कहा कि लंबे समय से खांसी
0: जी,
1: अब लंबे समय से अगर खांसी किसी को आ रही है, बलगम आ रहा है, उसमें अगर कहीं खून भी आ जाए तो आप लोग कहते हैं ये टीबी हो सकता है, तो क्या सीओपीडी की अगली जो कहना चाहिए पायदान है या अगली पीढ़ी है वो टीबी की बीमारी होती है?
0: नहीं, सीओपीडी और टीबी एकदम अलग बीमारियां।
1: अच्छा।
0: टीबी के लिए अलग बैक्टीरिया जिम्मेदार है, सीओपीडी में कोई ऐसा बैक्टीरिया नहीं होता।
1: अच्छा,
0: है।
1: अच्छा।
0: इसमें तो आमतौर से जो धुआं है या स्मोकिंग करते हैं
1: जी,
0: या फिर कोई एयर पोल्यूशन वाले तत्व तो ऐसे आ गए हैं वो जिम्मेदार होते हैं।
1: अच्छा, अच्छा।
0: जिसकी वजह से सीओपीडी होती है। खांसी और बलगम इसमें भी आता है, लेकिन इसमें हम लोग कहते हैं कम से कम 3 महीने से ज्यादा।
1: अच्छा।
0: और टीबी के लिए क्या है गाइडलाइन कि 2 हफ्ते से ज्यादा की खांसी,
1: सिर्फ 15 दिन से ज्यादा की खांसी,
0: 15 दिन से ज्यादा की खांसी जो होती है वो जिम्मेदार होती है टीबी की
1: जी।
0: लेकिन सीओपीडी में क्या होगा, 3 महीने से ज्यादा की खांसी बलगम आ रहा हो और साल में कम से कम 2 बार आया हो।
1: अच्छा।
0: तो इसके भी साल से दिक्कत हो, कम
1: दौरे पड़ते हैं इसके भी।
0: हाँ,
1: महीने में आ गया, 2 महीने में।
0: जी जी जी, जैसे ठंड का मौसम आता है।
1: हाँ।
0: तो ठंड के मौसम में सीओपीडी के मरीज को एक्यूट एग्जैसर्वेशन होता है, मतलब पहले सांस फूल रही, हल्की फूल रही, लेकिन क्या होता है कि जब धुआं इकट्ठा हो रहा है, पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है या कुछ हो रहा है तो उसकी वजह से उनकी सांस फूलना बढ़ जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एग्जैसर्वेशन। तो ये साल में 2 बार 3 बार 4 बार भी हो सकता है
1: जी। अच्छा, इसके लिए जांचों की बात आपने की, तो किस तरह की जांचें हैं जिनके माध्यम से आप लोग ये तय कर पाते हैं, निश्चित कर पाते हैं कि मरीज सीओपीडी जैसी बीमारी से ही पीड़ित है, उनके विषय में बताइए
0: जी। सीओपीडी के लिए जो डॉक्टर सबसे पहले जांच करते हैं लक्षणों के आधार पे, तो स्पायरोमेट्री की जांच कहते हैं उसको।
1: अच्छा।
0: या फिर पीएफटी बोलते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। तो अगर कोई ओल्ड एज का पेशेंट आया तो बोलते हैं पीएफटी कराओ इनका,
1: फूंक मार के जो होता है।
0: हाँ, फूंक मार के जो टेस्ट करते हैं
1: जी, जी।
0: तो उसमें हम लोग पता लगाते हैं कि कितना ऑब्स्ट्रक्शन है, और जो ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कि सांस को छोड़ने में और सांस को लेने में दिक्कत आना, रुकावट को ऑब्स्ट्रक्शन को हम लोग मापते हैं।
1: अच्छा।
0: उसको मापने का पैमाना होता है उसमें, और वो इररिवर्सिबल होता है। इररिवर्सिबल मतलब कि जितनी रुकावट है वो अगर हम कोई थेरेपी देंगे, इनहेलर देंगे या कुछ देंगे तो उसके बाद ये नहीं कि वापस हो जाए, जैसे कि अस्थमा के मरीजों में होता है कि कोई उस रुकावट को रोकने के लिए इलाज कर दें और उसके बाद फिर फूंक मारने के लिए बोले तो नॉर्मल हो जाए।
1: अच्छा।
0: ऐसा इसमें नहीं होगा।
1: अच्छा,
0: इसमें
1: अच्छा।
0: जितनी रुकावट है उतनी ही रुकावट बनी रहेगी। इसके लिए हम लोग FEV1/FEVC चेक करते हैं, और वो 0.7 से अगर कम है तो हम लोग कहते हैं इनको सीओपीडी की बीमारी है।
1: ये खून से चेक होता है या किस तरह से, या फिर स्पुटम से चेक करते हैं?
0: नहीं नहीं, इसमें एक डिवाइस होती है जिसमें फूंक मारना होता है।
1: हाँ।
0: और फूंक मारने के बाद वो हम
1: अच्छा
0: वॉल्यूम
1: अच्छा।
0: आती है एयर वॉल्यूम,
1: पीएफटी की बात कर रहे हैं,
0: पीएफटी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के लिए।
1: अच्छा, अच्छा,
0: उसमें वॉल्यूम चेक करते हैं, एक FEV1 होती है और एक FEVC होती है।
1: जी जी।
0: तो ये 2 तरह की वॉल्यूम होती है, इनका फिर रेशियो निकालते हैं, वो कैलकुलेट करके मशीन ही दे देती है।
1: अच्छा।
0: तो वो पता लगाते हैं, अगर 0.7 से कम है तो सीओपीडी की बीमारी।
1: डॉक्टर साहब, क्या कोई एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या फिर खून की जांच भी होती है जो ये तय कर पाए कि सीओपीडी है या नहीं है संबंधित व्यक्ति को?
0: जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि सांस फूलना मतलब कि आमतौर से पता है कि एक्सरे कराएंगे डॉक्टर साहब।
1: हाँ।
0: या खांसी आ रही है, बलगम आ रही है, तो कहेंगे कि एक्सरे कराएंगे। एक्सरे से भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि इसको सीओपीडी की बीमारी है या फिर अस्थमा है।
1: अच्छा।
0: या कुछ नहीं, नॉर्मल है। तो ब्रोंकल अस्थमा के पेशेंट का जब भी हम लोग एक्सरे करते हैं तो ज्यादातर नॉर्मल रहता है।
1: अच्छा।
0: लेकिन सीओपीडी का पेशेंट का अगर एक्सरे करेंगे तो ब्रोंकाइटिस मिलेगी, जो इन्फ्लामेशन हमने सूजन बताया वो दिखती है।
1: अच्छा, अच्छा।
0: अगर ब्रोंकाइटिस या इम्फाइजिमा का पेशेंट है तो लंग्स उसके इलांगेटेड लंबे मिलेंगे।
1: अच्छा।
0: तो ये एक्सरे में भी पकड़ा जा सकता है कि मरीज को सीओपीडी की बीमारी है या फिर अस्थमा है।
1: अच्छा, एक्सरे से तय हो जाता है।
0: जी, एक्सरे से भी तय कर लेते हैं। लेकिन जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है
1: जी
0: वो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट,
1: पीएफटी ही।
0: हाँ, पीएफटी सब कन्फर्मेटरी टेस्ट है कि इसको सीओपीडी है कि नहीं।
1: डॉक्टर साहब, लेकिन इतनी सब जांचों के बावजूद भी खून की जांच आप लोग जरूर कराते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है?
0: खून की जांच इसलिए कराते हैं कि हम लोग पता लगाते हैं कि किस वजह से।
1: हाँ।
0: कि कहीं जैसे कोई सीओपीडी का पेशेंट है, आराम से बढ़िया रह रहा था, लेकिन अचानक से सांस फूलने लगी।

0: ये बहुत तेज
1: जी।
0: तो कोई हो सकता है रिसेंट इन्फेक्शन लग गया उसको।
1: अच्छा।
0: उस वजह से भी इसका एपिसोड, जिसको हमने एक्यूट एग्जा सर्वेशन बोला कि अचानक से सांस का फूलना बढ़ जाता
1: जी, जी।
0: बढ़ जाने लगता है तो वो कहीं ऐसा तो नहीं इन्फेक्शन की वजह से हुआ है।
1: अच्छा।
0: तो उसको पता लगाने के लिए हम लोग रूटीन ब्लड का टेस्ट कराते हैं, जैसे कि सीबीसी कराते हैं
1: जी।
0: तो उसमें पता लगाते हैं कि कहीं कोई इन्फेक्शन की वजह से तो नहीं इसको हो गया। अच्छा। या फिर बलगम के भी टेस्ट कराते हैं।
1: अच्छा।
0: बलगम में भी हम लोग कहीं टीबी का इन्फेक्शन तो नहीं लग गया, सीओपीडी का मरीज रहा है उसको अभी रिसेंट टीबी हो गई, टीबी अच्छा। लग गई तो उसकी वजह से तो नहीं हो गया। या फिर कोई उसमें ग्राम स्टेनिंग हम लोग कराते हैं कि कोई बैक्टीरिया तो नहीं आ गया।
1: अच्छा।
0: या कोई फंगस तो नहीं आ गया
1: जी।
0: तो वो इसलिए हम लोग बलगम का टेस्ट साथ में और खून का टेस्ट कराते हैं।
1: कई बार डॉक्टर साहब हमने सुना है लोगों के मुंह से, बल्कि मरीज भी कहते हैं, बोले इसनोफीलिया बढ़ गया था। तो इसनोफीलिया का बढ़ना एक लेमैन की भाषा में अगर हम ये कहें कि एक बीमार की भाषा में क्या होता है, ये तो वही जाने। एक डॉक्टर की भाषा जरूर आपसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टरी भाषा में इसनोफीलिया कब बढ़ता है, इसके पीछे वजह क्या होती है, क्या वो भी इससे रिलेटेड है?
0: ज्यादातर लोग इसको कोरिलेट करते हैं कि इसनोफीलिया ही हो गया है
1: जी,
0: इसनोफीलिया की वजह से ही हमको ये दिक्कत हो रही है। तो ज्यादातर जो अस्थमा की बीमारी होती है जिनको, तो अस्थमा की बीमारी में एक कारण होता है कि इसनोफील्स का बढ़ जाना
1: जी।
0: जो एलर्जिक ब्रोंकल अस्थमा होता है, ब्रोंकल अस्थमा कई तरह का होता है, उसमें से एक एलर्जिक ब्रोंकल अस्थमा जो ज्यादा कॉमन होता है
1: जी,
0: तो ऐसी कंडीशन में इसनोफिल्स का काउंट बढ़ जाता है।
1: अच्छा।
0: तो इसनोफिल्स का नंबर जब बढ़ जाएगा तो उसको बोला जाता है इसनोफीलिया
1: जी।
0: तो उसी को लोग कोरिलेट करते हैं कि कहीं हमारा इसनोफिल तो नहीं बढ़ गया और इसनोफीलिया तो नहीं हो गया
1: जी,
0: कि उसकी वजह से हमको ये दिक्कत हो गई
1: जी।
0: लेकिन इसनोफिल्स के बढ़ने के काउंट बढ़ना कई सारी बीमारियों में होता है, बहुत सारी बीमारियां होती है जिसमें इसनोफिल का काउंट बढ़ जाता है।
1: अच्छा।
0: तो ऐसा नहीं इसनोफीलिया हो गया तो हमको सीओपीडी हो जाएगा या अस्थमा ही हो जाएगा,
1: ये अलग अलग चीजें हैं, ये
0: अलग अलग चीजें हैं
1: जी
0: जी जी, बिल्कुल अलग चीजें हैं।
1: बहरहाल तो यहाँ पर यही बात समझ में आती है, डॉक्टर का काम डॉक्टर को ही करने दें
0: जी जी,
1: खुद करने की कोशिश ना करें। डॉक्टर साहब, दमा, सांस फूलना और सीओपीडी, तीन बातें हैं आज जो हम आपसे कर रहे हैं। चूंकि आपने दमा की बीमारी के विषय में बताया, वो यंग एज में होता है, छोटे बच्चों में भी होता
0: जी,
1: है
0: जी, जी।
1: लेकिन सीओपीडी की बीमारी एक स्तर के बाद ही होती है और उसकी वजह भी आपने बता दी
0: जी, जी।
1: अच्छा, सांस फूलने की जहां तक बात है डॉक्टर साहब, कई लोगों को चलते हुए सांस फूलती है, कई लोग बैठे होते हैं तो सांस फूलती है, कई लोग लेटने पे ज्यादा परेशान हो जाते हैं, अगर वो उठ के बैठ जाए थोड़ा सा कम हो जाती है, तो सांस फूलने की बात भी हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे, ये किस तरह की समस्या
0: जी जी। सांस फूलना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है कि सांस फूलना ज्यादातर जो होता है दो जो हमारे ऑर्गन है उन्हीं से रिलेटेड होता है, एक होता है हार्ट और दूसरा होता है लंग
1: जी।
0: कुछ हार्ट की बीमारियां होती हैं जिसमें भी सांस फूलती है, लंग की बीमारियां होती हैं जिसमें फेफड़े की बीमारियां जिसमें भी सांस फूलती है। तो फेफड़े की ऐसी बीमारी जिसमें सांस फूलती है उसमें एक बहुत बड़ी बीमारी जो बताई हमने आपको, सीओपीडी, जो बहुत बड़ा बर्डन है इंडिया में ही नहीं पूरा वर्ल्ड वाइड बर्डन
1: जी,
0: है। और दूसरी आपने दमा की बीमारी बताई, ऐसे फेफड़े की बीमारियां हो गई, दूसरी बीमारियां होती है जो हार्ट की वजह से होती है। हार्ट का अगर आपका काम नहीं कर रहा है, हार्ट सही से काम नहीं कर रहा, हार्ट फेल हो गया है, तो उसमें भी सांस फूलती है
1: जी जी।
0: इसका डिफरेंस पता करने के लिए अगर डॉक्टर पता कर ही लेता है, लेकिन आम जन कैसे जाने कि हमको हार्ट की बीमारी की वजह से सांस फूली है या फिर फेफड़े की बीमारी,
1: कमजोरी से भी डॉक्टर कई बार
0: जी कमजोरी, उसमें खून कम हो गया
1: हाँ।
0: तो सांस फूल जाएगी। कुछ लोगों को गुर्दे की बीमारी होती है तब भी सांस फूलती है उसमें, तो हम आगे उस पे आते तो हम चाहते कि पहले दो को डिफ्रेंशिएट कर दें कि हार्ट की वजह से कब सांस फूलती है और फेफड़े की कब फूलती है
1: जी।
0: तो हार्ट की वजह से अगर बीमारी होगी तो ज्यादातर लेटने पे सांस फूलेगी।
1: अच्छा।
0: जब आप लेट जाएंगे
1: लेटे तो लेटे अगर सांस फूल रही है तो ये हार्ट की वजह से हो
0: तो
1: सकता है।
0: हार्ट की वजह से ज्यादा चांसेस होना है। और बैठने पे आपको आराम मिल जाए
1: हाँ।
0: जब भी बैठने पे आपको आराम मिल जाता है और लेटने पे सांस फूल रही है
1: तो
0: इसका मतलब हार्ट की सांस है, आराम से पता लगा सकता है। और जब फेफड़े की वजह से होती है तो आप चाहे लेटे चाहे बैठे चाहे
1: किसी भी अवस्था में
0: आपकी सांस फूल।
1: हम अपनी बात जारी रखेंगे डॉक्टर साहब, एक श्रोता आ रहे हैं लाइन पर, इनसे पूछ लेते हैं इनकी क्या समस्या है। जी, रेडियो हेल्पलाइन में आपका स्वागत है, अपना परिचय देते हुए प्रश्न बताएं।
2: जी नमस्कार, रेडियो हेल्पलाइन से बोल रहे हैं।
0: जी नमस्कार नमस्कार जी, डॉक्टर अकीब बोल रहा हूँ।
2: जी हरदयाल वर्मा बोल रहे थे, रमपुरा किसानान मजरत से मरिया मीरगंज बरी।
0: जी जी, अपना बताएं क्वेश्चन।
2: डॉक्टर जानकारी लेना चाहते हैं, सांस फूलने का क्या कारण होता है?
1: सांस फूलने का कारण जान रहे हैं
0: जी, वही हम लोग बहुत सही टाइम पे आपने क्वेश्चन पूछा, वही बात करते कि सांस फूलने के क्या क्या कारण होते हैं। तो सांस फूलने के लिए हम बता रहे थे कि कई सारे ऑर्गन होते हैं जिनकी वजह से सांस फूलती है। एक जो मोटा मोटी सबको पता है कि फेफड़े में कोई बीमारी है जिसकी वजह से सांस फूलती है, और फेफड़े की ज्यादातर दो बीमारियां बहुत कॉमन है, एक दमा जिसको बोलते हैं

0: ब्रोंकियल अस्थमा बोलते हैं, उसमें सांस फूलती है। आज का हमारा टॉपिक है सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसको काला दमा बोलते हैं, उसमें भी सांस फूलती है। और कुछ हार्ट की बीमारियां होती हैं जिसमें भी सांस फूलती है, हार्ट फेल हो जाता है लोगों का, उसमें भी सांस फूलती है। खून की कमी हो जाती है तो उसमें भी सांस फूलती है। गुर्दे की बीमारी हो गई, क्रिएटिनिन बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उसमें भी सांस फूल जाती है। बहुत ज्यादा वीकनेस अगर किसी को है, कमजोर है, तो उसमें भी सांस फूलती है। लेकिन आजकल ठंडी में जब सांस फूलना ज्यादा अगर बढ़ जाती है तो ज्यादातर लंग की बीमारी होती है। अगर यंग एज में सांस फूल ली तो हम लोग उसको दमा के लिए समझते हैं कि दमा उसको बीमारी होगी, या अगर ओल्ड एज में बूढ़े वाढ़े लोग हैं तो उनको या तो पहले टीबी हुआ हो तो सांस फूल ली, या फिर सीओपीडी की बीमारी है जो कि स्मोकिंग करने से होती है, बीड़ी सिगरेट पीने से, या फिर एयर पोल्यूशन बहुत बढ़ जाता है जिसकी वजह से सांस फूलती है। घर में कहीं धुआं है, लकड़ियां जला रहे हैं, आजकल सर्दी के मौसम में अलाव जलते हैं उससे धुआं निकलता है, काफी देर तक अगर वहां बैठे हैं तो इनहेल करते हैं तो उसकी वजह से भी सांस फूलती है।
1: डॉक्टर साहब, ये काला दमा है और दमा, इसमें अंतर क्या है?
0: काला दमा जी, काला दमा और दमा में अंतर जो है ये है कि दमा की बीमारी ज्यादातर यंग लोग जो होते हैं, बच्चे में भी हो जाएगी, 12-13 साल के बच्चे हैं तब भी हो जाएगी, 14-15 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल तक देखा गया है कि दमा की बीमारी होती है। लेकिन ज्यादा ओल्ड एज में जो हो रही बीमारी उसको काला दमा बोलते हैं। 50 साल 60 साल के लोग जो हैं उनमें अगर सांस फूल रही है तो वो ज्यादातर काला दमा की बीमारी होती है।
1: जी, यदि कोई जन्मजात बच्चा है क्या उनमें भी ये लगता?
0: जी, जन्मजात अगर बच्चा है तो उसमें दमा हो सकता है लेकिन काला दमा नहीं होगा उसको। काला दमा होने के लिए ओल्ड एज का होना जरूरी है, क्योंकि क्रोनिक एक्सपोजर जो होते बोलते हैं कि करीब 10 साल तक उसको धुआं जा रहा है, 10 साल से लगातार बीड़ी पी रहा, तब ये काला दमा होता है।
1: भागदौड़ भरी जिंदगी में इसके बचाव के क्या?
0: जी जी,
1: कैसे कैसे बच सकते हैं?
0: काला दमा से बचने के लिए अगर स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग छोड़ दीजिए। ऐसी बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन अगर है तो उसमें मास्क का प्रयोग करें। घर पे अगर बहुत ज्यादा धुआं, महिलाएं अगर वहां पे खाना बनाती हैं तो उनको धुएं से बचने के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे इस वजह से बचा जा सकता है कि काला दमा की बीमारी ना हो। क्योंकि बहुत कई सालों तक अगर ये धुआं ले रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं तभी काला दमा होता है, तो अगर इसको रोक लें तो काला दमा की बीमारी से बचा जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और करूंगा।
2: हाँ बिल्कुल, बताइए।
1: हमारी साली है, अभी 18 साल की उम्र है उसकी, कोई सा काम करती है हल्का सा हल्का,
0: जी
1: सांस बहुत फूलने लगती है
0: जी,
1: तो आगे चल के क्या कंडीशन होगी, तो इसके लिए क्या उपाय करें क्या नहीं करें, बड़ा परेशान
0: जी। अगर 18 साल की उम्र है और सांस फूल रही है तो उसमें कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर मोटा मोटा देखा जाए कि अगर उनको मौसम बदलने पे सांस ज्यादा फूलने लगती है, या धुएं वाले इलाके में ज्यादा सांस फूलने लगती है, पोल्यूशन बढ़ जाता है वहां पे सांस ज्यादा फूलने लगती है, कोई एलर्जी हो गई तब सांस ज्यादा फूलने लगती है, तो ऐसी कंडीशन में एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा हो सकता है। उसके लिए डॉक्टर को दिखा लीजिए और वो डॉक्टर आपको बताएगा कि किस वजह से इनकी सांस ज्यादा फूल रही है और उसका उचित इलाज।
1: क्या साहब, अगर ज्यादा कोई भारी वजन उठा रहे हैं तो ये सांस फूलती है, ये भी उसका लक्षण है?
0: कमजोर वीकनेस है ना, कि अगर हम बहुत भारी काम करेंगे, जैसे हम बहुत ज्यादा रनिंग करेंगे तो सांस फूलती है, तो ये एक उसकी वजह से होती है, इसका कोई बीमारी से लेना देना नहीं होता। तो जी जी
2: बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, अगर उचित इलाज कराएंगे तो अवश्य ठीक हो जाएंगी।
1: ठीक है
2: जी। हरिद्वारी लाल जी नमस्कार, धन्यवाद आपका फोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, अब हम बात करेंगे इलाज की, क्योंकि इलाज भी महत्वपूर्ण पहलू है। बचाव कहते हैं ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर हो ही जाती है समस्या तो इलाज जरूरी हो जाता है। सबसे पहले तो ये बताइए, सीओपीडी के मरीजों का इलाज किस तरह करते हैं? आपने कई बार कहा कि ये पूरी तरह ठीक नहीं होती, क्या ये बात सत्य है?
0: सीओपीडी काला दमा को क्योर नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते।
2: अच्छा,
0: इसको रोका जा सकता है और इसका इलाज किया जा सकता है। अगर किसी को डायग्नोज हो गया, एक बार पता चल गया कि काला दमा की बीमारी है, सीओपीडी की बीमारी है, तो उसके इलाज के लिए हम लोग कई तरह की मेडिसिन यूज करते हैं और ऑक्सीजन को भी यूज करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं जा पा रही है,
2: बिल्कुल
0: ऑक्सीजन के रास्ते में ही रुकावट आ रही है।
2: जी जी।
0: तो ऑक्सीजन देना बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका इलाज है, जो मॉर्टेलिटी, मतलब कहते हैं हम लोग डॉक्टर की भाषा में मॉर्टेलिटी एक वर्ड होता है कि मृत्यु,
2: मृत्यु दर,
0: तो मृत्यु से बचाया जाए, तो उसके लिए बेहतर इलाज है ऑक्सीजन।
2: अच्छा,
0: तो सीओपीडी के मरीजों में ऑक्सीजन बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि उसको इलाज किया जाए और उसको मरीज को क्योर तो नहीं लेकिन रोका जाए कि उसकी सांस न फूले। और कई सारी दवाइयां होती है जिसमें हम लोग बीटा टू अगोनिस्ट होती हैं, सालबुटामॉल के नाम की दवाई बहुत जानते होंगे
2: जी,
0: कि सालबुटामॉल ले लो तो उससे सांस में आराम मिल जाता है
2: जी, जी।
0: तो सालबुटामॉल क्या करती है कि ब्रोंको डायलेशन करती है, जो

0: सांस की नलिकाएं उनको क्योंकि सिकुड़ गई हैं तो उनको चौड़ा कर देती है, चौड़ा कर देंगी तो सांस आसानी से जाएगी और आराम मिलेगी उनको सांस लेने में।
1: दमे की बीमारी के विषय में भी जरूर बताइएगा, दमा और सांस फूलने की जो समस्याएं हैं इसका इलाज किस तरह होता है, क्या पूरी तरह ये क्योरेबल बीमारियां हैं?
0: दमा की बीमारी जो होता है एलर्जिक हो सकती है और जेनेटिक भी हो सकती है
1: जी,
0: क्योंकि अभी जैसे कॉलेज ने पूछा था कि छोटा बच्चा है उसको भी सांस फूलने या दमा की बीमारी हो गई, तो ऐसे बच्चों में जेनेटिक बीमारी होती है,
1: वंशानुगत।
0: हाँ, वंशानुगत होती है जिसकी वजह से हो जाती है
1: जी।
0: तो उनके लिए इनहेलर बहुत अच्छा इलाज होता है कि वो इनहेलर यूज करें। इनहेलर में हम लोग ब्रोंकोडायलेटर देते हैं क्योंकि टेम्पररी ब्लॉकेज होता है, टेम्पररी दवाई दे दिया, रिलीफ हो गया, एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
1: अच्छा,
0: क्योंकि कोई ना कोई एक्सपोजर है जिसकी वजह से ही होता है।
1: अच्छा,
0: या एलर्जिक ब्रोंकल अस्थमा जिनको है तो एंटी एलर्जिक बहुत सारी एंटी हिस्टामिनिक देते हैं हम लोग, हैं मोंटिल्यूकास्ट है, ब्लास्टिन है, वही कई सारी दवाइयां हैं एंटी हिस्टामिनिक, वो अगर देते हैं तो उससे ही ठीक हो जाता है। अगर कुछ उसके बाद भी नहीं ठीक होता तो हम लोग स्टेरॉइड्स लो डोज में यूज करते हैं जिसकी वजह से अस्थमा ठीक हो जाता है।
1: लेकिन डॉक्टर साहब, आपने कहा इनहेलर लेने से अस्थमा या दमा की बीमारी ठीक हो जाती है, और हमारे समाज में जो धारणा है इसके विपरीत है। लोग कहते हैं अगर एक बार इनहेलर लेंगे तो इसकी आदत पड़ जाएगी, ये हमेशा लेना पड़ेगा, क्या कहते हैं एक डॉक्टर होने के नाते?
0: जी, समाज में कई सारी धारणा है, जैसे डायबिटीज के लिए हम लोगों ने जब किया था तो लोगों ने कहा था कि एक बार इंसुलिन शुरू हो गया तो हमेशा लगेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और गुर्दे की बीमारी में बोलते हैं कि एक बार डायलिसिस अगर शुरू हो गया तो
1: हमेशा कराना पड़ेगा जी।
0: ऐसे ही दमा की बीमारी के लिए बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमको इनहेलर मत लिखना, एक बार अगर ले लिया तो जिंदगी भर लेना पड़ेगा।
1: जी जी।
0: लेकिन देखा जाए तो ये बहुत बढ़िया टेम्पररी इलाज है कि उसके साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं होंगे। डायरेक्ट लंग में बीमारी है तो लंग में दवाई जाएगी और कुछ ही समय के लिए लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर नहीं लेना पड़ेगा।
1: यानी जिस जगह पे समस्या है, जहां बीमारी है वहीं पर दवाई को जाना
0: जी। और वैसे अगर दवाई खाते हैं तो पूरे शरीर में फैलती है तो उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो देखा जाए कि इनहेलर बहुत ही अच्छा इलाज, इसीलिए हम लोग अगर ब्रोंकल अस्थमा के पेशेंट आते हैं उनको समझाते हैं और इनहेलर एडवाइज करते हैं कि अपने साथ कैरी करें, कभी भी कोई दिक्कत हो एक इनहेलर लेंगे, उससे उनकी जान जाने से भी बच जाएगी।
1: अच्छा,
0: कभी कभी अस्थमा का अटैक होता है, ब्रोंकल अस्थमा अटैक जो बहुत ही खतरनाक होता है, मृत्यु भी हो सकती है और उससे बचाव सिर्फ और सिर्फ इनहेलर ही करता है उस टाइम पे, जो टेम्पररी तुरंत
1: जी।
0: इनहेलर इतना इम्पोर्टेंट है।
1: यानी कई बार देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में, लेकिन मुझे याद आ गया तो जरूर यहाँ अपने श्रोताओं के साथ शेयर करूंगा। आजकल फिल्मों में दिखाया जाता है
0: जी
1: कि संबंधित व्यक्ति है जिसका इनहेलर कहीं दूर गिर जाता है और वो इनहेलर तक पहुंचने की कोशिश करता है और जब पहुंच जाता है तभी वो सांस चैन की ले पाता है और ऐसा लगता है जैसे जीवन बच गया।
0: जीवन, अरे अस्थमा का अटैक इतना सीरियस होता है कि कई लोगों ने जान भी गवाई है। तो जिनको बहुत सारे अटैक्स आते हैं अस्थमा के, उनके लिए हम लोग एडवाइज करते हैं कि इनहेलर लें और साथ में कैरी करें, अपने पॉकेट में रखें और उस पर लिख के रखें, हिंदी में या जिस भी लैंग्वेज वाले हैं वो उसमें लिख के रखें, कभी भी हम बेहोश हो जाएं या सांस लेने में हमको दिक्कत हो रही है, हम वहां तक नहीं पहुंच रहे तो हमारी पॉकेट में जो इनहेलर रखा ये मेरे मुंह में एक बार स्प्रे कर दें, जिससे हम तुरंत स्वस्थ हो जाएंगे। और बहुत अच्छी चीज है, इसको ये मत समझे कि आदत पड़ जाएगी, जब जरूरत पड़े तब आप लीजिए, ब्रोंकल अस्थमा के पेशेंट वाले जो हैं। लेकिन जो काला दमा के मरीज होते हैं उनमें रूटीनली यूज करना पड़ जाता है।
1: अच्छा,
0: क्योंकि वो इररिवर्सिबल है।
1: अच्छा,
0: वो
1: अच्छा।
0: वापस जल्दी नहीं होता है तो उसमें इनहेलर कंटिन्यूस कभी कभी हम लोग देते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, बातें अभी भी बहुत रह गई हैं आपसे करने
0: जी।
1: तो आज बस इसी के साथ अपने श्रोताओं से विदा चाहेंगे। तो श्रोताओं, अब आज के रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम से डॉक्टर मोहम्मद अकीक साहब के साथ मुझ मुकेश कुमार पांडे को भी अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक
3: रोहेलखंड का आधुनिकतम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल गंगाशील हॉस्पिटल दीदीपुरम बरेली।
4: मानसिक तनाव, अत्यधिक चिड़चिड़ापन, सोचते सोचते खो जाना, याददाश्त की कमी, परेशान रहना, रोज के कार्य करने में असक्षमता।
5: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं, अब आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
6: में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। नीट पेपर लीक और विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी दलों के हंगामे के कारण लोकसभा में आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सका और सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में आज कहा कि सरकार नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, चर्चा किस नियम के अंतर्गत होगी और कितनी देर होनी चाहिए ये बातचीत में तय होगा। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के लिए सार्थक चर्चा हो इसके लिए सरकार तैयार है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के आरोप में मानसून सत्र

शेष अवधि से निलंबित किया गया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद तेनेटी ने दो बार स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू की और हंगामे के बीच जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखवाया। इसके बाद उन्होंने कहा कि श्री कल्याण बनर्जी के खिलाफ महिला सांसदों की ओर से महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किए जाने की लिखित शिकायत मिली है। संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्ताव किया कि महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में श्री कल्याण बनर्जी को सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया जाए, जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। श्री तेनेटी ने प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद श्री बनर्जी को सदन से बाहर जाने का आग्रह किया और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने इन मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया, जिससे कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे शुरू होते ही विपक्षी दल हंगामा करने लगे और कुछ सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। कई विपक्षी सदस्य नीट के विरोध में नारे लिखी तख्तियां लिए हुए थे। कांग्रेस सदस्य विरोध स्वरूप काले कपड़े पहने थे। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल को बोलने की अनुमति दी। श्री वेणुगोपाल ने कहा कि जिस तरीके से विपक्षी दलों और विद्यार्थियों के साथ पुलिस व्यवहार कर रही है वह बहुत अनुचित है। उनकी मांग है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, इसके बाद सदन में पेपर लीक मुद्दे पर विस्तृत चर्चा कराई जाए। अगर सरकार उनकी मांग स्वीकार करती है तो वे चर्चा के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि पेपर लीक मुद्दा कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का नहीं है, ये सभी लोगों से जुड़ा मसला है। इसके लिए सभी राजनीतिक दल लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के साथ पुलिस ने बर्बरता की, बेटियों के कपड़े फाड़े गए। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री सदन से बाहर नीट मुद्दे पर बयान दे सकते हैं, सदन में आकर इस मसले पर क्यों नहीं बोल सकते। इसके बाद श्री ओम बिरला ने कहा कि कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, ये बातचीत के दौरान तय होगा। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, विपक्षी सदस्य अपने अपने स्थानों पर जाएं और कार्यवाही चलने दें। श्री बिरला की अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ और हंगामा जारी रहा। हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे श्री बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, उससे पहले ही विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। श्री बिरला ने सदस्यों से शोर शराबा नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन सदस्य उनकी बात पर ध्यान दिए बिना और नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। अध्यक्ष ने सदस्यों से सदन चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि आप प्रश्नकाल चलने दीजिए, प्रश्नकाल के बाद जिन विषयों पर नोटिस आए हैं उन सब पर चर्चा कराई जाएगी, लेकिन ये सब प्रश्नकाल के बाद ही संभव होगा। मैं आपके मुद्दे पर चर्चा देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि सदस्य सदन नहीं चलाना चाहते हैं, ये अच्छा संदेश नहीं है। उनकी किसी बात पर जब सदस्यों ने ध्यान नहीं दिया तो श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही 1 मिनट के भीतर ही 12 बजे तक स्थगित कर दी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य देश भर में चिन्हित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सामुदायिक अवसंरचना का सृजन करना है। इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, महिला केंद्रित पहलों, पेयजल, स्वच्छता, खेल, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, पशुपालन तथा अन्य सामुदायिक अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं को सहायता प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि पीएमजेवीके एक मांग आधारित योजना है और इस योजना के अंतर्गत निधियों का राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है। योजना के अंतर्गत अनुमोदित पात्र परियोजनाओं के लिए निधियां जारी की जाती हैं। विगत 5 वर्षों के दौरान पीएमजेवीके के अंतर्गत तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है। इस अवधि के दौरान जिले के लिए ना तो कोई निधि आवंटित या जारी की गई है और ना ही योजना के अंतर्गत जिसे कोई कार्य किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गुन ने एक लिखित जवाब में कहा कि सरकार ने डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रकाशकों के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने के लिए आईटी अधिनियम 2000 के तहत 25 फरवरी 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 अधिसूचित किए गए हैं। इन नियमों के भाग 3 में डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रकाशकों के लिए एक आचार संहिता का प्रावधान है।
शिकायतों का निपटान आईटी नियम 2021 के

के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79(3)(ख) अवैध सामग्री को हटाने या उस तक पहुंच को अक्षम करने के लिए मध्यस्थों को अधिसूचना का प्रावधान करती है। उन्होंने कहा कि शिकायतों के आधार पर सरकार ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। सरकार ने पिछले 2 वर्षों में अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने और आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67(क) भारतीय न्याय संहिता की धारा 294 और स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 के उल्लंघन के लिए भारत में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सार्वजनिक पहुंच से प्रतिबंधित कर दिया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट प्रश्नपत्र लीक मामले और इसके विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर लगातार तीसरे दिन गतिरोध जारी रहा। हंगामे के बीच जहां सरकार ने कहा कि वह नीट प्रश्नपत्र लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, वहीं विपक्ष इस चर्चा को नियम 267 के तहत कराने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही इस विषय पर चर्चा हो सकती है। इस मुद्दे पर हंगामे के बीच उच्च सदन की कार्यवाही 3 बार बाधित होने के बाद अपराह्न 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण आज भी उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे जब सदन की बैठक शुरू हुई तो सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सिक्किम में तीस्ता नदी पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनएचपीसी की निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुए हादसे में 20 लोगों की मौत की जानकारी दी। सदस्यों ने इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में कुछ क्षण का मौन रखा। श्री राधाकृष्णन ने सदन को भारत में स्वदेश में विकसित पहली हाइड्रोजन ईंधन से संचालित रेलगाड़ी के परिचालन शुरू होने की भी जानकारी दी और इसे स्वच्छ, टिकाऊ तथा तकनीकी रूप से उन्नत रेल परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि सदन इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और रेल अधिकारियों को बधाई देता है। बाद में विपक्षी सदस्यों ने अपने अपने मुद्दे उठाने चाहे। सभापति ने सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उनकी बात शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। इसके जवाब में विपक्षी सदस्यों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। श्री खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। उन्होंने कहा कि सोमवार को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई से उन्हें बेहद पीड़ा हुई है। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के अधिकतर सांसद काली शर्ट और काला कुर्ता पहनकर सदन पहुंचे। श्री खड़गे की बाह में काले रंग की पट्टी बंधी हुई थी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद जब बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तब उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में हंगामा करने लगे। श्री हरिवंश ने सदस्यों को शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि ये प्रश्नकाल है। आजादी के 50 वर्ष पूरे होने पर सदन में ये संकल्प लिया गया था कि किसी भी हालत में प्रश्नकाल और शून्यकाल चलाया जाएगा। अगर सदन अपनी बात पर कायम नहीं रहता है तो जनता के बीच क्या संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि सवालों के जवाब तैयार करने में कितना समय और जनता का धन लगता है, इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने अपील की कि कृपया प्रश्नकाल चलने दें, अपनी बात का असर न होते देख श्री हरिवंश ने 1 मिनट के भीतर ही बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने कार्यवाही को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर हंगामा करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक सहित हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और आसन की व्यवस्था मिलने पर चर्चा की जाएगी।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं और छात्रों के भविष्य के लिए नीट परीक्षा से जुड़े विषय पर चर्चा के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। सरकार ने एक एक करके जो भी कदम उठाए हैं उन्हें देश के सामने रखना हमारा दायित्व है। श्री रिजिजू ने कहा कि उन्होंने कई दलों के सदस्यों से बात की है और वे सभी चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले तो चर्चा की मांग करती है और फिर नारे

0: बाजी करके सदन को बाधित करती है, जो ठीक नहीं है। श्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है, हमने पहले दिन से बात कही है, लेकिन चर्चा नियम के तहत होती है। चर्चा कब होनी है, कितनी लंबी होनी है और किस नियम के तहत होनी है, इसका निर्णय सभापति सभी दलों के नेताओं से बात करने के बाद लेंगे। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्षी सदस्यों के आचरण की निंदा करते हुए कहा कि सरकार हर अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने कहा, विपक्ष की ओर इंगित करते हुए कहा कि ये इंडी गठबंधन का व्यवहार बहुत गैर जिम्मेदाराना है, यह प्रजातांत्रिक विरोधी गतिविधि साफ साफ संसद में दिख रही है। विपक्ष संसद की मर्यादाओं को तार तार करके प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहा है। सदन के नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार एक पारदर्शी और लोगों के हित में फैसले करने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की जो जन विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, वे उसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का प्रजातांत्रिक व्यवस्था और उसके मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्षी सदस्य नियम 267 के तहत चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चर्चा तब तक संभव नहीं है जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि पिछले चार दशकों में राज्यसभा में नियम 267 का इस्तेमाल दुर्लभतम मामलों में हुआ है। द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने सवाल किया कि दुर्लभतम मामला क्या होता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जिस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है वह दुर्लभतम ही है। इस दौरान सदन में हंगामा तेज हो गया और उपसभापति हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में नीट प्रश्न पत्र लीक मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच आसन की अनुमति से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, कांग्रेस ने चर्चा की मांग की थी, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, अब विपक्षी सदस्य शर्त रखकर चर्चा टालने की कोशिश कर रहे हैं। उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आपने कहा है कि नियम 267 का उपयोग दुर्लभतम मामलों में किया जाता है, जो घटना हुई है उससे अधिक दुर्लभ से दुर्लभतम मामला भला और क्या हो सकता है, बच्चों पर बल प्रयोग किया गया है। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने हंगामा तेज कर दिया और उपसभापति हरिवंश ने सदन में व्यवस्था बनते न देख बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा की कार्यवाही संचालन संबंधी नियम 267 के तहत सभापति की अनुमति से कोई सदस्य अत्यंत महत्वपूर्ण जनहित के किसी विषय पर चर्चा कराने के लिए सदन की निर्धारित कार्यवाही स्थगित करने का अनुरोध कर सकता है। उच्च सदन में 20 जुलाई को मॉनसून सत्र शुरू होने के बाद से ही नीट प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर गतिरोध लगातार बना हुआ है और अभी तक कोई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज नहीं हो सका है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपको याद दिला दें कि एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से और प्रत्येक बुधवार को शाम 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम हेलो किसान। इसके प्रायोजक हैं इफ्को। आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से और प्रत्येक बुधवार को शाम 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम हेलो किसान। इसके प्रायोजक हैं इफ्को। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:15 हो गए हैं। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं गुलशन भारती की गाई चंद गजलें। आगाज कर रहे हैं फैज अहमद फैज के इस कलाम के साथ।

इस गजल के साथ ही आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम में आज कलाकार थे गुलशन भारती, जिनके गाई चंद गजलें आप समाप्त फरमा रहे थे। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हो गए हैं। श्रोताओं लीजिए, अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से।

कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में मिस्टर इंडिया फिल्म से। आगे बढ़ चलते हैं और अब आपको सुनवाते हैं तीसरी मंजिल फिल्म से आशा भोसले और मोहम्मद रफी की युगल आवाजों में ये गीत।

पराया धन फिल्म के इस गीत के साथ ही, जिसमें आवाज किशोर कुमार की थी। फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके
1: मन
0: पास
1: भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर

0: अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बेहतर रेल सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीक के कारण रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन की गंभीर समस्या से निपटने के महत्व पर भी बल दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की।
1: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मॉनसून सत्र के लगातार तीसरे दिन विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित होती रही। व्यवधान के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका। दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं चल सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने अपना विरोध जारी रखा। आज लोकसभा की कार्यवाही 3 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों के विचार सुने हैं और सरकार खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्षी दलों से कार्यवाही बाधित करने के बजाय विस्तृत चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
4: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं।
5: हम जनरल मोशन मांग रहे हैं ताकि ठीक से डिस्कशन हो। आप 8 घंटे के लिए वंदे मातरम डिस्कस कर सकते हैं, तो आप लंबे समय के लिए ठीक ढंग से जनरल मोशन पे ये इशू भी डिस्कस कर सकते हैं।
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा है कि सरकार से नीट परीक्षा लीक मामले पर युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन मिलने पर वे अपना अनशन समाप्त कर देंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह को लिखे पत्र में श्री वांगचुक ने कल रात अस्पताल में उनसे मिलने के लिए दोनों मंत्रियों का आभार

0: समाप्त किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब तक केवल 2 रह गई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय 2013-14 में लगभग 39,000 करोड़ रूपये से बढ़कर 2026-27 में 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने के आरोप में देश भर में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म को सार्वजनिक पहुंच से बाहर कर दिया है। लोकसभा में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गुन ने कहा कि सरकार शिकायतों के आधार पर ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में तोतापुरी आमों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तीनों राज्यों में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की आय में लगातार हो रही गिरावट की शिकायतों के मद्देनजर जारी किए गए हैं। अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की हुई बैठक में मंदिर प्रबंधन, दान प्रणाली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, ट्रस्ट में रिक्त पद भरने और धार्मिक समिति के पुनर्गठन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ट्रस्ट ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था पहले की तरह ही अडिग है और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या स्थिर है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। आयोग राज्य सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त संगठनों के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते, पदोन्नति और पेंशन से संबंधित संशोधनों की सिफारिश करेगा। आयोग अगले 6 महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। छत्तीसगढ़ में अब अग्निवीर सैनिकों को पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। इसका लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा जो 4 वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवा प्रमाण पत्रों के साथ सेवा मुक्त हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। कल हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी इसी तरह के मौसम की स्थिति बने रहने का अनुमान है। सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग स्थित सुरंग में बचाव दल ने 8 और शव बरामद किए हैं। अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: नामची जिले के एनएसपीसी की टनल के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए आज तीसरे दिन भी रेस्क्यू दल काम कर रही है। कम विजिबिलिटी और मीथेन गैस के लीकेज के वजह से शवों को निकालना मुश्किल हो गया है। इस बीच सिक्किम सरकार ने मरने वालों के पार्थिव शरीर उनके परिवारों को सौंप दिए है। केंद्र सरकार के अलावा सिक्किम सरकार और एनएसपीसी ने मरने वालों के परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। घटना के समय टनल के अंदर कम से कम 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: कश्मीर में आज अनंतनाग जिले के लालचौक इलाके में आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। हमले के बाद सुरक्षा बलों का पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है। उपराज्यपाल

0: भोजू सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतक पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि देते हुए दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार में स्वदेशी रूप से निर्मित माहे श्रेणी का एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS मालवन को शामिल किया है। ये नौका जलमग्न निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियानों और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों के साथ साथ बारूदी सुरंगों को नष्ट करने की क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी घटकों से निर्मित ये नौका आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बल देती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिया शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावास्के से मुलाकात की। श्री सोनोवाल ने कहा कि दोनों देश बेहतर भविष्य के लिए परस्पर संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया, वहीं आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी। इस बीच पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला जापान के युशी तनाका से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लक्ष्य सेन ने पहला गेम अपने नाम कर लिया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
1: बॉम्बे शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.9% के नुकसान से 715 अंक लुढ़ककर 76,755 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.8% की गिरावट से 191 अंक गिरकर 23,996 के स्तर पर बंद हुआ। एनएसई मिडकैप सूचकांक में 1% से अधिक और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 33 पैसे के नुकसान से 96.57 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर रहा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष करने पर विचार करने का निर्देश दिया। न्यायालय की पीठ ने पूरे देश में जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की समान मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनाना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए में सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। फिल्म का नाम है फूल बने अंगारे।

आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज में अगला गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं दान सिंह, फिल्म का नाम है माय लव।

0: विविध भारती,
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: बेचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक,
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
4: एक सूचना सुनिए। 23 जुलाई को हर साल हम मनाते हैं राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में, तो इस अवसर पर कल विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी को। कल के इस खास सखी सहेली कार्यक्रम का फेसबुक लाइव प्रसारण भी हम करने वाले हैं, तो जुड़िए हमारे साथ और सुनिए अपने रेडियो सेट पर। और यह खास कार्यक्रम आप अपने मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं, तो सुनना ना भूलिए कल कार्यक्रम सखी सहेली।
5: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हम वही करते रहोगे।
6: 20 जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन?
7: कौन लाया, कौन लाया?
4: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मुकेश की आवाज में। कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने। फिल्म का नाम है मर्यादा।

आइए सुनते हैं इंदिवर का लिखा गीत। संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, आवाज एक बार फिर मुकेश की। फिल्म का नाम है उपासना।

ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मुकेश की आवाज में। शब्द रचना है साजन दहलवी की, संगीत रचना श्याम जी घनश्याम जी की और फिल्म का नाम है ठोकर।

आइए सुनते हैं अगला गीत मुकेश की आवाज में। नगमा निगार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है संगम।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको एक दिलचस्प घटना बताते हैं। एक लड़का था जिसकी बहन की शादी हो रही थी और अभिनेता मोतीलाल चूंकि उसके रिश्तेदार थे इसलिए वो इस शादी में शामिल होने के लिए आए थे। चूंकि माहौल शादी के जश्न का था तो उस लड़के से कहा गया कि तुम गाना गाओ क्योंकि परिवार में सब जानते थे कि इसे गाने का शौक है। उस लड़के ने गाना गाया और सब लोग मुग्ध होकर सुनते रहे। मोतीलाल जी को लगा कि इस लड़के में प्रतिभा है। उन्होंने उसे मुंबई बुला लिया और बस यहां से फिल्म संगीत का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया क्योंकि ये नौजवान था मुकेश चंद्र माथुर।

0: रहेंगे।
1: हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास को खंगालें तो जो सबसे रोशन सितारे हमें नजर आते हैं पुरुष गायकों में, वो हैं मोहम्मद रफी, मुकेश और किशोर कुमार। जाहिर है कि इन तीन मुख्य सितारों को अलग कर दें तो फिल्म संगीत के न जाने कितने अनमोल गाने फिल्म संगीत के इतिहास से हट जाएंगे। मुकेश चंद्र माथुर के अपने फैन रहे हैं और दुनिया के कोने कोने में रहे हैं। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि मुकेश की गायकी में ऐसी सादगी, ऐसी सरलता है कि यूं लगता है जैसे वो हमारे लिए गा रहे हैं और हम उनके साथ गा रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि आपके परिवार में अंत्याक्षरी हो रही हो, कोई पिकनिक हो, कोई अन्य उत्सव हो, गाने का माहौल हो, तो कोई ना कोई मुकेश का फैन आपको जरूर मिल जाएगा। यूं लगेगा जैसे मुकेश उसकी आवाज में गा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मुकेश जी की जीवन यात्रा।
2: मैंने

मुकेश चंद्र माथुर का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। पिता लाला जोरावर चंद इंजीनियर थे और माँ थी चांद रानी। दरअसल पुरानी दिल्ली में पैदा हुए इस लड़के के जहन में संगीत की महक बहुत पहले से थी। बहुत बचपन से इस लड़के ने गुनगुनाना शुरू कर दिया था। ये वो दौर था जब सबसे बड़े गायक थे कुंदन लाल सहगल और सभी उनके दीवाने हुआ करते थे। जाहिर है कि यंग मुकेश भी कुंदन लाल सहगल के फैन थे। दसवीं पास की उस जमाने में इतनी पढ़ाई बहुत मानी जाती थी। इसके बाद लोक निर्माण विभाग में काम करना शुरू कर दिया। तकरीबन यही दिन थे जब उनकी बहन की शादी हुई और वही घटना हुई जो हमने आपको इस कार्यक्रम की शुरुआत में सुनवाई थी, और इस तरह से मुकेश का मुंबई जाने का रास्ता खुल गया। हुआ यूं कि रंजीत मूवी टोन की ओर से एक विज्ञापन जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि एक नए गायक की तलाश जारी है। और फिर क्या हुआ कि चंदूलाल शाह के जारी किए गए इस विज्ञापन को देखकर मुकेश मोतीलाल जी के पास मुंबई आ गए। यहाँ आने के बाद उन्होंने पंडित जगन्नाथ प्रसाद से संगीत की तालीम लेनी भी शुरू कर दी और उन्होंने बड़ी शिद्दत से ये सपना देखा कि वो गायक अभिनेता बनेंगे। और ऐसा हुआ भी। सन 1941 आया, मुकेश ने अपनी पहली फिल्म साइन की निर्दोष। इस फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया और गाया भी। यानी ये वो पहला गाना है जो मुकेश जी ने गाया, पर इस

गाने में मुकेश जी ने प्लेबैक नहीं किया, यानी किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए गाया। ये गाना था दिल ही बुझा हुआ है तो फसले बहार क्या।

मुकेश जी का पहला प्लेबैक गाना कौन सा था ये भी आपको बता देते हैं। सन 1945 में फिल्म पहली नजर बन रही थी। संगीतकार अनिल बिस्वास से मोतीलाल ने ये कहा कि आप मेरे लिए एक युवा गायक से प्लेबैक करवाएं। मुकेश की आवाज जब अनिल बिस्वास ने सुनी तो उन्हें ये आवाज जम गई और फिर मुकेश ने गाया अपना पहला प्लेबैक सॉन्ग पहली नजर फिल्म में।

जब कुंदनलाल सहगल तक इस गाने की ख्याति पहुंची और उन्होंने इस गाने का रिकॉर्ड सुना तो वो चकित रह गए। उन्होंने तपाक से ये सवाल पूछा, ये गाना मैंने कब गाया? इसके बाद उन्होंने मुकेश को अपने घर बुलवाया और कहा कि तुम गाने गाते जाओ। मुकेश एक के बाद एक कई गाने गाते चले गए और कुंदनलाल सहगल उस जमाने के सुपरस्टार, उस जमाने के लाजवाब गायक और अभिनेता मुकेश को मुग्ध भाव से सुनते चले गए। उन्हें लगा कि यही है मेरा उत्तराधिकारी और उन्होंने अपना रियाज वाला हारमोनियम मुकेश को भेंट कर दिया। ये कुंदनलाल सहगल का मुकेश के लिए आशीर्वाद था। सन 1941 में निर्दोष में अभिनय करने के बाद सन 1943 में मुकेश ने एक और फिल्म में अभिनय किया जिसका नाम था आदाब अर्ज। सन 1953 में उन्होंने फिल्म माशूका में अभिनय किया जहां उनकी हीरोइन थी सुरैया और सन 1951 में मल्हार फिल्म में अभिनय किया। संगीतकार रोशन की ये पहली फिल्म

ये वो दौर था जब मुकेश कुंदन लाल सहगल की छाया में थे, उनके प्रभाव में थे और उनके जैसा गाया करते थे। सन 1948 में नौशाद ने दिलीप कुमार की फिल्म मेला के लिए मुकेश को गाने का मौका दिया और नौशाद के जरिए कुंदन लाल सहगल की छाया से बाहर आया उस जमाने का युवा पार्श्व गायक मुकेश। और फिर बस मुकेश की अपनी शैली तैयार हो गई। सन 1900

1948-49 का दौर भारत में फिल्म संगीत के बदल जाने का दौर था। कैसे, आपको बताते हैं। लगातार नई प्रतिभाएं आती चली जा रही थीं और इन नई प्रतिभाओं में शामिल थे युवा संगीतकार शंकर जयकिशन। शंकर सिंह रघुवंशी और जयकिशन पांचाल किस तरह से मिले, ये तो एक इतिहास है। राज कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म बरसात में संगीत देने का मौका दिया और इस युवा संगीतकार जोड़ी ने कई युवा कलाकारों से गाने गवाए, जिनमें से एक मुकेश भी थे। फिल्म बरसात में मुकेश ने दो गाने गाए थे। एक गाना था ये।

और इसके बाद राज कपूर, शंकर जयकिशन और मुकेश की इस तरह से टोली बनी कि एक के बाद एक इनकी फिल्में आती चली गईं और इन तमाम फिल्मों में मुकेश के गाने आते चले गए। यहां तक कि मुकेश का आखिरी गीत भी राज कपूर की ही फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया गया था। ये कहानी बाद में, पहले आपको एक दिलचस्प आंकड़ा बताते हैं। जरा सोचिए कि मुकेश ने किस संगीतकार के लिए सबसे ज्यादा गाया होगा। आपने सही सोचा है, शंकर जयकिशन के लिए मुकेश ने कुल 133 फिल्मों में पार्श्व गायन किया, जबकि कल्याण जी आनंद जी के लिए 99 फिल्मों में। जाहिर है कि कल्याण जी आनंद जी भी मुकेश के कम फैन नहीं थे।

चलिए फिर से पीछे चलते हैं, समय के चक्र को घुमाते हैं और पहुंच जाते हैं सन 1948 में। आप सोच रहे होंगे कि यहां हम क्यों आए। दरअसल यहां हम आपको ये बताने के लिए आए हैं कि बरसात वो पहली फिल्म नहीं थी जिसमें मुकेश ने राज कपूर के प्रोडक्शन के लिए गाया था। राम गांगुली के निर्देशन में आग में वो ये गाना गा चुके थे।

0: नहीं।
1: अब राज कपूर के साथ मुकेश ने किन किन फिल्मों के लिए गाया, एक के बाद एक लड़ी में फिल्में और गाने पिरोते हुए आज के फनकार कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आप हमारे साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए जरा अपने पैंट को थोड़ा सा ऊपर मोड़ लीजिए, सिर पर एक टोपी पहन लीजिए और सन 1951 में चलकर उछलते हुए मेरे साथ

1964 में राज कपूर ने अपनी बहुत ही महत्वाकांक्षी फिल्म बनाई, जो राज कपूर की पहली कलर फिल्म थी, फिल्म संगम। इस फिल्म में मुकेश ने ये मार्मिक गाना गाया था।

सन 1966 तक हम आ पहुंचे हैं और यहाँ हमारे हाथों में है फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक मारे गए गुलफाम। हमें याद शैलेंद्र की आ रही है जिन्होंने इस पुस्तक पर तीसरी कसम फिल्म बनाई और इस फिल्म में मुकेश ने बड़े मन से गाया।

और फिर सन 1978, मुकेश को अमेरिका की यात्रा पर जाना था और जाने से पहले जो आखिरी गीत उन्होंने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए रिकॉर्ड करवाया वो सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के लिए था।

इस गाने को रिकॉर्ड करने के बाद मुकेश ने एक लंबी उड़ान ली अमेरिका के लिए, और वहां से इससे भी लंबी उड़ान, वो इस फानी दुनिया को अलविदा कह के।

चली गई। ये बातें हुई राज कपूर और मुकेश के साथ वाले गानों की, लेकिन ऐसा नहीं था कि राज कपूर के लिए सिर्फ उनके प्रोडक्शन में मुकेश ने गाया हो। जरा 1950 में केदार शर्मा की बनाई फिल्म बावरे नयन का ये गाना सुनिए और याद कीजिए नीली आंखों वाले राज कपूर को।

अब आप सोच रहे होंगे ये भी कोई बात हुई कि पूरे आज के फनकार कार्यक्रम में केवल राज कपूर की बातें। अरे नहीं नहीं, ये नाइंसाफी हम नहीं होने देंगे। दिलीप कुमार के लिए जो प्लेबैक मुकेश ने किया वो तो लाजवाब था। फिल्म यहूदी का ये गाना सुनिए, शैलेंद्र के बोल हैं।

लेकिन ऐसा नहीं है कि दिलीप कुमार या मनोज कुमार के लिए ही मुकेश ने प्लेबैक किया हो। याद कीजिए काका राजेश खन्ना को फिल्म मर्यादा में।

जाहिर है कि फिल्मी दुनिया के न जाने कितने नायकों ने पर्दे पर होंठ हिलाए, लेकिन आवाज तो मुकेश की थी, यानी उन्होंने मुकेश के गीत गुनगुनाए। मुकेश को भले ही एक दर्द भरी आवाज कहा जाता हो और रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड के बुक स्टॉल्स पर जो गानों की किताबें मिलती हैं उनके शीर्षक हों मुकेश के दर्द भरे नगमे, लेकिन मुकेश केवल दर्द भरे नगमों के गायक नहीं थे। जब भीगा भीगा मौसम आता है तो भला कौन सा ऐसा मनमौजी व्यक्ति हो जो ये गाना ना गुनगुना।

0: याद।
1: यानी हम ये कहना चाहते हैं कि मुकेश ने तरह तरह के गाने गाए। वो केवल एक दर्द भरी आवाज नहीं थे, वो एक जिंदा दिल आवाज थे। मुकेश एक बेमिसाल शख्सियत जिन्होंने हर समय लोगों का भला किया। 27 अगस्त 1976, डेट्रॉइट मिशिगन, एक कॉन्सर्ट चल रहा है और मुकेश गाना गा रहे हैं। पर्दे के पीछे जाते हैं, दिल का दौरा पड़ता है और वो इस अनजान दुनिया को अलविदा कहकर चले जाते हैं। कॉन्सर्ट जारी रहता है, उनकी आवाज को आगे बढ़ाते हैं उनके बेटे नितिन मुकेश। उसके कुछ दिन बाद मुंबई के एयरपोर्ट पर एक ताबूत उतरता है। एयरपोर्ट पर बेसब्री से इंतजार में हैं अभिनेता राज कपूर और अभिनेता मनोज कुमार। इसके अलावा फिल्मी दुनिया की कई जानी मानी शख्सियतें। मुकेश के ताबूत को देखकर राज कपूर रो पड़ते हैं और कहते हैं, मेरी तो आवाज ही चली गई। मुकेश के जाने से एक खला आ गई और ये खला कभी मिट नहीं सकती। मुकेश हम सब की आवाज है, हम सब थोड़े थोड़े मुकेश हैं।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक मुकेश पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन छाए गीत कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

आया सावन झूमके। इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की युगल आवाजों में आगे बढ़ चलते हैं और कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म तीसरी कसम से आशा भोसले की आवाज में।

शैलेंद्र की आवाज में बॉबी फिल्म से कार्यक्रम का ये गीत आप सुन रहे थे। आगे बढ़ चलते हैं और अब आपको सुनवाते हैं राजा और रंक फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्ती फिल्म के इस गीत के साथ ही, जिसमें आवाज थी मोहम्मद रफी की, फिल्म संगीत का कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 10:30 हो गए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं अंजनी कुमार मिश्र का ख्याल गायन, राग है यमन।

अभी आप सुन रहे थे अंजनी कुमार मिश्र का ख्याल गायन, राग था यमन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, उसके तुरंत बाद अंग्रेजी में आप समाचार सुन सकते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की।
1: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक

आंतरिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब केवल 2 रह गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि ये गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष चर्चा की अवधि तय करे और सभी पहलुओं पर खुलकर बात करें ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने विपक्ष से इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार का साथ देने की अपील भी की। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। चीन के चांगझोउ में चल रहे चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।